ख़ात्मे लाइ बावकार फ्रेमवर्क तयार आहे। वक़्तु अची वियो त ॿिए रदि अमल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी सां फोन ते राब्ते दौरान ॻाल्हि ॿोल्हि, मसूद पज़ेशियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो अख़्तियार कयो, ज़रूरत आहे त ॿी धुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे। कुवैत में एयरबेस ते ईरानी हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी ज़ख़्मी थिया। अमरीकी खाबू इदारे ब्लू बर्न जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त ईरानी हमले में MQ-9 रिपीटर स्ट्राक ड्रोन्स खे सख़्त नुक़सान पहुतो। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम फतह 10 मिसाइल खे तबाह करे छॾियो, पर मिसाइल जो मलबो अली अल सलीम एयरबेस ते किरियो।

दिसंबर में मोबैना पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान जे वारसन जो एहतजाज। वारसन जो चवण आहे त नसीम टैक्सी हलाए बचड़न जो पेट पालींदो हो। पुलिस खेस जुड़तू मुकाबले में कतल कयो। मकतूल नौजवान जी न्याणी रोईंदे एहतजाज कयो त पुलिस बाबा खे बेगुनाह कतल कयो। वारसन पारां मुलसलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। कराची जे जना अस्पताल में औरत पारां वॉशरूम में बाहर ॾियण वारे वाके जी जांच लाइ कमेटी कायम। जांच टीम वाके जे जांच सूमर ताईं मुकमल करे रिपोर्ट सेक्रेटरी सिहत खे पेश कंदी। जना अस्पताल में डॉक्टर्स जे मुबैना गफ़लत सबबि औरत पारां ॿार खे वॉशरूम में ॾियण बाबति वीडियो वायरल थी वई।

0: KTN News.
1: मुकमल कंट्रोल ईरान वट आए ईरान जी बिना इजाजत ए मुकरर कल रूट्स खां हटी कर आपने मुस्के सफर करने जा नतीजा खतरनाक हूं ईरान खबरदार कर ईरानी फौज जो चवण है समूरा व्यापारी जहाज और आयल टैंकर्स ईरान की इजाजत से ही आपने हुर्मुज खां गुजरी सकन था जो ये न कह वो पैं ए बेन जहाजन नुकसान जो सबब बनी सके तो।

साथ मिलाए बावकार फ्रेमवर्क तैयार है वक्त अची वो बे रदे अमल ए लफ्सन से पैं नियत साबित करे ईरानी सदर के कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी से फोन से राबते दौरान गाल बोल मसूद पज़ेशकियान ईरान ईमानदारी से गाल रस्तो अख्तियार किया जरूरत है बी दुर आलमी सिमियारे की पासदारी करे कुवैत में एयरबेस से ईरानी हमले में केतरा ही अमरीकी फौजी जख्मी थे अमरीकी खबरू इदारे ब्लू बर्न की दावा रिपोर्ट में चो है ईरानी हमले में ब MQ-9 रिपीटर स्ट्राक ड्रोन्स के सख्त नुकसान पे तो कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम फतेह 10 मिसाइल के तबाह कर छो पर मिसाइल जो मलबो अली अल सलीम एयरबेस से किरो

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जंगी कार्रवाई बीहर करणी पई तो कंदासी, यकीन आए तो अमरीकी मुफाद में मुआदो करण में कामयाब थी वेंदासी। आमने हुर्मुज जो कंट्रोल अमरीका वट है। अमरीकी सेंटकॉम दावा कई है तो अमरीकी फौज गैम्बिया के झंडे वाले जहाज के ईरान वन का रोक के नाकारा बनाए वो नाकाबंदी की भंजकड़ी कदड़ जहाजन के नुकसान पहुंचाए वो। आबन हरमुज जो मुकम्मल कंट्रोल ईरान वट है। ईरान की बिना इजाजत ए मुकर्रर कल रूट्स का हटी कर आबन हरमुज के सफर करने जा नतीजा खतरनाक हुंदा। ईरान खबरदार कर छो। ईरानी फौज जो चवण है तो समूरा व्यापारी जहाज ए आयल टैंकर्स ईरान की इजाजत से ही आबन हरमुज का गुजरी सकन था। जो ये न कन्द वो पैं ए बेन जहाजन नुकसान जो सबब बनी सके तो।

ये खात्मे लाइ बावकार फ्रेमवर्क तयार आहे। वक़्तु अची वियो त ॿिए रदि अमल ऐं लफ़्ज़नि सां पंहिंजी नियत साबित करे। ईरानी सदर जे कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अलसानी सां फोन ते राब्ते दौरान ॻाल्हि ॿोलि, मसूद पज़ेशियान चयो त ईरान ईमानदारी सां ॻाल्हियुनि जो रस्तो अख़्तियार कयो, ज़रूरत आहे त ॿी धुर आलमी ज़िमेवारनि जी पासदारी करे। कुवैत में एयरबेस ते ईरानी हमले में केतिरा ई अमरीकी फौजी ज़ख़्मी थिया। अमरीकी खाबू इदारे ब्लू बर्न जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त ईरानी हमले में MQ-9 रिपीटर स्ट्राक ड्रोन्स खे सख़्त नुक़सान पए थो। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम फतेह 10 मिसाइल खे तबाह करे छॾियो, पर मिसाइल जो मलबो अली अल सलीम एयरबेस ते किरियो।

चंबर में मोबाइना पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान जे वारसन जो एहतजाज। वारसन जो चवण आहे त नसीम टैक्सी हलाए बचड़न जो पेट पालींदो हो। पुलिस खेस जुड़त मुकाबले में कतल कयो। मकतूल नौजवान जी न्याणी रोईंदे एहतजाज कयो त पुलिस बाबा खे बेगुनाह कतल कयो। वारसन पारां मुलसलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। कराची जे जिना अस्पताल में औरत पारां वॉशरूम में बाहर ॾियण वारे वाके जी जांच लाइ कमेटी क़ाइम। जांच टीम वाके जे जांच सूमर ते मुकमल करे रिपोर्ट सेक्रेटरी सिहत खे पेश कंदी। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स जे मुबैना गफ़लत सबबि औरत पारां ॿार खे वॉशरूम में ॾियण बाबति वीडियो वायरल थी वई।

हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप जी? जी सुबह का सलाम हूँ आप सबको. और जैसा कि आप सुन रहे हैं जी मटिया नेटवर्क, आओ बात करें विद आज जिस ना के साथ. अपनी अर्थ आवाज़ सुनने के साथ आपको सुबह का सलाम आप सबको पहुँच जाए मेरी तरफ से. तो जी कैसे हैं आप सब? और ईद गुजर गई है, ईद किसकी कैसे गुजरी है ज़रा ये भी बताना बाकी है. और कौन कौन उठ गया है, कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन नींद से आके अपनी खोल चुका है, जैसे नहीं खोले वो जाके मुँह हाथ धो लो और मुझसे बात करने की, क्योंकि आपको पता है कि दो घंटे हमारे पता ही नहीं चलते. जैसे कि अभी 20 मिनट गुजर गए हैं और जबकि हमारे थे ही नहीं, क्योंकि हम साथ नहीं थे इस 20 मिनट में. साथ थे भी लेकिन हम लोग बात करना स्टार्ट नहीं की थी, तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया बात करना. तो जी कैसे हैं आप सारे? तो पहले तो ये बताएं कि ईद कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, और अपने ही ममालिक में गुजारी है कि अपने जो है जहाँ दूर दराज बैठे हैं ममालिक में वहाँ पर गुजारी है, और जो करीब है घर वालों के साथ गुजारी है, या फिर अपने दोस्तों में गुजारी थी, ये ज़रूर बताते जाइएगा.

प्ले कर सकूं। प्ले करने का मतलब यही होता है कि यार आपके पसंद के सॉन्ग्स आपको सुनने को मिल जाते हैं, आपके साथ आपकी ही पसंद के सॉन्ग कोई और भी सुन रहा होता है तो आपको खुशी होती होगी, और बल्कि होती है ऐसे ही है। तो जी आपने क्या करना है, मुझे मेरे सवाल के जवाब के साथ, जो मेरा सवाल होगा जो आपको लगता है इसका राइट आंसर है, आपने वो मुझे जवाब देने के साथ साथ अपने कोई पसंद सा अच्छा सा प्यारा सा अपने जैसा कोई सॉन्ग मुझे नाम कमेंट कर देना है, ताकि अगर आपका जवाब जो है राइट होगा तो वो मैं सॉन्ग जरूर प्ले करूंगी, और अगर वो प्ले नहीं होता तो आप समझ जाएंगे भाई समझदार तो मुझसे ज्यादा है कि वो आपका इसका मतलब जवाब ठीक नहीं है। तो ऐसे ही है, अभी यहाँ पर हम लोग एक और सॉन्ग है हमारे पास मौजूद, तो सबसे पहले इस सॉन्ग से स्टार्ट लेते हैं अपने प्रोग्राम का। मेरे पास एक क्वेश्चन सॉन्ग है, जब तो ड्रामा है, स्टार्टिंग न्यू है, जून में आया था, फर्स्ट जून में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो मेरा ये था कि अगर मैं आज सुन रही हूँ कोई भी नया सॉन्ग, कोई भी ओस्टी हो, कोई भी सॉन्ग होता है तो वो मैं आपके साथ हमेशा सुन रही होती हूँ। तो ऐसे ही ये भी हम प्ले कर दिया है और सुनेंगे इसको भी आज भी साथ में हमेशा की तरह।

मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि सवाल मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग अभी तो सो रहे हैं, जो अभी तक नींद में है, जिसको मेरी आवाज जा रही है, उठा नहीं है, उठ गया है तो मुझसे बात करने के लिए अभी नहीं उठा, तो आंखें खोलें और जाके मुंह हाथ धो लें और मुझसे बात करें कि मैं अपना सवाल आपको बताने लगी हूँ कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी कि आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है, मोबाइल उठाना है, टाइप करना है 03000113488। आपने मुझे जो है व्हाट्सएप के जरिए SMS करना है, और लेकिन जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहता है, SMS करना चाहता है, SMS करने के लिए आपने क्या करना है, मोबाइल को उठाना है और टाइप करना है 8881 पे SKR लिख के विथ योर सिटी नेम और अपने प्यारे से नाम के साथ आपने मुझे SMS करना है और मुझे बताना है कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दें और उसके साथ अपने पसंद का कोई भी एक सॉन्ग का नाम बता दें ताकि जो है अगर वो राइट होगा तो हम उसका आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे। तो देखते हैं अभी कौन हमारे साथ मौजूद है और कौन हमें SMS करेगा करता है। तो क्योंकि आज बहुत सारे सॉन्ग्स मेरे पास मौजूद हैं तो हम लोग जरूर प्ले करेंगे। यहाँ पर देखते हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर से, सक्कर के लिए कहते हैं या अली या सक्कर या अली की शादी बीबी फातिमा, सक्कर या अली की शादी बीबी फातिमा जहरान से यकम जुलहज मुबारक ईद मुबारक सिस्टर बिग ब्रदर सदाकत हुसैन मिरानी साहब बचल शाह मियानी सक्कर से आप एंड एफ अच्छा आप एंड फैमिली एंड FM 88 टीम एंड शो सुनने वालों को मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप सदाकत हुसैन मिरानी, आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक आप हमारे साथ ईद पे भी मौजूद थे, ईद के फर्स्ट डे पे ही मैं आप लोगों के साथ मौजूद थी ईद की बातों के साथ, और आज तो हमारे पास रेगुलर बातें होती हैं जो कि अभी हमारे सिर्फ डेढ़ घंटा बचा, डेढ़ घंटे में बहुत सारी बातें

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जी वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर हम लोग साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं, आओ बात करें जी फेमेटेट नेटवर्क के दार जैसना के साथ। तो जी कैसे हैं? आप सारे और जिसे मुझे अभी ज्वाइन किया है, जिसे मुझे पहले से ज्वाइन नहीं किया था और जिसको अभी पता चला यार उठना है, सुबह हो चुकी है, बात करना है, आओ बात करें विस्तार से। तो आपने क्या करना है? अभी उठ गए हैं तो मैं अपना सवाल आपको बताने लगी हूँ। तो जी आपने बताना है, आपने मुझे बताना है कि वो क्या है भाई जिसको डूबता देखकर कोई बचाने नहीं आता, जिसको डूबता देखते भी हैं हम और उसको बचाने नहीं जाते, वैसा क्या है? तो जी पता लगाएं और मुझे भी बताएं और थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाएं भाई, उठे नाश्ता वाश्ता करें और मुझे बताएं कि आपने नाश्ते में क्या खाया था। और इसके अलावा मेरे सवाल का जवाब दें और सवाल के जवाब देने के साथ अपने पसंद का कोई भी एक सॉन्ग का नाम मुझे ज़रूर SMS करें, क्योंकि अगर आपको सवाल का जवाब ठीक होता है तो वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ठीक था ऐसे आपको। और जिसके मुझे सवाल का जवाब का कोई सॉन्ग का नाम देख लेते हैं। आपने परेशानी होना, आपने क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना, टाइप करना है, ट्रिप इसके आलसी में आपको कमेंट को

0: याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-78-96-343 and 0315-45-01-092. Best Look Beauty Cream, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान आन रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: गर्मी, थकावट या दिल जी बेचैनी महसूस कर पाया, हाने परेशान थियण जी जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहिड़ो शरबत जेको तव्हां खे दे ताज़गी, सुकून ऐं हक़ीक़ी राहत। दिल जी धड़कन खे मुतवाज़न रखण, गर्मीअ जे असर खे घटाइण ऐं जिस्म खे तवानाई ॾियण लाइ शरबत रूहे राहत। रोज़ानो सिर्फ़ हिकु गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां आज़ादी। क़ीमत सिर्फ़ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलण जो हंधु मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद, सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंधु मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नर्स लाला शहजादा चौक, रोहड़ी। राब्तो 0302-3626-176। खुश खबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराइण जी आख़िरी तारीख 5 जून 2026 ताईं वधाई वई आहे। जी हाँ, साल 2026 जे लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि मुख़्तलिफ़ शोबनि में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं फिज़िक्स, रियाज़ी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स। ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तहक़ शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप्स भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन, घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी। उम्र जी हद 35 साल। फॉर्म जमा कराने जी आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताईं वधाई वई आहे, लिहाजा देर न करियो, ऑनलाइन अप्लाई करियो। www.apy.bnbwu.edu.pk।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GFM 88 की आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि अभी 11:50 हो गए हैं, हमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा, एक घंटा और 10 मिनट ओनली हमारे पास रिमेनिंग है। तो जी आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब देंगे जी, और मुझे बताएं कि कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। मेरे सवाल के जवाब देने के साथ आपने अपने सॉन्ग की फरमाइश भी मुझे साथ में बतानी है।

काफी लोग नींद से उठ गए हैं, हमारे साथ मौजूद भी हो गए हैं, हमें ज्वाइन भी कर लिया है, तो देखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सकरगिरी कहते हैं जवाब सू, ओके ओके ओके ओके ओके, आपके पूरे नेटवर्क एंड सब सुनने वालों को ईद मुबारक हो। 78 मोरी राजा हमीर चंद, अच्छा हमीर चंद, किशोर कुमार, हीरा लाल, पवन कुमार, प्ले फायजा आसान ले, फायजा

जिस चीज का ये सॉन्ग आप लोग मुझे फरमाइशी सॉन्ग प्ले करते बताते जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी प्ले तो उसी के सॉन्ग होने हैं भाई कि जिसका राइट आंसर होगा, तो कोशिश क्या करें कि राइट आंसर देने की कोशिश करें, बाकी सॉन्ग हम जरूर प्ले करेंगे। आप लोगों ने अपने फरमाइश के गाने बताए हैं तो इसमें कोई हर्जी नहीं है भाई, चलाएंगे चलाएंगे। ईद है और ईद आपके कैसे खराब कर सकते हैं।

जी आप ईद वाले दिन आई थी प्रोग्राम करने, मैं गांव में था, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसकी वजह से शामिल नहीं हो सका। सवाल का जवाब है और सॉन्ग फैजली का कोई भी फैजली की बात हम प्ले करेंगे क्योंकि आज हमने सुबह का आगाज बहुत ढंग से किया था, क्योंकि फैजली की आवाज़ से अगर हम ना सुने तो हमारा दिन गुजरता नहीं। मैं यही बोलूँ आज कुछ तो कमी है तो वो फैजली की आवाज़ की कमी है, उनकी आवाज़ में सॉन्ग प्ले नहीं किया ना तो इसलिए हमें लग रहा है, तो मुझे तो लग रहा है अब आपका पता नहीं, अगर आप लोग मुझे बताएं तो पता चलेगा ना भाई। जी फैजली की आवाज़ में ज़रूर सॉन्ग प्ले करेंगे और आपका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है।

करने लगे हैं फाइजर के बाद में सॉन्ग प्ले, उसके बाद जाएंगे न्यूज ब्रेक की तरफ. और न्यूज ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ताकि मैं अपने सवाल का जवाब आप लोगों से पूछने लगी तो हूँ, जिससे अपने सॉन्ग प्ले करवाने हैं वो मुझे मेरे सवाल का जवाब देता जाए, मुझे अपने पसंद का सॉन्ग सुनता जाए. तो जी मैं आपको जैसा कि बताऊँ कि मेरा सवाल रिपीट करती हूँ, रिपीट करने के बाद हम सॉन्ग को करेंगे. बोले तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने मुझे बताना है कि भाई वो क्या है जिसको डूबते हुए देख कर भी हम बचाने नहीं जाते. तो बताएं कि ऐसा क्या है जिसको डूबता हुआ देखते भी हैं तब भी बचाने नहीं जाते. तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए कि ऐसे क्या चीज़.

ईरानी फौज जो चवण आहे त सिमुरावा पारी जहाज ऐं आयल टैंकर्स ईरान जे इजाज़त सां ई आबनाए हुर्मुज़ खां गुज़री सघे।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए FM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

जी आपस में हुए थे हम लोग सोने दे चुड़ी, ये सब मैंने आप लोगों के लिए प्ले किया था क्योंकि आपको पता है कि भाई आप सब आज विन हो चुके हैं, मेरे सेगमेंट को विनर कर चुके हैं। तो आपको पता है कि यार अगर आप लोग मेरा सेगमेंट विन कर जाए मुझे बहुत ज़्यादा दिल खुशी हो रही है कि आप लोग सब जीत गए। सारे सॉन्ग्स हम सबके सॉन्ग प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ना कोई नाराज़ हो जाती, ये मैं नहीं चाहती।

नहीं चाहती हूँ कि एक और सॉन्ग में प्ले करते हैं, आप सबके लिए मुनव्वर मलाई का ये सॉन्ग है, तो जी कर दिया प्ले, सॉन्ग को भी सुन लेते हैं और आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ मैं ये सॉन्ग, क्योंकि आपने मेरे सेगमेंट बन गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सारे के सारे आज बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जवाब दिया है।

कोई भी सॉन्ग होता है तो मैंने तो डेडिकेट आप सबको करना था, क्योंकि इसलिए कि भाई आप लोग मेरा सारा आज का सेगमेंट मेरा विन कर चुके हैं, और इससे अच्छी तो और मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती कि आज के सबने भैया विन कर दिया। एक दो बंदे ऐसे हैं जिनका थोड़ा जवाब गलत था, तो लेकिन मैंने उन्होंने सॉन्ग बताई थी, तो सॉन्ग तो मैंने आज इसलिए किसी का भी प्ले नहीं किया कि भाई अगर मैं किसी एक का करती या दो का करती या सबका करती, एक दो रह जाते टाइम के सूरत में, ये नहीं कि मैं खुद से प्ले नहीं करना चाहती, अगर टाइम की सूरत में वो सॉन्ग रह जाते तो फिर आप लोग मुझे समझते यार आपने हमारा नहीं प्ले किया, हम जो नाराज किए, तो ऐसे कमेंट करने से बेहतर था बंदा अपने पसंद के कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करे। तो मैंने अपने पसंद के सॉन्ग आपको डेडिकेट किए हैं, लेकिन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं आप हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं सक्का अस्सलाम वालेकुम सना बाजी, कैसी हो, आपका शो जबरदस्त है, आपके कंपेयरिंग लाजवाब है। आजाद ग्रुप से सैयद इमदाद शाह बुखारी विद माय बेस्ट फ्रेंड कामरान महेसर, ओके जी, और आप दोनों को मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं आजाद ग्रुप से, ओके जी। तो जी आप लोग कैसे हैं और ईद कैसे गुजरी, कहाँ गुजारी ईद और बकरे शकरे आपने सारे अकेले खा लिए, और इतने दिनों बाद आप पांचवें दिन, आज पांचवा दिन है ना, तो आज आप मुझे आके बोल रहे हैं ईद मुबारक। अच्छा चलें चलें खैर मुबारक, आपने पहले दिन असली बात की कि भाई जो है ऐसा ना हो कि ईद के साथ हमें ईद का जो गोश्त होता है वो देना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पांचवें दिन आपको याद आइए, ओके जी कोई मसला नहीं। अच्छा जी सॉन्ग मैंने सबके लिए आपके लिए प्ले कर दिया था, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, आपको हो गई है देर मुझे ज्वाइन करने में, आप इससे पहले पता नहीं कहाँ गुम थे, मुझे तो नहीं पता, शायद आप ईद ही आज ना मना रहे हो, ये भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जितनी देर में आपने मुझे ज्वाइन किया, आपको पता है कि मेरा जो है आपके साथ होता है पूरा सुबह 11 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका मेरे साथ पूरे पूरे 2 घंटे के लिए, तो जिसमें से भी सिर्फ हमारे पास आधा घंटा मौजूद है, और आधे घंटे के अंदर हमने सॉन्ग्स ही प्ले करने हैं, और सॉन्ग्स बहुत मजे मजे वाले प्ले होने हैं, तो आपने सोचा बस सॉन्ग्स प्ले करते हैं और सॉन्ग्स सुनने चलते हैं, तो भाई

0: और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे चलने देर से सही ज्वाइन तो किया, ऐसे आपने मुझे हमेशा ज्वाइन करते हैं, हर संडे रहता है आपका मेरा साथ सुबह 1 बजे तक, तो ऐसे ही नेक्स्ट संडे भी मैं मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का। तो जी आपका टाइम होता है छोटे से शौक ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे वापस आके करेंगे बाकी की बात, जब तक रखें हमारा ख्याल और रहे मेरे साथ, तब कहीं कहिएगा मत।
1: इस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिबसे की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना
1: बद से सरशार सरजमीन अब
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

0: ठहले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में तेज जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेट एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अमाजे पेंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक बरोज जुम्मो 12 AM तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर मशोरे रबते के लिए 0327 99

तो बिल्कुल जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स बल्कि आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों की खूबसूरती कैसे बढ़ने वाली है और खूबसूरती में कैसे चार चांद लगने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी इस प्रोग्राम के अंदर। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आपका हमारा साझो ही रहने वाला है, ठीक अब से लेकर पूरे दो घंटे यानी कि पूरे तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जरा अपने हाल चाल भी बता दी जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसी है आपकी हालत है? उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होगी, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे तीन बजे तक। सो चलिए जी, रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में मजे करने के लिए, प्रोग्राम में फन करने के लिए और प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली एंटरटेनमेंट के लिए। ओके जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खाले, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरी की चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्राली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी। और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा प्रोग्राम में एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। तो प्रोग्राम में बहुत प्यारा सा एक कसीदा सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए और खूबसूरत होते जाइए।

बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के, अब बदनसीब देख अली को पुकार के, मरहब का कत्ल क्या कोई खैबर का कत्ल था, हैंका था जुल्फिकार का सदका उतार के, सदका उतार के।

0: सुनाओ क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा कसीदा यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोगों का प्रोग्राम है जो कि आप लोगों तक नशर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर जरा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनके बारे में आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए और आप लोगों को पता चले कि भाई जान अगर आप मार्केट जाएं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करने में तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको चाहिए कि आप परचेज करें। अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं या फिर आप मार्केट से जाकर परचेज करना चाहते हैं तो आपके जहनों में एक ही नाम होना चाहिए जो है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जनाब, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो है ना यहाँ पर आप लोगों को जरा बताएंगे तफसीलन के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज है और इसी के साथ साथ जरा आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जाने भी पहले आ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं जो आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक पूछना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे क्या आप भी अगर पिक्चर लेते हैं, हाँ जी, फोटोज क्लिक करते हैं अपनी, तो क्या आप भी बहुत ज्यादा फिल्टर्स यूज करते हैं या फिर नहीं। ऐसा है कि कुछ लोगों की ये आजकल ना आदत है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है अगर आपकी पिक्चर सही भी आती है, अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो अच्छा सा ग्लो भी है निखार भी, लेकिन फिर भी उन्हें एक आदत होती है कि वो अपने पिक्चर्स के ऊपर ना बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगा रहे होते हैं। तो अगर आप भी 250 फिल्टर्स लगाने के आदी हैं तो मुझे बताएं जरा क्या आप हैं वो जो अपने पिक्चर्स क्लिक करते साथ ही अपने फोटो के ऊपर बहुत ज्यादा वाले फिल्टर्स लगाते हैं, मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। अगर आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। ओके जी, तो पेज के ऊपर आइए और वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, हमारी पोस्ट को बहुत ज्यादा वाला शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि मार्केट में ना कितने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और आपने ये तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी करने हैं। तो यहाँ पर आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि क्या आप भी अपने फोटोज के ऊपर बहुत ज्यादा वाले फिल्टर्स लगाते हैं, हाँ जी बताइए जरा। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप अपनी खूबसूरती को जो है ना वो और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा जो ना आप वो कॉन्शियस हो चुके हैं या फिर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाकर देखे आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो भाईजान आपने इतना करना है बस कि आप मार्केट जाइए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए कि क्या आपके एरिया में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं। अगर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं तो आप परचेज कीजिए जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स मौजूद है, जैसे कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है, व्हाइट एश लवली क्रीम आपको मिल रही है। अच्छा, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है? फर्क ये है कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है और व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये एक फेयरनेस क्रीम है। और इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये फेयरनेस और नाइट क्रीम में भी फर्क डिफरेंस यानी कि पता नहीं होता, तो आप लोगों को ये बता दी चलूं कि जो नाइट क्रीम होती है वो आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें एज लिमिट होती है कि आप 18 साल के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप फेयरनेस का यूज कर रहे हैं, फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो वो एज लिमिट कोई नहीं होती, आप किसी भी उम्र में लगा सकते हैं और ये दिन रात लगाने वाली क्रीम होती है, यानी कि आपका दिल करे तो आप दिन में लगाइए, रात में लगाइए, बस आपके चेहरे पर ग्लो आता जाएगा और आता जाएगा। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ साथ व्हाइट एश लवली क्रीम भी आप लाजमी परचेज कीजिएगा, उसके साथ आपको व्हाइट एश का विटामिन सी का फेस वॉश भी मिल रहा है, व्हाइट एश का आपको सोप भी मिल रहा है और आपको डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी क्लियर ट्यूब भी मिल रहा है। ये बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को तफसीलन बहुत सारे जो है ना बहुत सारे वे में आप लोगों को बताती रहूंगी पूरे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये आदिल हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। लिखते हैं कि कुछ ख्वाब थे जो वक्त के साथ बिखर गए, कुछ अपने थे जो हालात के साथ बदल गए, हमने तो हर किसी को दिल से चाहा था मगर लोग चेहरे बदल बदल कर निकल गए। अरे भाई ये क्या बात है, और गाना बिल्कुल आपको सुनाएंगे। और उसके अलावा हैं जी वहीद वफाई हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, कहते सिद्रा जी क्या हाल है आपके, और माशाल्लाह बेहतरीन आपका शो है, जेकब आबाद से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम हिदायतुल्लाह, बिल्कुल आज आपका गाना लगा देंगे जी, और असद बलोच हमारे साथ कहते इंतजार तो आपकी बस आवाज का होता है हां जी बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं बहुत शुक्रिया और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद कहते हैव अ गुड डे मैम आशी ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड ग्रेट होस्टिंग थैंक यू सो मच सर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद अनवर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कुछ रिश्ते मुआफी के बाद भी पहले जैसे नहीं रहते क्योंकि एतमाद टूट जाए तो दिल दोबारा पहले जैसा महसूस नहीं करता ये तो बिल्कुल सही बात है एतबार अगर टूट जाए तो फिर कुछ भी हो जाए रिश्ते वो वैसे नहीं बनते जैसे पहले थे तो इसीलिए कहते हैं एतबार जो है ना वो मत टूटा किसी का और अगर कोई आप पर एतबार करता है तो वो एतबार आप कोशिश करें कि वो बना रहे हमेशा और ऐसे ही आप वाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते रहिए खूबसूरती जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो खूबसूरत रहिए और खुश रहिए प्रोग्राम में ज्वाइन करते जाइए पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जा रहे हैं उसके बाद जल्दी
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर टाइम टू कमर्शियल ब्रेक

0: मैन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99

0: 88 Network. Sind Kiabas.
1: ओके जी, आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास, और आप सुन रहे हैं GFM 88 Network हमारे साथ यहाँ पे. जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड

स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लगाते जा रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं। और भाई क्यों ना हासिल करें, क्योंकि आपके पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप जाइए, फायदा उठाइए और परचेज करके आइए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए, आपको पहले बताया कि कितने अच्छे वाले प्रोडक्ट्स मौजूद है। और इसी के साथ साथ अगर आप तफसीलन जानना चाहते हैं कि भाई अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के ना आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले। सबसे पहला फायदा तो ये मिलेगा कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नेचुरल अज्जा से तैयारशुदा होने वाला प्रोडक्ट है। जैसे कि इसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है, यानी कि ये सब चीजों मिली करे जिकवाने तमाज लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तैयार किया है। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तमाजी जिल्द के फ्रेश बनाई दिया है, गोरो बनाई दिया है, हर किस्म के निशानन के खत्म कर दिया है। आई तमाज चेहरे ते झुरियूं आहिन, दाग धब्बा आहिन, वे सब चीजों खत्म थी वेंदियूं आहिन। तमाजी स्किन जेका न रौनक साफ शफाफ आई खूबसूरत थींदी आहे। आई तमा डिसंदा आयो त बाबा वाकई फर्क त आहे, फर्क आहे बाबा जडे ना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कना। सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तमा नालो वठी करे पंजे परचेज पंजे करीबी जन स्टोर ता अगे नथी मिली त तमा जला नंबर आहे जनाब 03157990595। ही नंबर आए तुम्हारे आसानी चलाए तुम अपने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था। आई उनन का वनी वठी अचो सर, वठी अचो ठीक है। उन का अलावा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड तुम अगर चाहो था तो कोई सोप हो जे, कोई फेस वॉश हो जे, तो बिल्कुल जी मौजूद आहे। व्हाइट एज जो साबुन भी आहे, व्हाइट एज जो फेस वॉश भी आहे। अगर तुम सोप लगाइंदा तो तुम व्हाइट एज जो ब्यूटी सोप लगाइंदा, अगर तुम फेस वॉश लगाइंदा तो व्हाइट एज जो फेस वॉश लगाइंदा, जेको जनाब वाइटमिन सी से तैयार थियल आहे। वाइटमिन सी तुम्हारी स्किन के लिए ढी जरूरी होंगी है, तुम्हारी स्किन के यंग बनाईंदी है, तुम्हारी स्किन के ग्लो दींदी है, तुम्हारी स्किन के हमेशा के लिए महफूज रखंदी है। सो तुम व्हाइट एज जो वाइटमिन सी वो फेस वॉश लाजमी ट्राई कजो अगर तुम फेस वॉश इस्तेमाल कंदा आयो। ठीक है, उनका अलावा अगर असा गाल कयो व्हाइट एज लवली क्रीम जी, तो व्हाइट एज लवली क्रीम उन सभी मानों के लिए आए जी मानो कोई अच्छी फेयरनेस क्रीम जे न तलाश में आए। कोई भी अच्छी फेयरनेस क्रीम अगर तुम की नथी मिले, अच्छी सा मुराद माना भली अगर कोई भली फेयरनेस क्रीम तुम गोलियो पयाई तुम की नथी मिले, तुम मतलब जो काफी टाइम का फेयरनेस क्रीम गोलियो पया का सुठी वारी हुए, तो व्हाइट एज की लवली क्रीम तुम्हारे लिए मौजूद है। रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन जो फार्मूलो है, जिनके अंदर 30 वाइटमिन जो कैप्सूल एड कया वया आहिन, जिमे वाइटमिन B3 आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन डी आहे, वाइटमिन सी आहे, खोड सारा वाइटमिन्स जेके तवाजे स्किन जे लाए जरूरी आहिन। उनका अलावा सिर्फ गाल इते खत्म नथी थे, इनजे अंदर जेको ना सनस्क्रीन भी एड कयो वयो आहे, यानी कि तवाजे खूबसूरती भी मिलंदी, तवाजे खूबसूरती जी हिफाजत भी देंदी। अगर तवाजे स्किन जे काहे तव्हां उस में निकिरंदा आहियो त तव्हांजी स्किन थोरी सांवरी थी वेंदी आहे, टेन पइजी वेंदी आहे, या फिर तव्हां सोचींदा त बाबा को अहिड़ो प्रोडक्ट हुजे जेको असां लॻायूं त सोणा बि थी वञूं ऐं असांखे उस खां जेको आहे न उहो बि जेको आहे न हिफ़ाज़त मिली वञे, त व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हांजे लाइ परफेक्ट क्रीम साबित थींदी। सो व्हाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां ज़रूरु ट्राए करे ॾिसजो, तव्हांखे सफ़ा भली लॻंदी। ऐं हिन जे अंदरि जेको आहे न एॾो VIP शिमरी इफेक्ट बि अथसि, तव्हां जॾहिं लॻाईंदा त तव्हांजी चेहरे जी स्किन सफ़ा चमकंदी ऐं तव्हां पाण महसूसु कंदा वाकई बाबा प्रोडक्ट में दम ता है। उन का अलावा अगर तुम एकनी का परेशान वेठा हो, दाना तुम्हें ना छन, ये जो दाना आज तुम्हें बेजार कयो है, सो डॉक्टर पिंपल जो एंटी एकनी ट्यूब मार्केट में अची वो अव। डॉक्टर पिंपल नाले से तुम एंटी एकनी ट्यूब वा किथा भी घुरंदा तो तुम आराम से मिली वो, जो तुम्हारी एकनी से फाइट कह है, तुम्हारे चेहरे जहा एकनी खत्म थी वा, तुम्हारे चेहरे जहाँ पोर्ट्स हूं खुलल हूं ओपन पोर्ट्स हूं उ बंद ही वा, तुम्हारे चेहरे से ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स या फिर तुम्हारे चेहरे से निशाना आन धक् लगन जो निशान आ, कोई कट जो निशान आ, ये सब निशान खत्म थन्दा जैसे तुम डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल कह। सो ही तमाम जबरदस्त क्वालिटी जहाँ प्रोडक्ट्स आज तुम ट्राई कर ऐसो। डॉक्टर पिंपल ट्यूब के लगाने के तरीकेकार अगर मैं तुम्हें बुधाया तो डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब है यो तुम राजे टाइम इस्तेमाल करो, छो तो राजे टाइमिंग सफा बेस्ट होंगी है। राजे टाइम तुम लगे कर सुकून से सुम्मी पो एडो VIP आ थो थो तुम्हें महसूस थी दो। गर्मी के मौसम में तो वाकई अड़ो तुम प्रोडक्ट गोलींदा हूँ जो ये तुम लगा तो थदो थदो महसूस थे बिल्कुल जी डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब है जो तुम इस्तेमाल कर तो तुम्हें थदो थदो फील इन अलावा राजे टाइम तुम जो है सभी कमन में फ्री थी पाँचा चंगे तरीके से हथ धो पाँ फेस वॉश कर उन हथ जो क्लीन हुआ जरूरी है हथ
हथनि खे चङे तरीक़े सां क्लीन कयो, पोइ तव्हां पंहिंजे चहिरे ते जिते जिते दाणू आहे, निशान आहे, जिते जिते कट जो निशान आहे, जिते जिते तव्हां चाहियो था त हीअ चीज़ ख़तम थियल हुजे असांजे फेस तां, त तव्हां डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्ने ट्यूब अप्लाई कयो। अप्लाई करण खां पोइ तव्हां सुकून सां सुम्ही पओ, तव्हां सुबुह उथंदा त तव्हांखे वराए पंहिंजो फेस वॉश करणो पवंदो। ऐं ईअं बि नाहे त तव्हां जॾहिं डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब पंहिंजे चहिरे ते इस्तेमालु कंदा न त तव्हांजी स्किन ते ईअं चिपचिपो बि महसूस न थींदो। सफ़ा VIP आहे, तव्हां लॻाईंदा त तव्हांजी स्किन जे अंदरि जज़्ब थी वेंदो। ऐं सफ़ा VIP आहे बाबा, मतिलबु मां जेतिरी तारीफ़ कयां घटि आहे, छो त असां पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं। जिन माण्हुनि खे एकिनी आहे उन्हनि खां मां हिन जो रिव्यू वरितो त ॾाढो सुठो रिव्यू मिलियो आहे। त तव्हां बि ट्राए कजो, जिन माण्हुनि खे दाणा आहिनि ऐं दाणा तव्हांजी जान था छॾनि, त डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां लाज़मी ट्राए कजो, ठीकु आहे। उन सां गॾोगॾु जेको आहे न, तव्हां वाइट एज जो साबुण लॻाए सघो था, तव्हां वाइट एज जो फेस वॉश लॻाए सघो था, ऐं अगरि तव्हां सुठी काई बि नाइट क्रीम इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हांजे लाइ वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम मौजूदु आहे। हीअ तमामु प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती खे न सिर्फ़ु वधाईंदा बल्कि तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि कंदा आहिनि। छो त बाबा मार्केट में खोड़ सारा तव्हांखे प्रोडक्ट मिली वेंदा, पर तव्हां प्रोडक्ट उहो पंहिंजे लाइ सिलेक्ट कंदा कयो जेको ऑल एस के टाइप जे लाइ हुजे ऐं जेको नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल हुजे ऐं जेको तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदो रहे ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि करे। सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट लॻायो, सुहिणा थी वञो, ऐं पोइ असांखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो आहे। अगरि तव्हांजे एरिया में नथो मिले त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595, ठीक हो गया। ये नंबर डायल कीजिए और इसके साथ साथ अपने एरिया में अवेलेबल कराते जाइए। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि क्या आप भी अगर अपनी पिक्चर्स लेते हैं तो क्या अपनी पिक्चर्स के ऊपर 250 फिल्टर्स लगाने वाले इंसान है? बताइए जरा, बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगाते हैं नहीं मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी फोटो पर फिल्टर नहीं लगाते होंगे। ओरिजिनल कैमरा में फोटो कढ़ना होंगे ॿुधायो छा हुई तव्हां आहियो या न? ओके जी, सो तव्हांजा गाना आहिनि तव्हांजो फरमाइशूं, अॼु मां मतिलबु कोशिशि कई आहे त मां तव्हांजा सिर्फ़ु फरमाइशनि वारा गाना लॻाईंदा, मां पंहिंजी पसंदि जो हिकिड़ो बि गानो लिस्ट में न लॻाईंदा। सो हीउ वारो सॉन्ग असां स्टार्ट करे छॾियोसीं हिन वारे सॉन्ग सां, हिन गाने जी फरमाइश असांखे कंहिं प्यारे भाउ करे छॾी आहे। सो ॾिसूं था तव्हांजा मैसेज, पढ़ूं था कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे, पर गानो आहे ॾाढो ख़ूबसूरत, अॼु जी शाम तुंहिंजे नाम।

अच्छा सखावत अली राजपर कहते हैं कि को भी साइड इफेक्ट न कंदो क्रीम जेकॾहिं छॾिजे त बिल्कुल भी न कंदो इहो तमामु बिल्कुल तव्हांखे ॿुधाईंदा त अगरि तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो पिया ऐं वरी तव्हां इहो सोचो था त अगरि असां क्रीम छॾींदासीं त असांखे मथां को नुक़सान पहुचे स्किन ते को साइड इफेक्ट अची वञे त अहिड़ो को बि सीन न थींदो छो त ही नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल प्रोडक्ट आहे तव्हां ईज़ीली लॻाए सघो था जॾहिं दिलि चवे तव्हां छॾे सघो था छो त जेको तव्हांखे निखार मिलंदो जेका ख़ूबसूरती मिलंदी उहा हमेशह जे लाइ हूंदी।

ओके जी, दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं मेरी स्वीटी, आप कैसी हैं? वासा भाई हमारे साथ मौजूद है। हेलो वासा भाई। और दर्द दिल कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई प्यारी, जीजी में आ गई देखो। हिदायतुल्लाह कहते हैं सिद्रा आरजे का मतलब मैंने ये निकाला है, आरजे का मतलब रेडियो, अच्छा आर का मतलब रेडियो, जे का मतलब जान, मतलब सिद्रा आप रेडियो की जान, क्या बात है। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजरा, गर्मी में ऐसी जो कम करना, अच्छा यानी कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे तो वाकई ठंडक का एहसास होता है, तो बस वाकई आप मौजूद रहिए। और कहते टॉपिक मो बुद्ध ही कौन है, टॉपिक हानि तमाम बुद्धि छड़े हों दो, अच्छा तमाम वही आयो जेके अगर पांच फोटो कढ़ना है पिक्चर कढ़ना है तो उन 250 फिल्टर लगाईंदा है, छा तमाम वही आयो बुधायो तो सही खबर पवे, तो जेके ही मानो जेके अजकल असाजे आसपास घुमन पया, अगर फोटो उनन के चयो विना था बाबा फोटो कढो असाजो या फिर असा उनन जो फोटो कढना है तो हू चवंदा है तो बाबा यू फिल्टर न बीबी असा के अध कलाक तक फिल्टर सिलेक्ट करने में लगी वेंदो है। सो तवा सा भी यो मसलो आए या फिर न खास करे उनन मानन जला जेके वरी फोटोग्राफर हुंदा है उहे बेचारा डाढो बेजार हुंदा न मसले जी वजह सा। अनवर भाई छा त चो, बिल्कुल जे मोहब्बत हुआ है तवा जो अच्छा दर्द दिल कहती है कि ज्यादा नहीं लगाती मैं फिल्टर, मैं तो वाइट एज लवली क्रीम लगाती हूँ। आए हाय ये हुई ना बात। अच्छा नोरिस अंतनियो भाई हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम समंदर पार ओके जी, और क्या कहते हैं सिद्रा गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे लवली विद द बेस्ट विशेस टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी नसीब अच्छी करे, आमीन जी बहुत शुक्रिया आपका। और अनवर भाई कहते अदी सागी गाल है, कमेंट पड़ी आखिर में चवंदी आए वाइटिश लगायो। हाथ पोए वाइटिश लगायो न जे तमाम सुना थी वणो, इन में भी तो तमाम जो फायदो आए, भला गाल थोड़ी बस समझण वाली है।

वाह सही वाह भलो गानो अब्दुल्ला भयो हमारे साथ मौजूद के दे शो उदास वेठो आही खुशी जे ओ मोक्यो आहे खुशी जो इजहार कर बस तू ना उन बेवफा के याद कर मंजूर सकरानी जो कलाम दा हलाए जो अज जी शाह अब्दुल्ला भयो ही गानो तमाजे नाले।

जी व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो तव्हां ॿुधो पिया व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया तव्हां जी ख़ूबसूरती वधे पई अली अकबर बिरोही भाउ सां गॾु मौजूदु आहिनि सकरनि खां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो भाउ मां सभु ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो मज़े में सुमाटू गोपांग सां गॾु मौजूदु आहिनि हाय वालेकुम अस्सलाम मां ठीकु आहियां और तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया कंबर सिटी खां गानो चयो आहे मां कोशिशि कंदमि तव्हांजो गानो हलाईंदासीं ठीकु आहे वासा भाई तव्हां जो गानो बि हलायूं था बाबा सबर कयो अच्छा प्रेमचंद हमारे साथ हैं हेलो प्रेमचंद भाई कैसे हैं ठीक ठाक चाचा खाले जुड़ी जो लिखते हैं कि बस लोग इकट्ठा होने के बावजूद भी एक दूसरे के करीब नहीं होते और बस लोग जुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं या तो हकीकत है

ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? अस्सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को. और आज मैं किचन में बिरयानी बनाते आपका शो सुन रही हूँ डियर सिस्टर फजीला हेयर. अच्छा, फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है. फजीला, आपको वेलकम करते हैं बिरयानी बनाए हुए. मेरे हिस्से की भी बनाइएगा क्योंकि मैंने भी खानी है.

स्मार्ट हूँ। गोपांग कहते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाओ, सिद्रा की तरह हो जाओ सफा प्यारी प्यारी, तमाम भी लगायो नी। और हिदायतुल्ला कहते हैं कि तुम ब्रेक पर जाती हो और मैं टिकटॉक पर, बस इतना फर्क है तुम में और मुझ में। अच्छा, सखावत अली राज पर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, के दिखी आयो अधिक खुश आयो, कल अभी मैसेज कयो हुयो अत गानो मुधरायो, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, बिल्कुल इन गाने ला तव्हां खे अदा भा, थोड़ो सबर करणो पवंदो, ठीक आहे, ऐं तव्हांजो गानो बि हलाईंदासीं। ऐं चवंदा आदि तूं पाण क्रीम हणे थी, हा हा हणा थी, तॾहिं त तव्हांखे ॾिसां थी। सनाला ब्रो ई हमारे साथ मौजूद, वालेकुम अस्सलाम सनाला, छा हाल तव्हांजो, खुश आयो। भा कहते अदी वाइट एज की लवली क्रीम यूज कयूं था, बिल्कुल जी कयो कयो कयो सब कयो। वफा मीर मुनवर अली हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम भा। राजा खालिद कहते मेरी डीपी विदाउट फिल्टर्स यू कैन टेक, वाह सही वाह चाचो द चिमके तो। चाचा सची सची बुधायो, छापिया लगाया अजकल्ह एडा चमको पया।

लॻा किशोर भाई केॾे चापे डीपे ज़ूम करे ॾिसो, आउं कुझु नथो चवां, बाक़ी हा टिकटॉक ते फिल्टर हणंदो आहियां, कूड़ कोन्हे अला। चलो इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे, टिकटॉक ते त फिल्टर्स माण्हू वैसे ई जाम लॻाईंदा आहिनि, और डीपी माशाला भली अथव। अरे ज़ीशान अली राहूजा तव्हां सां सां गॾु मौजूदु आहियो, मोहबतियूं तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। वाइटिश ब्यूटी क्रीम लॻायो पिया कोन, इहो ॿुधाइजो, अगरि तव्हां फेयरनेस क्रीम लॻाइण चाहियो था त तव्हांजे लाइ वाइटिश जी लवली क्रीम मौजूदु अथव। इहा वाइटिश जी लवली क्रीम त बाबा तव्हां सभिनी जे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे, छो त नाइट क्रीम त मतिलबु कोई कोई लॻाईंदो, पर फेयरनेस क्रीम त हर कोई लॻाईंदो आहे। सो वाइटिश जी लवली क्रीम तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो, छो त वाइटिश लवली क्रीम वाइटमिन सां भरपूर आहे, सनस्क्रीन बि एड कयो वियो अथसि तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ। सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, तव्हांखे मज़ो अची वेंदव, ऐं तव्हां ॿियूं सभु फेयरनेस क्रीमनि खे सफ़ा गुड बाय करे छॾींदा। सो लाज़मी तव्हां वाइटिश लवली क्रीम ट्राए करे ॾिसो। उन खां अलावा तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। ऐं हाणे हिते टाइम थियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ठीकु आहे? न न्यूज़ हूंदा, उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा, पोइ जल्दी वापसी तव्हां ॾे मोटींदासीं। तव्हां हिते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। Whitish Anti-Skin Beauty Show is sponsored by Whitish Beauty Products, Anti-Skin Beauty Products. Lagate jaiye, khoobsurat hote jaiye.

0: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है GAFM 88 की सरमस्त आवाज से।
1: तो डालो धमाल और बोलो
0: GAFM 88
1: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। माचूदी हमारे साथ जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सगरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके कार को फॉलो करके अपनी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो बढ़ाते जाते हैं। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो लगाते जाइए जनाब। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03-1579-0595 03-1579-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइटिश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने पहले आप लोगों को बताया व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अभी सरा मैं आप लोगों को बताऊंगी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए इतनी सी बात आप लोग सबसे पहले जान लें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, इसके साथ साथ आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैसे ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम और दूसरा डी स्किन फेस वॉश। ये दोनों चीजें हैं और बहुत ही लाइट वेटेड फार्मूला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना ऐसी बहुत सारी आपने नाइट क्रीमें लगा कर देखी है जो कि बहुत ज्यादा जो है ना वो ऐसा होता है कि जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो मजीद जो है ना पता नहीं अजीब सी हो जाती है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ती है बल्कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है वाइटामिन ई बीड्स से। वाइटामिन ई बीड्स जो है ना ये फार्मूला पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है और 2-3 प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। तो वाइटामिन ई बीड्स है माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ तैयार की गई ये एक जबरदस्ती क्रीम है जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के नाम से अवेलेबल है। और इसके साथ आपके चेहरे पर अगर रिजल्ट की बात की जाए तो आपके चेहरे पर सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल के बाद जो ना वो परफेक्ट सा रिजल्ट लाने वाला प्रोडक्ट है। तो 2 रातें आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हों वो खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा आपके चेहरे पर जो है ना वो अजीब से निशान आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन ग्लोइंग बन जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो 2 रातें आप इस्तेमाल करके देखिए अपनी खूबसूरती को बढ़ता हुआ देखिए और साथ में आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन फेस वॉश। डी स्किन फेस वॉश ओके हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके चेहरे पर जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, आपके चेहरे पर जो है ना जितने मसले हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए जनाब डॉक्टर से रिकमेंड किया गया एक प्रोडक्ट है जो कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि डॉक्टर जिसकी तस्दीक कर चुका होगी ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल लगा सकते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल लगा सकते हैं। डॉक्टर से ये तस्दीक शुदा प्रोडक्ट है और साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी अप्लाई करेंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो है ये दोनों चीजें आप साथ में लगाइए। रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्रीम और बाकी फेस वॉश आप दिन में लगा सकते हैं, रात में लगा सकते हैं, किसी मरतब आप अपना फेस करना चाहते हैं फेस वॉश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर लाजमी जो ना वो अवेलेबल कराते जाइए ताकि आपके एरिया में भी मिलते रहें और ऐसा ना हो कि आप कहीं दूर जाएं तो ही आपको ये प्रोडक्ट्स मिले। तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और आपको इजीली मिल जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। लगाते जाइए और खूबसूरत होते जाइए। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछा था कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी वो हैं वो इंसान जो कि अपना फोटो निकालते हैं तो 250 फिल्टर्स लाजमी इस्तेमाल करते हैं। भाई फिल्टर्स का जमाना जो है वो चल तो काफी ज्यादा रहा है लेकिन फिल्टर्स की जरूरत उन लोगों को काफी ज्यादा होती है जिनके चेहरे की स्किन सही नहीं होती, जिनके चेहरे पर निशानात होते हैं एक ही नहीं होते हैं। तो अगर ये चीजें आगे चेहरे पर हो ही नहीं तो आपको फिल्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन फेस वॉश आप लगा सकते हैं। इन दोनों चीजों के इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे पर जितने मसाले वो सारे खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो क्लियर स्मूथ और शाइनी बन जाती है।

ओके जी, सो बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर शीला कुल की आवाज में हमने लगा लिया है, जो कि हमें एक प्यारे भाई ने फरमाइश कर दिया था। मैसेजेस की जाने बातें हैं तो आपकी मैसेजेस पढ़ेंगे। यासीन कुटाड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, कहते अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर अमा बधाई की आयो, पुरानी ईद जो मुबारक हो, जनवा गर्मी हालत खराब करे छड़ी आ है वैसे, और तमाके जो था भली करी आया प्यारा भा, फहा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाब शाह, सलाम अदी शो तमाजो नाइस आहे, वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा मोहब्बत हूं, तमाजो प्रोग्राम बुधो पया। उनका अलावा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं, बाजी सिद्रा आप कैसी हैं, बाजी कल फरमाइश की थी क्या याद है या नहीं, शेला गुल का गाना लगाइएगा, थैंक यू, एंड जमादार वीरम आसिफ सोलंगी, सलीम एंड मुबशिर सोलंगी को डेडिकेट कीजिए, चलिए ये गाना आपका चल रहा है आप इंजॉय कीजिए।

ओके जनाब, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। और ये मौजूद है असा के ही वारो गानो बुधायो, कहीं अर्श पर कहीं फर्श पर कहीं उनके दर कहीं दर बदर। चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना लगाऊं, लेकिन आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, तो बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आज सॉन्ग सुनाए फायजाली का, फायजाली बिल्कुल आपको सुनाई जाएगी। और चाचा खाली चुनी जो मेरे साथ मौजूद है, चाचा बिल्कुल तमाम गानों भी हलायूं था वेरो पनी सीट थे। और ये है सगलीन अब्बास, आप कैसी है, उम्मीद है की अच्छी होगी। जी जी मां सफा अच्छी आया आई तुम डोंट न्यू एंड सो मोहब्बतों प्यारे भाजू। और ये है जी हमारे साथ हेलो सिद्रा मुस्कान, मकसूद मल्हा मेहरापुर से सिद्रा मुस्कान लिखते हैं कि किसी के चीखने चिल्लाने से उसका नसीब तो बन सकता है लेकिन तकदीर नहीं बदल सकती, यह तो हकीकत है वैसे। और मकसूद मल्हा कहते हैं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पूछते हैं बोलते हैं तुम हमारे, थोड़ा सा मैसेज समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, शायद ये कहना चाहते हैं कि सब आपके पीछे पड़े हुए हैं और वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या इस्तेमाल करें, आप इतने प्यारे हो चुके हैं। तो उन्हें बताइए जनाब कि ये वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कमाल है कि आप इतने ज्यादा प्यारे बन चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लगा दे जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है, ताकि आप लोगों की खूबसूरती मुकम्मल हो जाए, आप हसीन प्यारे और

अच्छा गुड आफ्टरनून सिस शो तव्हांजो लश्पश आहे अताउल्ला ऐसा खेल भी प्ले करना और सखर वालों के लिए चलें सखर वालों के लिए करेंगे ये गाना और क्या कहते हैं आप हमारे साथ हैं बलोच है जी मीरपुर खास से आप हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया और ये किसी ने लिखा है अहमद मुगल का गाना सुनाइए रात थे थी तो सूरज जागन था अली नवाज नूरपुर से हमें सुन रहे हैं क्या बात अली नवाज भाई आपका वेलकम

अच्छा गानो तो ॾाढो भलो आहे ॿुधंदासीं पर मैसेजेस आहिनि मुंहिंजी दिलि चए थी जल्दी जल्दी मैसेजेस ख़तम करे वठां जी वरी कमेंट तरफ अची सघूं और ये हमारे साथ ही हांजी बाजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एच और डी स्किन के प्रोडक्ट्स अब हमें बिल्कुल जी बताएं ये बताएं थोड़ा सब्र कीजिए इमरान अली बरोई भाई हमारे साथ मौजूद है लाड़काना से बहुत शुक्रिया और ये हमारे साथ हैं जी ईद मुबारक कबूल हो 78 मोरी से राजा हमीर चंद किशोर कुमार हीरा लाल पवन कुमार प्लीज विले फायजा असान ले सियाणो चले मां कोशिश कंदमि बिल्कुल फायजा जो गानो हलाईंदासीं पर इहो न को ॿियो हलाईंदासीं और विलेज से अच्छा ये केटी जतोई से मोहम्मद नवाज मला हमारे साथ कहते ईद मुबारक दी खैर मुबारक अदा वालेकुम अस्सलाम आपी सिद्रा मुस्कान आई फादिली लाशारी टॉपिक का जवाब मैं स्नैपचैट यूज करता हूँ फिल्टर्स में और सलाम टू प्रिंस मोहसिन लाशारी और हसन अली इम्तियाज अली लाशारी को चलें जी बहुत शुक्रिया भाइयों को वेलकम करते हैं विलेज केटी जतोई से नवाब मोहम्मद नवाज मला है मोहम्मद नवाज मला तुम्हारा मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पे

0: साईं ओ सा आहे सचाई ओ साईं ओ साईं
1: जीए एफएम 88
2: सिंध की आवाज
3: तहजीब व सकाफत से सजी
4: सजी
3: सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज जीए एफएम 88 की आवाज
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: आए मजबूत करे छरींदो बुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूखजण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
1: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
0: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आए राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
2: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक एन आई सी बी डी रोड सखर हैदराबाद ए लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी डी एच एम एस आर एच एम पी इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्ते गुर्दे ए मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वगे ताईं एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे आचर से चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश का बचन नंबर वठन लाए 0327-84-60-746
0: खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
3: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
0: DHMS सिंध
3: RHMP इस्लामाबाद
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
3: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
3: कमर दर्द
0: अर्कुन निसा
3: जोड़ों का दर्द
0: हेपेटाइटिस
3: वजन की कमी या ज्यादती
0: बे औलादी
3: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
3: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
3: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
3: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
0: राब्ते के लिए
3: 0326-22-00-440
0: खुशखबरी बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई है जी हाँ साल 2026 दाखलाओ जारी आहिन मुख्तलिफ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी BS कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई फिजिक्स रियाजी आई शुमारिया जेड़ा अहम प्रोग्राम्स ह्यूमन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी BS केमिस्ट्री BS बायोटेक्नोलॉजी BS एनवायरमेंटल साइंस इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज BEd 4 साला MS एजुकेशन 2 साला मुस्तैक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी उम्र की हद 35 साल फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई वही है लिहाजा देर न करो ऑनलाइन अप्लाई करो www.apy.bnbwu.edu.pk गर्मी थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो प्या हाने परेशान थियण की जरूरत ना है पेश आहे शरबत रूहे राहत कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवां के दे ताजगी सुकून आई हकीकी राहत दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण गर्मी जी

0: प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

बेस्ट फ्रेंड प्रिंस मोहसिन लाशारी और आपने अपने दोस्तों को प्यार दिया है बहुत ज्यादा, तो क्या बात है जी, दोस्तों को प्यार दिया कर। और उसके अलावा इरम गेरी माय डियर दिलबर प्लीज प्ले तो मुझे दोस्त नहीं यार, मुमताज मलिक जो गानो हुआ मैं कोशिश कदम हलाइंदा सी अगर टाइम बची हो तो। ये कहते हैं वेरी गुड शो आपका, थैंक यू सो मच, नाम नहीं लिखा आपने, अपना नाम लिखा करें। इमरान अली बिरोई हमें सुन रही है लाड़काना से, इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा इमरान भाई लिखते हैं कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमें सिर्फ नजर मिलाने का शौक था, मगर क्या करें नजरें तो उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरें चुराने का शौक था। आए हाय। अच्छा विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं। गोठ गदेची लाड़काना से गुलाम सरवर सुमरो है, वालेकुम अस्सलाम बाजी मुस्कान, गाना चलाए ओके बात आज मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुध पया, मकसूद मरा हमारे साथ हैं, गाना तो सुनाओ सिदरा चले तवा जो गानों वाली सुबह बुधंदी अजी लिस्ट जो फुल थी चुकी है और

ओके जी, ये मैसेज हमें मिला है जी, खतादार ASP हमारे साथ मौजूद है, अब इनका नाम है या पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही है, आपने मैसेज किया है जी, बहुत शुक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, थैंक यू सो मच। आप जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी।

अच्छा एसन और पानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एसन तवा के वेलकम चौं था। इमदाद अली पमर असगर मौजूद है, वेलकम चौं था वहाँ के भी। अदा किशोर भाई कहते हैं कि अदी लिस्ट फुल थी थी तो कुछ गाना हार जी वेदा हूं। हाँ बिल्कुल यही थी, और सुबह लाए बचाए रखना आयो। नन्ना बाबा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारी खूबसूरती के सफा वधाए छींदी समझो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम डी स्किन जो फेस वॉश भी मिले पो। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सिदरा नसरुल्लाह सुमरो कहाँ गया जो बोलता था, मेरे तो बच्चे भी आपका शो सुनेंगे, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे अब तो खुद ही नहीं सुन रहा, बच्चे पता नहीं कहाँ से सुनेंगे, तो पता नहीं कहाँ है। और वफा मीर मुनवर भाई हमें सुन रहे हैं। अदा तमाम जो मोहब्बतों और निगाहें सैयदा हमें सुन रही है, आपके कुछ मैसेजेस कॉमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं, तो जो रह जाए तो बस माफ कर दीजिए।

अच्छा वैसे इहा ॻाल्हि आहे, अगरि मां तव्हांखे गानो ॿुधणु ॾींदी आहियां त पोइ वरी तव्हांजा मैसेजेस तव्हांजा कॉमेंट्स ई रहिजी वेंदा आहिनि. सो हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा की या तव्हां गानो ॿुधंदा या तव्हांजा मैसेजेस शामिल कया वेंदा. टाइम सवा थोरो हूंदो आहे न, सो मूंखे प्रोडक्ट ते बि ॻाल्हाइणो हूंदो आहे, तव्हांजा मैसेजेस बि एड करणा हूंदा आहिनि. सो इन दौरान मूंखे गाने में ॻाल्हाइणो पवंदो आहे. सो प्रोग्राम आहे जना वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, अमां ताईं पहुचायो वञे पियो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां. तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो, तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो, पंहिंजी खूबसूरती खे वधायो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा वञो. असां गॾु तव्हां न डायल कयो पिया 03 15 799 0595.

अच्छा मोहम्मद हाशिम हमारे साथ हैं, आसिफ अली जुनी जो हमारे साथ हैं, सैयदा निगाह ज़ैनब हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं। अमानुल्लाह टगड़ भाई हमें सुन रहे हैं। अमानुल्लाह टगड़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। गाना खत्म हो गया, एक और गाना लिस्ट में है और गाने हम सुनते रहेंगे जी, आप लोगों के पसंद के गाने। आज मैंने सब लोगों की तकरीबन गाने की जो पसंद है ना वो लगा लिए जी प्रोग्राम में। मैंने अपनी पसंद का एक भी गाना नहीं लगाया, तो सुन ले जिसको गाने और प्ले लिस्ट पसंद ना आए तो ये आप लोगों के ही गाने हैं। अच्छा वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है भाई, आपको भी वेलकम इनको।

जी क्या बात है, हजार का जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम, मुहर्रम अली गुड़ाहो भाई हमें सुन रहे हैं और छोटी महनूर भी इनके साथ मौजूद है, दोनों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है जनाब। और इसके साथ साथ ये किशोर भाई क्या कहते हैं, ईद वही मेहरबानी क्यों वही मैं सोच रही हूँ बस आने ईद वही खत्म क्यों उस गाल के। और ये जी है नूर सिंतनियो भाई तवाके सनो प्रोग्राम वाणी पयो सो मोहब्बत हूं, बस भाई तवाके प्रोग्राम वाणी पयो सो मोहब्बत हूं। सखावत अली राजपुर तवा डायल कयो 03 15 799 0595।

उसी के साथ साथ एक और गाना हमारे पास मौजूद है जी, ये गाना जाएगा डेडिकेट हमारे चाचे को। लास्ट में वैसे भी चाचे का गाना लगता है और ये गाना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। अच्छा फजीला, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप अपनी बेटी का नाम रखिएगा सिद्रा मुस्कान, कोई मसले की बात ही नहीं। पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने नहीं किया। और क्या आप इस्तेमाल कर रही हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और मुझे बताइए।

भाई हमें सुन रहे हैं। सनाउला क्या कहते हैं, आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपकी मोहब्बतों का, ऐसे ही शौक से सुना करें। आदिल कहते हैं क्या खाती हैं, मैं तो वही खाती हूँ जो आप सब खाते हैं। दर्द दिल आपका बहुत शुक्रिया। किशोर भाई बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए होंगे ना। मोहम्मद जमान आपको वेलकम करते हैं। निंद्र फिट आई तो वहां संजो प्रोग्राम बुध।

चले सो हाणे असां तव्हां खां इजाज़त वठूं था छो त असांजे प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे न उहो ख़तम थी वियो आहे अञा ॿ मिंट आहिनि थोरी भगभग अञा कंदासीं अच्छा विलेज केटी जतोई से मोहम्मद नवाज मला रहीम मला हमारे साथ है बहुत शुक्रिया जी मकसूद मला आप अपना ख्याल रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो डायल करते रहिए 03-15-799-0595 ओके जी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे डी स्किन फेस वॉश आहे वाइट एज आहे ॾह सारा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा पंहिंजे ख़ूबसूरती खे वधायो बाबा पंहिंजो ख़्यालु रखो छो त ज़िंदगी में अगरि तव्हां पंहिंजो ख़्यालु न रखंदा न त अॻिते हली तव्हांजो बि को ख़्यालु कोन रखंदो सो पंहिंजो ख़्यालु रखणु तव्हां पाण सिखो ठीकु आहे या स्टार्ट तव्हां पाण वठो पोइ तव्हांजो हर को ख़्यालु कंदो सो पंहिंजो ख़्यालु रखो पाण खे सुहिणो सुहिणो बणायो पंहिंजे ख़ूबसूरती खे सफ़ाई ऐं चटो करे छॾियो गोरा गोरा थी वञो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो ऐं न मिले थो अगरि प्रोडक्ट जेको नंबर ॿुधायां थी प्रोग्राम में हुनते राबितो तव्हां लाज़मी कंदा कयो अक्सर तव्हां जे चवंदा आहियो त भाजी असांजे एरिया में नथो मिले असां किथां वञी वठूं त हीउ जेको नंबर तव्हांखे सॼे प्रोग्राम में ॿुधायो वञे थो त इन लाइ ॿुधायो वञे थो जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थिए तव्हां नंबर ते राबितो कयो ऐं राति करण खां पोइ तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ओके हज़ार भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया वरी सलाह तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी सुभाणे वारी प्रोग्राम में थियण वारी आहे हिकु बजे खां टे बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे सो ॿुधण विसारींदा पंहिंजो ओ हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे तव्हां माज़रत कयां पई सो मोकिलाणी नाहे बाबू सां सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड

0: चल की सर मस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White H Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8

0: दिल में दर्दनि जो दास्तान भरियो पियो आहे, जीअं तारनि सां आसमान भरियो पियो आहे। मुंहिंजी दिलि लॻी वई आहे दिलबर साईं तोसां, न त सुहिणनि सां त जहान भरियो पियो आहे। वेलकम बैक। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ ॿीहर मां सभिनी सॼणनि ॿुधंदड़नि भेनरुनि भाइरनि बुज़ुर्गनि खे वेलकम भलीकार ऐं जी आया नू। जीअं समय जेके असांखे झर झंग कमकार दौरान, ड्राइविंग दौरान या माल चढ़ण दौरान ॿुधनि पिया, उन्हनि सभिनीनि सॼणनि खे बि वेलकम भलीकार ऐं जी आया नू। जीअं समय असांजो प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क जे लाइव स्टूडियो मां पेश कयो पियो वञे। असां सां गॾु सिंध जा मशहूरु ऐं मारूफ़ ऐं सकरनि जे आसे पासे जा भलोड़ इनाम याफ़्ता सुगड़। समिन हाणे हलंदासीं सुगड़ फ़क़ीर मोहम्मद कासिम ॾाहिरी साहब तरफ़। साईं अस्सलाम अलैकुम।
1: साईं वालेकुम सलाम। साईं कहिड़ा हाल आहिनि?
0: साईं दुआऊं अलाह जा छा नवां ॿुधायो, कीअं आहियो, ठीकु आहियो?
1: अलहमदुल्ला शुक्र आहे साईं, ईद ख़ैर जी कईसूं।
0: जी भाउ माशाल्लाह ख़ैरनि सां असां बि ईद कई।
1: हा ईद कईसूं ख़ैरनि सां, वरी प्रोग्राम हो ईद जो, ईद मिलन प्रोग्राम।
0: बिल्कुलु बिल्कुलु।
1: हा पोइ
0: साईं तव्हां हाणे असांजे सामान खे ख़ुदा जे ॾिने मां छा ॿुधाईंदा?
1: साईं हाणे गुजार त पढ़ंदासूं।
0: बिस्मिल्लाह।
1: हा गुजार त साईं चवे थी उस्ताद गुलबेग, ए नाला लोह जो न कर, ए नाला लोह जो न कर, मुंहिंजी ॿोली नालो आहे। गुलामंद, ए नाला लोह जो न कर, मुंहिंजी ॿोली नालो आहे। ए नाला लोह जो न कर, मुंहिंजी ॿोली नालो आहे।
2: भला ईअं त चए थो, ए राजा
1: जी,
2: ए राजा, ए बादशाह, ए उमर बादशाह, मूंखे कोर्टन में कैद बंदि न कर। मूं मिसकीन जो घर पोइते मंगणो खेत सां थियल
1: आहे। लोह जो न कर,
2: लोह जो न कर,
1: मुंहिंजी ॿोली नालो आहे।
3: सोणल प्री
4: मारवी कोर्ट में बंदि आहे।
2: हा साईं।
4: हा हाणे मथे झुड़ जॾहिं ॾिसे थी न मे गमल हार,
2: हा
4: त पोइ वरी हिनखे पोयां जूं यादगिरी थिए अचनि। हाणे इते ॿारवी जो ॻाल्हाइण आहे त ए नाला लोह जो न कर, मुंहिंजी ॿोली नालो आहे।
2: ए नाला,
4: ए नाला, भला ए बादल, इहे ककर न कर, लोह जा ककर नालो बादल।
3: ए सावण, ए सावण, इहे शोर न कर,
2: ए मेघ मलार न कर, गज गोड़ न कर,
1: बच
3: एॾी देर न कर,
4: बचे बाबा फकीर बच,
3: एडी या लेट न कर, अवेयर न कर,
4: बच लोह जो न कर, मुंजी बोली नालो,
2: मुंजी बोली चतो, मुंजी दिल मन

0: ਇਹ ਅੱਧਾ ਭਾ
1: ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਾ
0: लोह जो न कर मुझी बोली नालो
1: मुझी तो भाजारिया
2: भला के तो मुझी मंडल बारी आ
1: गुजारत हुई
0: गोली पे उमर मारी पर गुलबेग गुजारत है हा ससु खां जॾहिं पुनो खजी वियो त पुनो जे पुठियां हली हली जबलनि में पहुती आहे हाणे काढ़ा गर्मियूं हाणे मथे निहारे ॻाल्हाए पई सिज सां चवे पई त ए नाला लोह जो न कर मुंहिंजी ॿोली नालो आहे साईं नालो आहे सूरज
3: वाह वाह वाह
0: नालो आहे सूरज लोह जो आहे तओ ॿोली आहे मंज़िल नालो आहे बारी नालो आहे बारी
2: हेड़े हाय
0: हाँ हाँ चवे पी ते ए सूरज तो न कर मुंजी मंजल बारी आ मुखे अञा अगते हलणो आ एडो तो कंदे आ हली की सके
3: वाह वाह वाह सही वाह वाह वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह
1: वाह वाह सही वाह वाह सही वाह हाने हलौं था सुगड़ फकीर मोहम्मद इदरीस जमाली साहब जी साईं खुदा जे दिन में छा बुधाईंदा साईं
4: साईं गुजारत जी सिंफ हले पई तो असां गुजारत ही पढ़ंदासीं
1: बिस्मिल्लाह
4: सामाइन के बुधाईंदासीं
1: जी जी
4: उस्ताद गुजारत है त सुर उमर मारवी
2: जी जी
4: सुर उमर मारवी में गुजारत है त अदा उमर एड़ो नालो पानी जो कई जो को नालो करे ही ना
2: आय आय वाह
1: बड़ बड़
4: बाबा एड़ो नालो पानी जो कई गुलाम सही जो को नालो करे ही ना हाँ
2: एड़ो नालो
4: पानी जो कई
2: हाँ
4: जो को नालो करे ही ना
2: तू मता ई ब मोहम्मद यो गुलाम मोहम्मद यो कुर्बान फकीर
1: जी उस्ताद जी
2: मता उस्ताद इए बचावे तो अदा पढ़ वरी पढ़
4: सही लख दफा गुजारत जा लफ्ज हन एड़ो नालो पानी जो कई हाँ। जो को नालो करे ही ना
2: हाणे मत उमर बादशाह खे माई मारल पई चवे त अहिड़ो बहानो पाणी जो कई पीअण जो बहानो माण्हू अजो बहानो जो बहानो अहिड़ो बहानो पाणी पीअण जो कई जो ईअं को बि उञारो करे ई न
4: बचे उस्ताद
2: हल
4: पाणी जो कई जो को नालो करे ई न
1: नालो करे ई न
4: वाह साईं
1: सवाल कई
4: वाह बचे
1: अहिड़ो को सॾु कई
4: बच
2: अहिड़ो नालो पाणी जो कई
4: अहिड़ो नालो पाणी जो कई जेको नालो करे ई न
2: पाणी जो अहिड़ो को वारो चकर कई
4: बच
2: ओ भरियो तार कई
4: बच
2: कड़ो मिठो कई
4: बच
1: अहिड़ो भमरो फेरो कई
4: बच
2: अहिड़ो नालो पाणी जो कई
4: अहिड़ो नालो पाणी जो कई
1: मेरो मेरो कई
4: बच उस्ताद
1: किनो कई
4: बच बाबा
2: वाह वाह वाह अहिड़ो नालो पाणी जो कई पो
4: जो नालो करे ही ना
2: नालो करे ही ना एड़ो अग में को भी राजा करे ही ना
4: वाह वाह वाह
2: मरी भाई
4: वाह वाह
1: वाह उस्ताद गुलबेग वाह वाह सही वाह जी असम ही हुआ उस्ताद गुलबेग जमाली साहब गुजारत देने वाला साईं मोहम्मद इदरीस जमाली साहब जी साईं मोहम्मद इदरीस साहब सजो कयो हाणे गुजारत
4: हां जी बिल्कुल गुजारत आहे बुसुर तां के बुधायो तुसुर उमर मारवी
1: जी
4: हाणे जॾहिं उमर बादशाह उस्ताद मारवी खे उठ ते खणी पियो वञे मूंसां शादी करे मारवी चवे थी त आऊं भेण तूं भाउ शादी की थी पर हू न पियो वञे हाणे मारवी जो ॻाल्हाइण डायरेक्ट उमर सां अदा उमर अहिड़ो नालो पाणी जो कई जेको नालो करे ई न से नालो आहे वकार पाणी जो आहे ख़राब ॿियो नालो आहे राजा चवे अदा उमर अहिड़ो नालो पाणी जो कई

0: को नालो करी न पर इए ना उस्ताद जदी अदा उमर एड़ो तफकार खराब कई जो को राजा करी न
1: वाह वाह वाह वाह सही वाह सही वाह वाह सही वाह वाह वाह वाह करोड़ जी गाल
2: अजी समय हाने हलंदासी सुगर फकीर कुर्बान अली जलबानी साहब तरफ साईं अस्सलाम वालेकुम
1: साईं वालेकुम अस्सलाम
2: साईं केड़ा हाल है नवाजा
1: साईं हाल भला अल्हम्दुलिल्लाह
2: साईं खुश जो आबाद जो खुदा जो दिने मा सके छा बुदाईंदा साईं
1: साईं गुजार साईं हले भाई
2: बिस्मिल्लाह
1: साईं गुजार चवे ती ते ही जात नाहे खाज जी नालो आ जे नालो अथई शहर कर
2: वाह वाह साईं वाह
1: साई जात नाहे खाज जी नालो आ जे नालो अथई शहर कर
3: ही जात नाहे
1: ही जात नाहे
3: ही कासाई नाहे
1: बचे उस्ताद
3: हां
1: बचे
4: सर ये बचवे त जदे मंग तो आयो आ
3: हां
4: त मना ही एड़ो ही
3: ही पेनू नाहे
4: पेनू नाहे या ही स्वाली नाहे
3: गद्दा गर्ग नाहे ही फकीर नाहे
4: हां ही कोड़ो बहानो करे आयो आ ही जात ना है
1: खाज जी नालो आ जे नालो अथई शहर कर
2: वा सही वा असमें साई कुर्बान अली जलपानी साहब जी गुजारत तो जारी सारी असा वक्त रे दिसों दा 3:45 थन पिया वक्त है कमर्शियल ब्रेक जो तो पहले हलों दा नडडे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तरफ अवा के केडन आए वणनो बुधंदा रहो जीए एफएम नेटवर्क जे लाइव स्टूडियो मा प्रोग्राम सुगड़ कचरी पेश कयो पे वने असा मा सा गडुंदासी पूरे 5 बजे ते अचों दा नंदडे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का पो
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
6: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
5: सुनते रहो GFM 90.8।

0: जे साम्हूं अचे थो त ताबिश थी मारे, लिकी थो त ॻोल्हा जी ख़्वाहिश थी मारे, जे कावड़ करी थो त कावड़ कुहे थी, जे परची पवी थो त नवाज़िश थी मारे। अखियुनि ते न मदहोश इल्ज़ाम धुर तूं, अखियुनि खे बि दिलि जी सिफ़ारिश थी मारे। वेलकम बैक। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ रबी रहां सभिनी सॼणनि ॿुधंदड़नि भेनरुनि भाइरनि बुज़ुर्गनि खे वेलकम भलीकार ऐं जी आया रहो जीअं समय जीअं एफ एम नेटवर्क जे लाइ स्टूडियोज़ मां प्रोग्राम सुगर कचहरी पेश कयो पियो वञे असां सां गॾु सकरन ऐं पूरे सिंध जा मशहूरु माण्हू सुगर मौजूदु आहिनि। असांजी क़ुर्बान अली जलबाणी साहिब जिन जी गुज़ारत हुई, जेके असांजा ॿिया सुगर दोस्त ॻोल्हियूं पिए, असांखे मां गुज़ारिश कंदुसि त वरी पंहिंजी गुज़ारत खे जेको आहे त वरजाइनि, जीअं असांजा ॿिया सुगर दोस्त हुनखे ॻोल्हे सघनि। अची साईं बिस्मिल्लाह।
1: साईं गुज़ारत चवे थी ही ज़ात नाहे, खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
2: जेकर मुंहिंजो कसूर आहे
1: जी,
2: जे मुंहिंजो कसूर आहे त पोइ मूंखे बश्क कर।
1: बचे साईं,
3: ही
1: ज़ात नाहे, खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
3: ही ज़ात नाहे
1: जी वाह,
3: चए थो ही कहरी मारी शिकारी नाहे।
1: बचे साईं,
2: भला ईअं बि चवे थो
3: त नाहे, खाज जो नालो
2: ज़ात जान फुल, चए थो ही फुल नाहे।
1: बचे साईं,
2: हल बचायो,
3: ज़ात नाहे,
1: खाज जी नालो
2: तयार नाहे, ज़ात जा का तयार।
1: बचे साईं,
3: ही चए थो को नओं रंग नाहे।
1: बचो
3: साईं, पुराणी ॻाल्हि आहे, को रंग नओं नाहे।
1: बचे साईं,
3: ज़ात जा रंग।
1: बचे
2: कुर्बान पढ़ अञा।
1: ही ज़ात नाहे, खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
2: शहर कर, भले वञी तू ढिघड़ी कर।
1: बचे उस्ताद जी,
4: ॿुधो कुर्बान चए थो कढण जी कर।
1: बचे उस्ताद,
3: चए थो हाणे झट पट कर।
1: बचे उस्ताद, बचे
2: पंहिंजो घर आबाद कर।
1: बच उस्ताद,
3: ख़बर कर।
1: बचे उस्ताद, बचे मूं दर खां बचे वा।
2: अञा पढ़, अञा पढ़।
1: ही ज़ात नाहे, खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर।
2: वड़े वा,
3: ही ज़ात नाहे,
2: ही ज़ात नाहे, भला चए थो ही जा माली नाहे, ही थोरो आहे।
1: बचे,
3: हल भला चए थो ही सा हड़ नाहे।
1: बचे उस्ताद,
3: या ही ज़हरी नाहे।
1: मरे
2: मरी भाई,
0: वाह साईं, वाह वाह मोहम्मद इदरीस, वाह वाह साईं, वाह वाह। अॼु गुज़ारत हुई साईं मोहम्मद इदरीस साहिब जिन्हनि खे ॻोल्हियो वरितो। साईं हाणे सॼो कयो
1: साईं, सुर हुयो लीला मजनू साईं।
0: अजी साईं,
1: साईं हाणे जॾहिं ज़हर जी देग मजनू साईं खई वियो, हाणे माण्हू साईं चवंदुसि भाउ इन ज़हर मां तोखे कुझु कोन थियो त हीउ ज़हर आहे ई कोन, ॿियो छा आहे? चवंदुसि भाउ हीउ ज़ात ई नाहे, ही खाज जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर। साईं ज़ात हुई ज़हरी, खाज जी हुई माखी, नालो हुयो मखण, नालो साईं नालो हुयो रखियल शहर हुयो माॾो। चवनि थो ही ज़ात ई नाहे, खाड जी नालो आहे, जे नालो अथई शहर कर। ईअं न चवनि थो त ही ज़हरी नाहे, माखी मखण आहे, जे रखियल अथई त माॾे कर।
0: बिल्कुलु लखां थी गुज़ारा था। जीअं समीन हाणे हलूं था, असांजो नौजवान सुगड़ फ़क़ीर आहे ऐं उस्ताद चवंदे मूंखे बिल्कुलु फ़ख्रु थिए थो, छो जो नंढी उमिरि में जेके सुगड़ ऐप जे मैदान ते पहुचनि था, उन्हनि सां गॾु प्रोग्राम कंदे बि फ़ख्रु महसूसु कंदा आहियूं। जीअं समय असांजो भलोर सुगड़ आहे नौजवान ऐं तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं कंदड़ साईं ग़ुलाम मोहम्मद सजराणी साहिबु, साईं जन खे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
0: साईं, कहिड़ा हाल आहिनि मज़ा?
5: अलहमदिल्ला, अलाह असांजा अहसान, तव्हां ख़ुशि आहियो?
0: दुआऊं अलाह जा अहसान। साईं ईद कई सुठे नमूने सां?
5: शुक्र आहे अलहमदिल्ला।
0: तव्हां दर्जी हुआ मुंहिंजे ख़्याल
5: में? जी,
0: परेशानी थी हूंदी छो जो?
5: शुक्र आहे अलहमदिल्ला,
0: तमामु ज़बरदस्त, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। अच्छा, असांजे सामान जे लाइ अव्हां अॼु छा ॿुधाईंदा?
5: असांजी गुजारत ॾींदासीं।
0: बिस्मिल्लाह
5: उस्ताद, गुजारत जा गुफ़्ता हिन सुर लीला चने सर में। गुजारती चवे त नालो चने सर जो मूंखे वखर मिले, चे तो नालो चने सर जो मुखे वखर मिले
2: वाह वाह वाह
3: वाह वाह बुलांदो वाह
5: वखर मिले आ मुखे वखर मिले
3: वाह वाह वाह
2: नालो चने सर जो मुखे वखर मिले
5: वखर मिले
2: वाह साई वाह साई वाह नालो तू इए तो चवी
5: जी बा
2: के तो हेड़ो प्यार मुखे ओ वरी लाई को कतल मिले
5: बची वने बाबा
2: वखरा प्यार हेड़ो प्यार
5: बचे
2: नालो आ प्यार
5: प्यार
2: हेड़ो प्यार मुखे हेड़ो प्यार मुखे वरी हेड़ो को कतल
3: सुनो घोट मुखे मस मिले
2: भला ई मता भला मोहम्मद इदरीस
1: हेड़ो दिल पर मर मर जान मिले
5: बचे थी सर
2: मोहम्मद इदरीस ई मता चवे तो हेड़ो छटरी लखणो हेड़ो छटरी लखणो मुखे अल्लाह को मन पसंद करे भला रंग रूप करे
5: बचे
2: फेस वगा करे मन चतो हेड़ो हेड़ो वरी छतो चई
5: तो नालो चने सर जो मुखे वखर मिले
2: वखर
3: री गाल उसन ई रिठन दी मिसाल मुखे मस मिले
2: मस मिले
5: मस मिले ता बचे बाबा
3: एड़ी का गाल टे
5: बचे सर
4: वाह संजराणी वाह वाह संजराणी वाह
3: वखर सा भुल मिले
5: बचे उस्ताद
2: भला ई बचे तो
3: वखर मिले दोही मिले
2: हो पकलो ही मिले भला हाने वखर में मुझे समझ में हाने ई बठे तो चे तो हेड़ो सोनो हसीन मुखे अल्लाह करे वरी को जीरो मिले
3: जीरो मिले
2: वखर है जीरो हां एड़ी हेड़ो को जीरो मिले
3: एड़ी गाल थी दी ना
2: हेड़े है हां हेड़ो नालो
3: हेड़ो नालो चने सर जो
5: हाँ। नालो चने सर जो मुके वखर मिले
3: वखर मिले
2: मुझे समझ में मोहम्मद इदरीस ये बचे तो चतो हेड़ो बाग बहार नालो बाग
3: हां
2: हेड़ो बाग बहार मन पसंद प्री प्यारो दिलबर अंगण रूप पसंद ओ मुके अल्लाह करे को मुश्किल मिले
5: वाह वाह करे छड़ी
2: लगे ताड़ी
5: वाह वाह वाह
2: लगे ताड़ी
3: वाह वाह वाह सर
5: वाह वाह वाह
4: वाह गुलबेग वाह वाह सही वाह जी हां साईं हाने साईं संजराणी साहब और सजो के गुजारत के
5: सही सुर उस्ताद ता के दिनम लीला चने सर जदे लीला के चने सर कढी छड्यो हाने ब्यू मायो ब्यू चवंस ब्याब घर खोड़ ने ब्याब बादशाह ने
3: बिल्कुल बिल्कुल
5: हाने लीला जो गालाणा बेन सा त नालो चने सर जो मके वखर मिले से नालो आ हैदर
3: वाह वाह
5: वखर है मुश्क
3: वाह वाह
5: चे बिद नालो चने सर जो मुखे वखर मिले ये न चे ही दर चने सर जो वरी मुखे मुश्किल मिले
3: वाह वाह वाह
4: वाह सही वाह वाह सही वाह वाह गुलाम मोहम्मद वाह वाह गुलाम मोहम्मद वाह
2: सलीम साहब सवेर जका अवा एकड़ी गाल कई त गुलाम मोहम्मद अवा हियर दर्जी हो ईद ते पैसा बैसा डाडा सुठा कमाया हूं
5: शुक्र आ बाबा
2: ते इन जाए ते दर्जी ते मखे एकड़ो बैत दिल ते चढ़ी आयो तड़े मुवा के टाइम वरतो खाजा गुलाम फरीदा चयो त इश्क तड़े में को दर्जी किता में घिन आई यार मशीन ने कसम करी
3: वाह वाह वाह वाह
2: इश्क तड़े में को दर्दी किता में घिन आई यार मशीने कसम करी में बनक बनक दे चोले सीसा जो यार मैडा शौकी ने कसम करी
3: वाह वाह वाह उस्ताद वाह
2: सीसा चोला पासी ढोला
3: वाह वाह
2: सीसा चोला पासी ढोला लग सा यार मैडे दे सीने कसम करी में
3: वाह वाह
2: आखे मियां गुलाम फरीदा जो चोले दी सिलाई में मूल निकल सा जो यार मैडा मिसकीने कसम करी में कसम करी में कसम
4: हाणे हलंदासीं सुगर फ़क़ीर पंहिंजो साॻियो सुगर फ़क़ीर गुलाम मोहम्मद संजराणी साहिब जी साईं हाणे छा
5: ॿुधाईंदा नालो ई न
2: ओ कमाल जन में नालो ई न को मुझो सजण ई न को साथी ई न
5: बचे
2: को सुहाग ई न
5: बचे
2: बाबा पढ़ो
5: जी पो कमाल जन में नालो ई न
2: पो कमाल जन में नालो ई न
5: नालो ई
2: गुलाम तू मदा ई तो चवी त यो नूर नजर ई न
5: बचे बाबा
2: हां इहो रखियल ई न
5: बचे
1: यो अंधली ने
5: बचे
2: पोख माल जनम पोख न पोख माल जनम नालो ई न पोख क्या तो मत तो जी दिली तो जा पोख जो है ब क्या तो सुबह मु उठी जने संभालियो न पर पो हु नजर दीद आयो व्यो रखियो फतेह मन पिरी पसंद ओहो अंगण ओहो मुझो जत गोडो गोरो सजन साथी मुझो को पुनल हो तराणो ही न
5: बच्चे दियो सर
2: सोढो को सरत्यो ही न मत मरे पई अल्लाह
4: बची वे सही
2: नालो सोढो
4: सोढो
2: मुमल थी चवे तेड़ो सोढो मुझो सरतो ही न
5: बच्चे दियो
4: वाह
2: अन्या पढ़
5: जे पोख माल जन्मे नालो ही न
2: के तो विछोड़ो पवे इन्हीं जंग में जो हेड़ो वरी मुखे को वरंदो को मिलंदो ही न
5: बच्चे थी उस्ताद
2: के तो पुंडल मुजो परदेस भी हाणी अन्या ते मोटियो ही न
5: बच्चे बाबा
2: को फते ही न
5: बच्चे
2: को पत्तो ही न मत मरे
5: बच्चे थी तेजी पोख माल जन्मे नालो ही न
1: जन्मे नालो ही मुजो सजन साथी वरियो ही न
4: मोटियो न
5: बच्चे थी
4: पोख माल जन्मे नालोई
2: माल जन्मे नालोई ना
5: अरे पोख माल जन्मे नालोई ना
2: भला चतो त हाणे हाणे हिते पुनर सभा मुखे आराम ही ना
5: बच्चे दी उस्ताद
2: को सलाम सलू ही ना
5: बच्चे
2: अमानत सलामती ना
5: बच्चे दी
2: अमानत सलामती ना
5: बच्चे दी
2: के तो हेड़े राज में अन्या ते को आयो को वियो को बच्चो ही ना
5: बच्चे दी
2: के तो हन घर में हन मंगणा हार में हाने मुझो दिल मन बाग बारी न
5: बच्चे थी
4: को महबूब ही न
2: को बस्ती न
5: बच्चे थी उस्ताद
4: को गुल ही न को फुल ही न
2: एड़ो अतुर अंबीर को खुशबू ही न
5: बच्चे थी उस्ताद
4: वाह वाह वाह वाह
2: अदा पढ़ आजा
5: यदि पोख माल जन्मे नालो ही न
2: पोख माल जन्मे को रखियो ही न
5: बच्चे थी
2: सुखियो ही न अल्लाह नालो सुखियो तो
5: सुखियो
2: वाह साईं वाह
4: गुजारिश आहे त हिनखे सॼो कयो छो जो टाइम थिए पियो म्यूज़िक कमर्शियल ब्रेक जो अजी सेमिस मिला
5: उस्ताद सुर ससोई पुनो में जॾहिं ससोई जबल में बीठी आहे त केरु माण्हू मिलियो हाणे हुन सां बि ॻाल्हाए त पोख माल जन में नालो ई न ते पोख जी आहे बीठी माल जान भरा नालो आहे धणी
4: वाह साईं वाह
2: वाह वाह वाह
5: बीठी आहियां बरन में मुंहिंजो को हाणे धणी आई न
2: वाह वाह संजराणी वाह वाह संजराणी
4: वाह वाह संजराणी वाह वजाए छॾे वाह साईं वाह वाह साईं
2: बन छोड़े वाह
4: हा साईं तई अॼु मट बन छोड़े संजराणी वरो जी असां प्यारा सामीनो मोहतरम ॿुधंदड़ सुगर कचहरी जूं ही सुहिणियूं ॻाल्हियूं इते ई थोरी देरि लाइ रोकियूं था अवां किथे बि न वञो छो त ब्रेक ऐं न्यूज़ खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं नवनि ख़्यालनि दिलि खे विढ़ंदड़ शायरी ऐं वणंदड़ ॻाल्हियुनि सां त गॾु रहंदा ऐं ॿुधंदा रहो जीए FM नेटवर्क हलो त हलूं था हिकु मुख़्तसिर वक़फ़े न्यूज़ ऐं कमर्शियल ब्रेक तरफ़ असां नंढड़े शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था असांजो अवांजो साथ रहंदो पूरे 5 वॻे ताणी

0: दिल में जैंजी मोहब्बत सोई आए सुघड़ यार, लफ्जन में खुशबू हुजे ऐं ॻाल्हियुनि में सचाई। वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक खां पोइ ॿीहर हुआ सभिनी सजणनि ॿुधंदड़नि भेनरुनि भाइरनि बुज़ुर्गनि खे वेलकम भलीकार ऐं जी आया नो। अॼु असां हीउ प्रोग्राम सुघड़ कचहरी जी एफ एम नेटवर्क जे तसलसुल सां पेश कयो पियो वञे लाइव स्टूडियोज़ मां। जीअं समय असांजो अवांजो साथ रहंदो पूरे पंजे वॻे ताणी। असांजे सिंध जा भलोर सुघड़ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, जिन्हनि में सुघड़ फ़क़ीर मोहम्मद कासिम ॾाहिरी साहिबु, सुघड़ फ़क़ीर गुलबेग जमाली साहिबु, सुघड़ फ़क़ीर मोहम्मद इदरीस जमाली साहिबु, सुघड़ फ़क़ीर क़ुर्बान अली जलबानी साहिबु, सुघड़ फ़क़ीर ग़ुलाम मोहम्मद संजरानी साहिबु ऐं अलगोज़ नवाज़ अब्दुल मजीद चांडियो साहिबु असां सां गॾु लाइव स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेके असांखे सुठा शाइर वणंदड़ ॻाल्हियूं ॿुधाए रहिया आहिनि। ऐं हीउ प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क जे तसलसुल सां पूरे नेटवर्क ते हिन वक़्तु लाइव हली रहियो आहे। हाणे हलंदासीं सुघड़ फ़क़ीर गुलबेग जमाली साहिब तरफ़, जेके असांखे गुज़ारत ॾींदा। अच्छा, गुज़ारत ॿुधाईंदा। अजी साईं बिस्मिल्ला।
1: हा साईं सलीम साहिब, असांजे ॿुधंदड़नि खे सलाम आहे, जो असांखे हू पंहिंजो टाइम कढी ॿुधनि था। सॼे ॿुधंदड़नि खे मूं फ़क़ीर जे तरफ़ां असलाम अलैकुम हक़ मौजूद याली मदद चवंदासीं, छो जो हुननि खे सलाम आहे जो ॿुधनि था। जे हू असांखे न ॿुधनि त असांखे केरु ॿुधंदो? इहे आहिनि हुननि जूं महिरबानियूं। सदाई हू ख़ुशि आबाद हूंदा। सभिनी खे अलाह सां आबाद करे। गुज़ारत मुंहिंजी जा अखर थींदा उस्ताद मोहम्मद कासिम
2: जी जी जी
1: साहब
2: जी जी।
1: लोह माल जूं ज़ात शहर विया।
2: लोह माल जूं
1: ज़ात शहर विया।
2: ज़ात शहर विया।
1: लोह माल जूं ज़ात शहर विया। रे ज़ात शहर विया।
2: हाय हाय।
1: ससु ई सुबुह जो उथी त पुनल आहे कोन।
2: वाह वाह।
1: पोइ सर्तियूं साहिलियूं पियो चवनि त हुन जा हेतिरा उठा, हू टे चार पाण में भाए रहा। उन्हनि ज़रूरु ॻाल्हायो हूंदो तोखे, तूं सुजाॻ न थिए, तोखे ख़बर न पई। पोइ ससु ई पई चवे पंहिंजे सर्तियुनि साहिलनि खे, लोह माल जूं ज़ात शहर विहाड़े ज़ात शहर।
2: लोह माल जूं ज़ात
1: शहर विहाड़े ज़ात शहर।
2: इहे हो त मुंहिंजा विया
1: बचे
2: बलोच विया
1: बारी
2: विया आरी
1: बच।
2: हा, ज़ात
1: लोह माल जूं।
2: हा कुर्बान।
1: लोह माल जूं ज़ात शहर विहाड़े ज़ात शहर।
3: आरी छिनी विया
1: बच।
3: ज़ात जा आरी शहर छिनी
1: बचे। साईं बात कुर्बान जलबाणी
3: चंदो हो बलोच हो त पुनल मुंहिंजो कढी विया शहर।
1: बच बच। लोह माल जूं ज़ात शहर विहाड़े ज़ात शहर विया। हा साईं,
3: इहे लेलियूं छेलियूं माल जूं छगियूं चोगियूं।
1: बच बच।
2: कड़ी क्यों तवारियूं?
1: बच।
3: माल जो रड़ू रंभू।
1: बच।
3: माल जो खोड़ियूं उस्ताद।
1: बच।
3: पिड़ियूं पिड़ियूं माल
1: बच है बच
2: जो चढ़ियूं चढ़ियूं
1: चढ़ियूं मरी वही कसम।
0: वाह साईं वाह वाह ॾाहिरी वाह वाह ॾाहिरी वाह। जीअं सम्झी विया गुलबेग जमाली साहिबु जिन जी गुजारत ॻोल्हण वारा मोहम्मद कासिम ॾाहिरी साहिबु। जी साईं, हाणे गुजारत खे सॼो कयो।
1: गुजारत जा अखर साहिबु आहिनि त लोह माल जूं ज़ात शहर।
2: जी
1: साईं, सुबुह जो ससु ई निंड मंझां उथी त पलंग ते पुनल न आहे।
2: हाय हाय।
1: जलबाणी साहिबु पुनल पलंग ते नाए पो सरचो साहिलन चयो ते हेतरा उन जा बटे उठा आई जत उन जा होत बलोच भाई राया तो जा देर उन जरूर पण में उठ्या हु दा गलायो हुंदो तो के खबर ही न पई
2: जी
1: उठ में चढ़ा बदला चढ़ियो हु आई उन रिंग कया हु दा गुड़िया हु दा उठ उठ्या हु दा चेत लोह माल जो जात शरिया सही लोह जो आने चढ़ियो
2: जी
1: लोह जो आने चढ़ियो गुजारत जा अखर पावा दिसो त पहरिया बिने बंधन में के चतू हुंदो पोया वरी बिने बंधन में ब्या खरो हुंदा
2: हां जी
1: लोह जो आने चढ़ियो जात जा हन चांग हेडा जात जा चांग ने हेडा वरी उठन के चांगो चबो आ जात जा हन चांग जात जा हन बुट जात जा हन बरोच रात आओ शहर आए बारो चौबाग रात जा बुट शहर आए बारो चौबाग हाने ससु ही पई चवे पंजे सरतन साहिलन के त लोह माल जू ओ जात शहर विया ये न ससु ही पई चवे चढ़ियूं चांगन जू चढ़ियूं चांगन जू बुट बारो चाविया
3: है है है
0: तोड़ ही गाला वाह वाह
4: वाह सही वाह वाह वाह जमाली वाह जी असम तू जे अची तो चंड भी चमकी पवे तू जे खिली तो गुल भी महकी पवे अजी असम असो प्रोग्राम जीए एफ एम नेटवर्क से तसलसल से पेश कर पे वे असा गड हंदी पंजे वगे ती हाँ हलूँ था सुगर फकीर मोहम्मद कासिम डारी साहब तरफ जी असा कुछ बुधाइंदा
3: जेको मिले जैखा झोल वडो झलजे पो पान खणी पलजे पर दे न डोरा पो दिजे पर मोहब्बत जे मन में से मेरा की न थियन
0: हाय
3: मोहब्बत जिन जे मन में से मेरा की न थियन अवल सजदो दई अल्लाह के पो खल्क जी खिदमत कन ओए की न वली थियन जिन जो इश्क अल्लाह
0: वाह वाह वाह
3: पर मोहब्बत जिन जे मन में से रंडिया रोड़िया जन मोहब्बत जिन जे मन में से रंडिया रोड़िया जन तन जो सरा फन अण तोरियो अघायो आश्क जहर प्याक विह दिसी वेसन घणो आश्क जहर प्याक विह दिसी वेसन घणो कड़े आई कातुल जा हु हमेशा हेराक लगन लऊं लतीफ चवे फना कया फेराक तोड़े चिकन चाक तब आह नसरी ना आम
0: वाह वाह सही
4: वाह सही वाह
3: पर देसी सेण कजन परदेसी केड़ा परी देसी सेण कजन परदेसी केड़ा परी लडियो लाडाणा कयो हु हल्या हो त वनन पुजाणा प्रियन कजे बस भो रख
0: वाह वाह
3: पर से बैता है गुलबेग फकीर
0: वाह वाह
3: त मारफत वारे मुल्क ते कानी मिलावट मारफत वारे मुल्क ते कानी मिलावट नफिल नमाज़ो तर्क थे आई ज़ुहद इबादत फज़कुरूनी अज़कुरकुम तन में तिलावत जाहिर को झा कापड़ी मन अंदर मोहब्बत चवे जानन चन सामिन सा सोहबत करे दिसी त कल पवे
0: वाह वाह वाह वाह
3: पर उछले छ आकड़ के तदे मिले अल्लाह तेरा पाक के आकड़ वारो मानो पसंद ही ना है उछले छ आकड़ के तदे मिले अल्लाह एहरामी थी इश्क जो थी उघाड़ो आ से फकीर जमण जी गाल कई पाए गारो गिची में इए पेटो मा उन्हें अचण के याद कर तू सागियो रख समा पो हिता वींदे पोइते तू केड़ो बध्यो वींदे पुला पर नाहक बिन घड़न कान तू त बांवरियो आही भा चवे जानन चन आकड़ई अल्लाह कदे न ठया पान में पर जे थो दिसा तो जे थो दिसा पांजे डोहन के त मुजा फिफड़ था फड़कन जे थो दिसा पांजे डोहन के त मुजा फिफड़ था फड़कन पर जे वरी दिसा तो तुजे रहमत दे त मुजा मेरा था मुरकन ला तक न तो मिन रहमत ला मुझा जूठा था जरकन
1: जिन वाली वड़ कन तो बाने बाह सेरा दी हाँ ना सही सही बैठा है तो खर के कथूरी मख जे खणी मण खर के कथूरी मख जे खणी मण तब लेटी पंदो लिड में जो पुछड़ो तो बण पर ओ जन छदे ओजरी ओ जन छदे ओजरी तोड़े सर्फ हणी से साबण
4: वाह दहरी वाह
1: बाकी अदा लूसी मा लक्षण मूर न थिंदो मलार के
4: वाह दहरी वाह
1: सही बैठा है तो रुगो काबे अग्या जे सखणा सिर झुकन एहराम उजरा करे बीणा खणी बधजन पर नियत नेक नाहे नमाज़ों पिण पढ़जन चुमजे चाउट रसूल जी रोज़ा पिण रखजन तप मौला ऐं महबूब बैठा दाइम दिलियूं ॾिसनि पोइ कलब जॾहिं थो कलब थिए त पोइ दोहरा दान मिलनि तालब मौला तलब में जन मोहबत रखबी मन हज हज़ार कजनि त बि दर्जा आहिनि दिलनि ते पर तोड़े ज़िक्र करी ज़बान सां रखे लहल निहार तस्बियूं थुलियूं तोड़े अस्त कफ़ार तोड़े वेस वॾा करी हमल चवे हज़ार त बि दोस्त वटि दरकार दुको आहे हिकु दिलि जो पर हमल फ़क़ीर बैता त सौ साल सजण गॾु नाल वसे त बि अखियां वेख न रज ॾियां
4: वाह साईं
1: सौ साल सजण गॾु नाल वसे त बि अखियां वेख न रज ॾियां पल पल वेख प्यासा आवन वलवल वेखण भॼ ॾियां लोक तोड़े लख टोक करे त बि लोक कानून लज ॾियां हमल इश्क असां ॾे ॾियां धम धूम धमाला वॼ ॾियां
4: वाह हमल वाह वाह साईं
1: पर ससु हमल फ़क़ीर ससु में सराइकी में ॻायो आहे चए थो जे में ॼाणा केच कशाले त पेटो मूल न ॼावां जे में ॼाणा केच कशाले त पेटो मूल न ॼावां जम जे ज़हर जा ॾे वञा त दुनिया वटि कीअं आवां किथे पुनू त किथे में ॼाई त किथे लधिया में लावां लिखिया रोज़ अज़र दा इवें कहिड़े कहिड़े गम खावां जिना ॾुखा नाल ॼणिया छल मरनि उन्हनि जा मावां आखे हमल रह तूं रज़ा ते राज़ी जे तूं ॼाणी त रब को कर भावां जे तूं ॼाणी त रब को कर भावां
4: वाह साईं वाह साईं अजी असां मां इहो हुया सुगर फ़क़ीर मोहम्मद क़ासिम ॾहरी साहब हाणे हलंदासीं सुगर फ़क़ीर कुर्बान अली अजलबाणी साहब तरफ़ अजी साईं बिस्मिल्लाह
5: साईं बीह ते ॿुधायां थो नसीहत जो साईं
4: बिस्मिल्लाह
5: जे सॾाई उबदार हैदर जो बंदा छॾ तूं बांवर
4: वाह
5: जे सॾाई उबदार हैदर जो बंदा छॾ तूं बांवर वॾाई आहे वाहिद खे जेको आहे पाक धणी परवर मदाई कढ मन जी मारे छॾ मुनकर नियत साण निमाज़ पढ़त सवलो थई सफ़र दगा कढ दिलि मां लाए ला हू अला जो तोड़े विर्द कर ॿीड़ो मिलंदई बानप सां ई ख़ासि ॿुध ख़बर छल मिठो मोहब मुनवर अची कुर्ब करे कबर मंझि कुर्बान जे
4: वाह साईं वाह वाह कुर्बान वाह
5: अञा बि सही नसीहत चवे थी जे बेवकूफ़ सां बाज़ार में जोड़ न थीजे जुड़ी बेवकूफ़ सां बाज़ार में जोड़ न थीजे जुड़ी पूरो न ईंदसि पटको वराए हणंदो वड़ी लज न कंदो लोक जी ख़्यालु कंदो खुड़ी धरे ॾिसंदेसि ध्यान सां त सीनो वेंदसि सड़ी चवंदेसि चाह मां त चरियो पवंदो चिड़ी विञ अहिड़े मोगे तां मुड़ी अथई माठ में मज़ो मामन जे
3: वाह कुर्बान वाह वाह
5: साईं हाणे बेत आहे साईं हुसन ऐं इश्क ते साईं हुसन आख्या में सोणा मोती हुसन आख्या में सोणा मोती इश्क आख्या में पहाड़ दी चोटी हुसन आख्या में सोणा मोती इश्क आख्या में पहाड़ दी चोटी हुसन आख्या में सोणा हीरा इश्क आख्या में जलावा जेरा हुसन आख्या में लाल रंग इश्क आख्या में बनावा मस्त मलंग हुसन आख्या में बाग बहार इश्क आख्या में खुद मुख्तियार हुसन आख्या में गुलाब दा गुल इश्क आख्या में विञावा होश अकल हुसन आख्या में सदाई माणे इश्क आख्या में पिणावा घाणे हुसन आख्या में सदाई नाज इश्क आख्या में जलावा आग हुसन आख्या में हर हंध हाक इश्क आख्या में चिकांदा चाक हुसन आख्या में सिंगार सजावा इश्क आख्या में घोट कुहावा हुसन आख्या में रंग रचावा इश्क आख्या में पतंग पचावा हुसन आख्या में हड़ई हैरान किते इश्क आख्या में आबाद बर बैबान किते हुसन आख्या मेडी सूह सवाई इश्क आख्या ते को आशिक वतेन चाई हुसन आख्या मेडी गाल वडी इश्क आख्या में सिंगारी करबल वच अडी हुसन आख्या मेडा आला शान इश्क आख्या में कोहाया खानदान हुसन आख्या मेडे महल मकान इश्क आख्या में थीसा कुर्बान हुसन आख्या मेडी गाल सुनानी इश्क आख्या में सतक थीसा जलवाणी हुसन आख्या मेडी हाक मशहूरे इश्क आख्या ना माड़ी जलवाणी दूरे ना माड़ी जलवाणी दूरे ना माड़ी जलवाणी दूरे।
4: वाह साईं वाह वाह कुर्बान वाह वाह कुर्बान वाह। अजय समन यो या असंजा भलोड़ सुगर फकीर कुर्बान अली जलवाणी साहब असमन अल्लाह के तरफा इन अखिन के नूर का नाबीन होंदे भी यो इनन जो इश्क आ यो इनन जो चाह आ जैमें ही इन वक्त सुगर हैं असा सा स्टूडियो में मौजूद हैं साईं जन दिल के गहराइन से थोरायता आयो समन ही प्रोग्राम जी एफ एम नेटवर्क के तसलसल से पेश कर पे वे असा गड असन सिंध जहाँ मशहूर और मारूफ सुगड़ असा सा गड मौजूद है। हाँ हल्दी असो सुगड़ फकीर है गुलाम मोहम्मद असन जानी साहब तरफ अजी सही तुम असा बुधाई

सलीम साहब सुर राणे मूमल में मामा के बैत बुदाई दुस हाने हमीर बादशाह उमर बादशाह जो पी आए जको हमीर बादशाह उनजा वजीर ट्रे राणू शीणो धमाचाणी डौर भट्टी ट्रे वजीर चौथो बादशाह हाने मूमल जी काक में अची पोता हाने मूमल जी काक में बाग में अची वेठा हाने दिसू त नातरबानी अचे थी त मुंहिंजा महिमान अची विया आहिनि त हाणे ॾिसो त मूमल नातरबानी ऐं राणे वारनि जो पाण में ॻाल्हाइण थींदो फ़क़ीर सां ई ॾिसो छा अची थिया महिमान मर्द मूमल जा उते तरसी पिया अथऊं गर वट बधाऊं वणनि सां शाम पसी छजर चुड़ेली जे चमन में हू चौॾस ॾींहं पिया चकर बांका घुमन बाग में शेर वठो छपर हिकड़ी त मौज मल्हारी मेवन जी ॿिया दीदार भला दर दर हिकड़ी तू खूब ख़ुशबू गुलनि जी ॿियो

आखिर कयाऊं तवण त्यारी ताम जी खाधूं ताम सुठा सजर विछाणा विछायाऊं खणी पलंग मथे पधर आशकू थिया असुर वेल जो पढ़ियों फर्द फजर ओ जडे रात गुजरी डीह थियो कयाऊं सिंगार भला सा झर ओ जडे मुंद निकती माड़ी मजा आई ना रकंदी ना तर जडे मुंद निकती माड़ी मजा आई ना रकंदी ना तर बांका उठी बीही रहा मता हुजे साइण पंजे सिर नातरबानी सलीम साहब एडी सोणी हुई जडे नातरबानी बंगले मा हिरण दे आई हिरण चो मुंह मले हाचे पई कड़ी खबर तो मुमल जा बीया नातरबानी ये सोणी हुई बांका उठी बीही रहा मता हुजे साइण पंजे सिर पेशानी जेंजी परिय जेडी जी को कारी हल खणे कर जलवो पसी था जवान किरण।

0: सूमर रात सदे सदे मु पाड़ो पसरायो वेड़े वारा वण लगा त छा थई वेस ला विनायो
1: जी
0: आधी रात जो थी मद कसम ता हु केस सजो पाड़ो अच कर जो फकीर छा थयो
1: जी
0: ते सूमर रात सदे सदे मु पाड़ो पसरायो वेड़े वारा वण लगा छा थई वेस ला विनायो सुतन के सूर रही थी तायो तपायो मु चयो त महबूब न अंगण मु आयो खुदा कारण खोखर जो त सजण सदायो न त लुकमान लटायो खणी दर वणी दिल
1: पर हाय हाय हाय जरी सवा
0: पोसेन के आसरो दनो त सुबो जो सी वीदा सु बस वणी दो ते तो अंगारे रात आसरो हो त अंगण मु ईदा दिलासो इन दुखी दिल के अची दिसण सा दीदा वहम विचार वजूद मा वणण का वींदा देई प्यार पिरी मुखे वठी नाल वींदा लखे सन लुकमान चे मु थकल ते थींदा यार अची पिरी पींदा मूसा प्याला पिरी
1: वाह वाह सही
0: पर अरबा रात उदास थी कोन आयो सही सलीम सही
1: वाह सही वाह
0: कोन आयो अरबा रात उदास थी फरफर अख फरी जो भड़की बाह बदन ते बारण करे बरी सजी रात सूरन में मुझे वेई दिल डरी बैठे बीठे वा जाए पियो वाटू डसा वरी त मन लालन चे लुकमान चवे थिया चाक चरी यार साजन जी त सरी पर पांजी सरी कान साजन
1: पांजी सरी कान साजन
0: ते फकीर पोच पो यार खमीस रात खट छने मु रड़ियो करे रुनो
1: हाय हाय
0: चोलो फाड़े चाक केम पे बाकी बदन भिनो तले केड़े कुसूर करी बनी दुहागा दिनो नकी खत खोखर चे नकी पिरन मुको पन्नो मन कन लुत्फ लुकमान चवे आहा को जो किनो पर अलै छा खौ यार छिनो जो सलीम सही दिल पर बंद दीदार कयो
1: वाह सही वाह वाह सही
0: ते पो जुमे रात जदा जुमे रात जान बले मुजो संध संध थियो साणो रोंदे सजी रात टिप्स वेगाणो सिवा ते सजण जे भला के साठ है मानो खबर न पई खोखर जे तले किए रुठो राणो हफ्तो सजो है कैम पर मुझो अखर ना घाणो यार मुझी उम्र अजाणो लुड़ी वे लुकबान चे लुड़ी वे लुकबान
1: हाय हाय वाह सही वाह वाह सही वाह असामे वक्त जो एहसास पौना पंज थन पे वक्त है कमर्शियल नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो कहने ना वेणो बुधंदा रहो जीए एफ एम नेटवर्क असा चौथा नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का असा जो अवन जो साथ रहो पंजे वगे ताणी
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: पहजो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8

0: वेलकम बैक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ ख़बर पई अवां सभिनी सॼणनि ॿुधंदड़नि दोस्तनि भेनरुनि भाइरनि खे वेलकम भलीकार अचूं था। सामिन असां सां गॾु असांजे सिंध जा मशहूरु मारूफ सुगड़ ऐं असांजे सुगड़ मोहम्मद इदरीस जमाली साहिबु बेत ॿुधायो पिए, तमामु बहितरीन बेत ॿुधायो पिए। कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थी वियो, हाणे वापसि हलूं था साईं मोहम्मद इदरीस जमाली साहिबु तरफ़ जेके असांखे कंप्लीट अजय समीन। हाणे हलूं था सुगड़ फ़क़ीर मोहम्मद कासिम डायरी साहिबु तरफ़। अजी साईं
1: जी, साईं जी, साईं बेत आहे मोहम्मद इदरीस साहिबु तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं ॿुधायूं। हीअ बेत तव्हांखे ॿुधायूं था त सुरीला माण्हू सकरण जा सोणी अथसि बाज़ारि।
0: वाह,
1: हा साईं, सुरीला माण्हू सकरण जा सोणी अथसि बाज़ारि, सॼे विहारिन सिक मां पाए ॿाहूं हार।
0: वाह,
1: सॼे विहारिन सिक मां पाए ॿाहूं हार, कचहरियूं कनि कुर्ब जूं अहिड़ा मिठा मिठा उचार। कचहरियूं कनि कुर्ब जूं अहिड़ा मिठा मिठा उचार, ॿुधी महफ़िलूं मलूकनि जूं अचो वञे दिलि खे करार।
0: वाह,
1: ॿुधी महफ़िलूं मलूकनि जूं अचो वञे दिलि खे करार, मोहबती माण्हू सिंध जा मिड़ई आहिनि मज़ेदार। मोहबती माण्हू सिंध जा मिड़ई आहिनि मज़ेदार, हमल फ़क़ीर बि हित्या।
0: वाह,
1: हमल फ़क़ीर बि हित्या, शहीद बाबा बुखारी ऐं बिलावलीअ जी मज़ार।
0: वाह,
1: क़ुर्बान फ़क़ीर, हमल फ़क़ीर बि हित्या, शहीद बाबा बुखारी ऐं बिलावलीअ जी मज़ार। जे नथो अचई इतबार त आ हली हिकु वार, त ॾेखारियईं बिलावलीअ जी दरगाह, पीर मोहम्मदीन, पीर मोहम्मदीन जे ॻोठ मुला सांद में, पीर मोहम्मदीन जे ॻोठ मुला सांद में। साईं हाणे सिंगार जो बैत ॿुधाईंदासूं।
0: जी साईं,
1: सिंगार फ़क़ीर गुलबेग, सिंगार जो बैत आहे त हुसन वारा न भेट कयो हसीन दिलबर अञा ॿियो आहे।
0: वाह वाह साईं,
1: हुसन वारा न भेट कयो हसीन दिलबर अञा ॿियो आहे, बदन ते बखमल पोशाक पायो जवानी जोहर अञा ॿियो आहे। मुश्क अंबर कथूरी लायो उमदो अहमर अञा ॿियो आहे, पर किताब कारी लिखिया ऐं पढ़िया अथई पर हाफ़िज़ कसर अञा ॿियो आहे। पर निमाज़ ऐं रोज़ा बि साबित रखिया अथई पर अहमाल बहितर अञा ॿियो आहे। खाराए माण्हू सखी थी पर सखियुनि जो दर अञा ॿियो आहे। हातम सखी होजे मगर शेर हैदर अञा ॿियो आहे। ॾात वारा ॾेह में हुआ पर भिटाई नंबर अञा ॿियो आहे। सवा लख न बि आया ज़मीन ते पर रहमतुल्ला रहबर अञा ॿियो आहे, अञा ॿियो आहे, अञा ॿियो आहे, अञा ॿियो।
0: वाह साईं, वाह वाह साईं, वाह वाह साईं, वाह। तमामु ज़बरदस्त सिंगार जो शेर। हाणे हलूं था सुगड़ फ़क़ीर क़ुर्बान अली जलबाणी साहिबु तरफ़। जी साईं,
2: साईं बेत ॿुधाईंदासीं। साईं आशिक माशूक साईं।
0: जी साईं,
2: साईं आशिक अला साईं, साईं माशूक मोहम्मद मुस्तफ़ा साईं।
0: अलाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि
2: साईं। जी साईं, बिस्मिल्लाह। साईं अर्ज़ु आहे त आशिक जो मतिलबु पहिरियां पहिरियां माण्हू सवे कंदो सिंगार, हिकु हिकु नेण खणंदो निमाणू। आशिक जो मतिलबु पहिरियां पहिरियां माण्हू सवे कंदो सिंगार, हिकु हिकु नेण खणंदो निमाणू। आशिक दर दोस्त जे सो वारे विकाणू, उन जो रतु कूत माह जी उठ खाए लाणू। किन वीचारनि खां वियो हलियो, किन जे साह खे सिबाणू। माशूक मोहम्मद मदनी लाइ वते थो विघाणू, जिते राजन ईंदो राणू, उते पतो न पवंदो पुरसलात जो, उते पतो न पवंदो पुरसलात जो, पिरी हूंदो पाण, हिकु मुंहिंजो हो त ॿियो आरी हूंदो अॻवाण। लाइ ला इलाह मोहम्मद रसूल ला साथी हूंदो साण, ॾोहन ऐं गुनाहनि जी मेन विझंदो माण, परची पवंदो पाण, मालक मुंहिंजो मामंद जे, मालक मुंहिंजो मामंद जे।
0: वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह, वाह वाह, वाह साईं, वाह वाह साईं, वाह वाह साईं, वाह। हाणे हलंदासीं सुगड़ फ़क़ीर ग़ुलाम मोहम्मद सजराणी साहिबु तरफ़। अजी साईं, बिस्मिल्लाह।
3: सर बहित आहे ज़माने जे हिसाब सां, अर्ज़ु थो त ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख, हिन ते बि लिख, हुन ते बि लिख। फ़क़ीर चयो त कंहिं ते लिखी, कंहिं ते लिखां, जंहिं ते चवीं तंहिं ते लिखां। ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख, हिन ते बि लिख, हुन ते बि लिख। मरे बेगुनाह थी ते कारी ते लिख, कया फट मथे में तगारी ते लिख, डंगिन नाग जंहिंखे ते हारी ते लिख, नचे रोज़ नाणे ते नारी ते लिख। ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख, हिन ते बि लिख, हुन ते बि लिख।
0: वाह वाह,
3: جنی اگھاڑا ابانا لکھا رولیا لاش جنجا سرانا لکھا رونا نین جنجا نمانا لکھا فریا جن گھوٹن تے سے گھانا لکھا کہتے لکھی کہتے لکھا جنتے چویں تے لکھا
2: واہ واہ صحیح واہ
1: واہ صحیح واہ
3: بھکھے پیٹ

0: मलिक हिन ते बलिक हुन ते बलिक उडामे सिंधुअ मां तिवारी लिखां रही का नसाई कटारी लिखां कुसे रोज कुंवारी वेचारी लिखां लथी कान सिरतां खुआरी लिखां कंहिं ते लिखी कंहिं ते लिखां जंहिं ते चवें तंहिं ते लिखां नकी वण वेढ़ी चा न संघार लिख नकी कोने धन धनारन न धनार लिख न को उठ अबाणा न ओठार लिख किथे गहण गोठी न गोठार लिख जालिम लिखी मज़लूम लिख हिन ते लिख हुन ते लिख मिड़ई शे महांगी कलर ते लिखां पती खंड पटाटे बसर ते लिखां काने दाल मुंग जी मटर ते लिखां मिले कान कणक थी जुअर ते लिखां कंहिं ते लिखी कंहिं ते लिखां जंहिं ते चवें तंहिं ते लिखां काहिन माल मारुन जो तू चोरन ते लिख बधन रोज बकरियूं बि ढोरन ते लिख फुरूं रोज रोडन ते तू फोरन ते लिख घुरन भुंग माण्हू लुटेरन ते लिख ज़ालिम लिखी मज़लूम लिख हिन ते बि लिख हुन ते बि लिख
1: वाह सही वाह वाह वाह
0: फ़क़ीर चए थो हुजे सूर हिकिड़ो त हिक ते लिखां
1: आए हाय

0: जडी सा जुदाई मिठो जार मोहब्बत पियां पियो इनई दम दिलासे जियां पियो मुझी याद सीने निया पियो इनई दम दिलासे अन्या जियां पियो जियां पियो।
1: वाह सही वाह वाह सही वाह।
0: भगीजत कया सिर्फ फिदा थो वारन वार वारे वडी दिल विछोड़े दुखन जान गारे न तदबीर तन के नकाबी वणे थी तसव्वुर सा तुंजे भगल दिल बणे थी सदक ते सूरत ता थियां पियो तुझी याद सीने निया पियो इने दम दिलासे जियां पियो। फकीर चयो त रगन नई बदन में तुझो नाम आहे तुझी वात वाई सुबुह शाम आहे कढ़ो लोक लोका तुझे यार खातिर कई यार कोठिन पे मुखे त काफिर संदो इश्क सजदो कयां पियो तुझी याद सीने निया पियो इन ही दम दिलासे अन्या जियां पियो।
1: वाह सही वाह वाह सही वाह।
0: मियां दाद तो के घणो वई संभारे लिखियो जो मिसाका उहो पियो तो पारे वसुलरी अहां जे शफा की न थींदी दुखी दिल मुझी जी दवा की न थींदी बिठो दम लबन ते डियां पियो
1: तुझी
0: याद सीने निया पियो इन ही दम दिलासे अन्या जियां पियो तुझी याद सीने निया पियो इन ही दम दिलासे अन्या उसर जियां पियो जियां।
1: वाह सही वाह वाह सही वाह वाह
2: संजराणी वाह वाह संजराणी वाह।
1: अजी समय हाने हलो था असुगर फकीर गुलबेग जमाल साहब तरफ आखिरी चंद मिनट आहिनि। अजी साईं
3: साईं हाणे पीर एजाज़ साईं जी काफ़ी हिकु असांखे ॿुधाईंदासीं सुगड़ाइप जूं त ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि पर हीअ काफ़ी असां वरी हाणे काफ़ी जे अंदाज़ में ॿुधाईंदासीं जो साईं एजाज़ बादशाह जी काफ़ी आहे सुर उमिरि मारियूं में।

0: वाह गुल बेगवा वाह गुल बेगवा
1: ओ सिक्की गुजारी अम्मा उम्र सारी केन आदी का दिलदारी
0: वाह सही।

0: ਤਾਂ ਗੜੇ ਮੁਜਾ ਮਾਰੂ ਲਡੇਵਿਆ ਉਹ ਸੋਨ ਮੋਰਿਓ ਹੀਰਾ ਜਹਵਰ ਜ਼ਮਦ ਜ਼ਰੀਓ ਜ਼ਰਬਫਤ ਜ਼ੈਵਰ ਸੋਨ ਮੋਰਿਓ ਹੀਰਾ ਜਹਵਰ ਜ਼ਮਦ ਜ਼ਰੀਓ ਜ਼ਰਬਫਤ ਜ਼ੈਵਰ ਸੇ ਸਭ ਭਾਇਆ ਥੀ ਮਾਰੂ ਥੀ ਚਵੇ ਸੋਨ ਸੋਨ ਤੁਹਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਥੀ ਭਾਇਆ ਏ ਸਭ ਭਾਇਆ ਥੀ ਉਹ ਨਾ ਗੜੇ ਮੁਖੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੁਨ ਜੀ ਤਾਂ ਗੜੇ ਮੁਝਾ ਸਾਗੀ ਲਡੇ ਵਿਆ
1: ਵਾਹ ਸਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਹੀ ਵਾਹ ਤਮਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋਹਤਰਮ ਬੁਧੰਦੜੋ ਅੱਜ ਜੇ ਹਨ ਸੁਗਰ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇ ਅਵਾਂ ਜੇ ਸਾਥ ਮੁਹੱਬਤਨ ਐ ਦੁਆਉਨ दुआउन के लिए दिल के गहराइन से थोराईता आयो उम्मीद था करूँ तो अज जो गाल शायरी ए सुगंध भर यादू अवा जे दिलिन के वणी होंद हाँ मोकलण जो वक्त अची वो है पर दिलिन जा रिश्ता मोहब्बत हमेशा कायम रहंद ईंदड़ प्रोग्राम में वरी नवन ख्याल नयन गालन ए सोहन महफिल से अवा की खिदमत में हाजिर थी तेसी तीन लाइन मेज़बान का इजाज़त वो खुश रहो आबाद रहो मुर्कंदा रहो ए सिंध की सुगंध के पैं दिलन में जिंदा रखो अला भाई सिंध सलामत साथ सलामत अवां सलामत जेडा पेर तेडा खैरो खैर
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जेको असां चाहियूं था इहो ईरान खां हासिल करे रहिया आहियूं ईरान एटमी हथियार न ठाहिण समेत एटमी बम ख़रीद न करण जी बि ख़ातिरी कराई आहे माहिदे ते सही थींदे ई आबना हरमुस खोलियो वेंदो असांखे का जल्दी नाहे सुठो माहिदो चाहियूं था ऐं माहिदे जे वेझो बि आहियूं ईरान सां सुठी डील न थी त ॿीहर ऑपरेशन करणो पवंदो

अमरीका अपना हरमुस में नाकाबंदी खत्म करने वाले ऐलान तक फिरी वो अमरीकी जंग बारे वजीर पेट हेगसेथ सिंगापुर में मीडिया से गालाइंदे है तो अपना हरमुस की नाकाबंदी बरकरार है। ईरान में भी हर फौजी कार्रवाई करनी पी तो कदासी अड़ो माहो कबो जो अमरीकी आवाम के मफाद में होंद ईरान से माहो थे अपना हरमुस के खोलो वो अपना हरमुस एक टोल फ्री रस्तो हों जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर सी बी अग अमरीकी सदर अपना हरमुस तक नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया हो।

ईरानी फौज वापारी बहरी जहाजनि ऐं ऑयल टैंकर्स लाइ नई वार्निंग जारी करे छॾी। ईरानी फौज जो चवण आहे त ईरान जी इजाज़त खां सवाइ हुरमुज़ जे सफ़र जी कोशिश ख़तरनाक साबित थींदी। आबिदा हुरमुज़ ते ईरान जो कंट्रोल मज़बूत आहे। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर गालिबाफ चयो आहे त अमरीका सां ठोस नतीजनि खां सवाइ को बि मुआदो न थींदो। ईरानी अवाम जे हक़नि जी ज़मानत न मिली त को बि मुआदो क़बूल न हूंदो। ईरान दुश्मन खे अज़ीम ऐं तारीख़ी जंग में पुठिते धिकी रहियो आहे। शहीद रहबर हिकु मज़बूत ईरान जो बुनियाद रखियो।

0: केपी जो वॾो वज़ीर सुहेल आफ़रीदी नाराज़ एमपीएस खे राज़ी करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। सुहेल आफ़रीदी गुज़िर रात एमपीए अब्दुल गनी आफ़रीदी जी रहिशगाह पहुतो। केतरनि ई नाराज़ मेंबरनि सां राब्तो बि कयो। काबीना में शामिल न करण ते एमपीए नाराज़गी ज़ाहिर कई हुई। लाड़काणो में हथियारबंदनि जी पुलिस अहलकारनि ते फायरिंग। हिकु अहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। घंटे पाटक वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि ॿिनि पुलिस अहलकारनि ते फायरिंग कई। फायरिंग में हिकु अहलकार मुजीबुर रहमान सोलंकी शहीद ऐं कई मेंबर ज़ख़्मी थिया। शहीद पुलिस अहलकार जो वटि ज़रूरी कार्रवाई बाद वारे सां हवाले।
1: मछी वॾी थींदी आहे, असांखे मछीअ जो ज़रूर रोज़गार मछी आहे, छो त असांजी जियापो मछी आहे। इहो असांखे ॿियो पाणीअ जी सहूलियत असांखे खपे, पाणी पीअण लाइ असांखे मिले कोन थो। घणा ॿियो खाइनि हिते तव्हां जाचे कयो न, असांखे सफ़ा बिल्कुलु ईअं था मर
2: तक़रीबन हिक खां ॿ किलोमीटर ताईं सुकी वियो आहे। मंचर जे मलान जो जियापो आहे न हींअर पाणी, ऐं मंचर जो जेको पाणी आहे 112-113 आर एल रखियो वञे ताकी मंचर जा मला उहो रोज़गार करे सघनि।
0: सिंध जी ख़ूबसूरत ऐं सभ खां वॾी मंछर ढंढ बि सुकी वई। भान सहिराबाद मंछर बचायो तहा जो ढंढ जी बहाली लाइ मंछर बंद ते एहतजाज। मुज़ाहिरीन चयो त पाणी घटिजण सबब मच्छी जो नसल ख़तम थी वियो आहे। मुहाणा बदहाली जो शिकार आहिनि। पाणीअ जी सतह घटिजी 106 आर एल यानी 6 फुट रहिजी वई। 3000 खां वधीक इंसानी आबादी पीअण थोरी ज़रे पाणीअ खां महरूम आहे। मंछर ढंढ में पाणीअ जी सतह खे बहाल कयो वञे।

मकानी खाते हैदराबाद के रीजनल डायरेक्टर अली अनवर ए संदस साथियों खिलाफ कराची के डिफेंस थाने से धाड़े जो केस दाखिल कयूमाबाद कराची के रवासी सदाम हुसैन की फरियाद से केस दाखिल कराया गया। रियाज अली बुख जवाबदार तौर नामजद फरियादी केस में जाना है 22 मई से रियाज अली पैंजन साथियों अली अनवर एन सा गड़ी घर में घिड़ी भातियों के गैरबहाल बनाए 86,000 रुपया रोक रकम ब मोबाइल फोन ए एक लैपटॉप खड़ी व्या। जरियन जो चवण है त फरियादी सदाम हुसैन ए अली अनवर जे भाणे जे विच में फ्लैट की मालिकियत तकरार हलंदड़ है। अनवर अली रुख जो चवण है त फ्लैट मुझे भाणे जो है सदाम हुसैन वारी धुर कब्जो किया है। फ्लैट वारी करण बाबत गलियन लाए व्यासी फुलुट जो इल्जाम बेबुनियाद ए कूड़ा फरियादी बासर आहिन जे असल मालिकन ते दबाव विझण ए फ्लैट ते कब्जो बरकरार रखण लाए कूड़ो केस दाखिल करायो है। भंगोबाण के इलाके कोट लालू वेझो कार ए मोटरसाइकिल में टक्कर ब औरतू पोत नेगरी समेत बजणा जख्मी मंगिया नाकू भरसा मेहरान हाईवे कार ए मोटरसाइकिल में टक्कर औरतुन समेत कई कुटुंब जा चार भाती सख्त जख्मी थी पिया जिनके बांदी अस्पताल नियो वो कस्बानो शेख ए जमीला शेख अस्पताल में दम दई छो अठ वरियन की राबेल ए असलम शेख की हालत घंटी जोगी बुधाई पी वे कार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार थी। इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू अटाल चौक से खौफनाक हादसो चार जणा फौत चार जख्मी तेज रफ्तार गाड़ी बिन गाड़ियन ए मोटरसाइकिल से टकराजी वही चार जणा फौत चार जख्मी फौतियन में आदमी जो अकाउंट्स शोबे में मुलाजमत कर आमिर सुमरो भी शामिल बई फौती की सुणप मोहम्मद फजल तौर कई वही बिन पोतियन ए जख्मियों की सुणप कई पी वे पुलिस जो चवण है हादसे जो सबब बणजंदड़ गाड़ी के कब्जे में वी छो है ड्राइवर फरार थी वो पोती आमिर सुमरो जो मड़ जरूरी कार्रवाई बाद शिकारपुर रवाना।

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी एफएम रेडियो नेटवर्क पर। प्रोग्राम आपका अपना स्पोर्ट्स राउंड अप, मैं हूं आपका अपना मेजबान राणा अशफाक। जी जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज कोई पहली मर्तबा होगा कि मई और जून में कोई टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही हो और वनडे सीरीज खेली जा रही हो। बहुत कम कम माजी में ऐसी मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये मुकाबला इस लिहाज से काफी अहम था कि ये पाकिस्तान का 1000वां ओडीआई मैच था। यानी पाकिस्तान की टीम ने कुल मिलाकर अब 1000 ओडीआई मैच खेले और पाकिस्तान ये तीसरा मुल्क बना है दुनिया का जिसने 1000 या उससे ज्यादा ओडीआई यानी वनडे मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जनाब इसमें पहले बैटिंग की और 200 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम बना सकी और पाकिस्तान की टीम ने टारगेट बआसानी चेस किया। 200 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने 44.1 ओवर में, उनकी टीम ऑल आउट हो गई थी। एलेक्स कैरी जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उनको कैच किया था सलमान अली आवा ने। 19 रन बनाए 24 गेंदों पर, 4 चौके लगाए एलेक्स कैरी ने। मैट शॉट जो कि ओपनिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने 76 गेंदों पर 55 रन की इनिंग्स खेली जिसमें 6 चौके थे। उनको स्टम्प किया था मोहम्मद गाजी गौरी ने, जिन्हें एज विकेट कीपर बैटर टीम में शामिल किया गया है। अरफात मिनहास की गेंद पर उन्होंने जो है वो 55 रन बनाए थे। अरफात मिनहास का भी ये पहला मुकाबला था और उनकी बॉलिंग का जिक्र तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले मुकाबले में उन्होंने 5 विकेटें लेने का एजाज हासिल किया है जो कि पाकिस्तान के लिए एक कारनामा है। पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने अपने पहले ही ओडीआई मैच में 5 या उससे ज्यादा खिलाड़ी आउट किए। जोश इंग्लिश जिन्हें एज कैप्टन टीम का यहाँ भेजा गया, उनको LBW की अरफात मिनहास ने 13 रन बनाए, 22 गेंदों पर 1 चौका लगाया उन्होंने। लेवस शेन LBW बोल्ड अरफात मिनहास वो कोई रन न बना सके 2 गेंदों पर। कैमरन ग्रीन बोल्ड अरफात मिनहास वो कोई रन न बना सके। मैट रेनशॉ जो कि माजी में ओपनिंग भी करते रहे हैं वो टीम में आए हैं, उनको इब्रार अहमद ने बोल्ड किया, 61 रन बनाए 63 गेंदों पर, 5 चौके और 1 छक्का लगाया तेज बैटिंग की। और पीक ने 7 रन बनाए 16 गेंदों पर, 1 चौका लगाया। कोनोमैन ने 24 रन बनाए 40 गेंदों पर, 2 चौके लगाए, उनको कैच किया बाबर आजम ने हारिस रॉफ की गेंद पर। नेथन एलिस को अरफात मिनहास ने बोल्ड किया, 8 रन बनाए 14 गेंदों पर। सांगा बोल्ड शाहीन आफरीदी कोई रन न बना सके जबकि स्टैन लिक नॉट आउट रहे, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया 13 एक्स्ट्रा से। पहली विकेट 34, दूसरी 62, तीसरी 63, चौथी 68, पांचवी 123, छठी 145, सातवीं 179, आठवीं 199, नवीं 200 और दसवीं विकेट भी 200 के स्कोर पर गिरी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। शाहीन आफरीदी जो कि टीम के कैप्टन है, उन्होंने 6 ओवर किए 19 रन 1 विकेट। हारिस राउत 5.1 ओवर 24 रन 1 विकेट। अबरार अहमद 10 ओवर 44 रन 2 विकेटें, मगर पिकोस बॉलर अरफात मिनहास 10 ओवर 32 रन और 5 विकेटें हासिल की। शादाब खान 8 ओवर 54 रन, कोई विकेट नहीं महंगे रहे। सलमान अली आगा 5 ओवर 21 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। साहिबजादा फरहान कॉट मैट शॉट बोल्ड तनवीर सांगा 28 रन बनाए 33 गेंदों पे 3 चौके लगाए। मां सदाकत कॉट मैट शॉट बोल्ड मैथ्यू कोनमैन 8 रन बनाए 14 गेंदों पर 1 चौका लगाया। बाबर आजम जिन्होंने PSL में सबसे ज्यादा रन किए आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे, उन्होंने यहाँ भी अपने फॉर्म को कंटिन्यू किया। नेथन एलिस की गेंद पे बोल्ड हुए मगर उससे पहले उन्होंने 69 रन बनाए 94 गेंदों पर, 4 चौके लगाए और 1 छक्का भी लगाया। शानदार अंदाज में बैटिंग करते दिखाई दिए। गौरी जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो 2 डाउन पे बैटिंग के लिए आए थे और शानदार बैटिंग की। 65 रन बनाए 92 गेंदों पर, 8 चौके उन्होंने लगाए। उनको LBW आउट किया नेथन एलिस ने। अरफात मिनहास नॉट आउट रहे 18 गेंदों पर, 17 रन बनाकर 18 रन बनाकर 17 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाया। सलमान अली आगा LBW लबस शेन 6 रन बनाए 4 गेंदों में 1 चौका लगाया, जबकि समद जो थे वो 1 रन पर नॉट आउट रहे। देयर वर 7 एक्स्ट्रास एज वेल और पाकिस्तान ने टोटल 202 रन बना लिए 42.3 ओवर में 5 विकेट पे, जबकि अभी शादाब खान शाहीन आफरीदी हारिस रऊफ और अबरार को बैटिंग के लिए आना था। फॉलो विकेट पाकिस्तान की पहली विकेट 25 पे गिरी, दूसरी विकेट 49 पे, तीसरी 176 पे, यानी 127 रन गौरी और बाबर आजम के दरमियान बने। फोर्थ विकेट फेल एट 185, देन पाकिस्तान डिड लूज देयर फिफ्थ विकेट एट 195 और वहां से पाकिस्तान अपने टारगेट को चेज करने में कामयाब रहा। नेथन एलिस 7 ओवर 45 रन
दो विकेटें, स्टैनलिक 6 ओवर 37 रन कोई विकेट नहीं, उनमें 10 ओवर 29 रन एक विकेट, सांगा 10 ओवर 31 रन एक विकेट, शॉर्ट ने 3 ओवर किए 11 रन कोई विकेट नहीं, रेनशॉ ने 5 ओवर के 33 रन कोई विकेट नहीं, और मार्नस लबशे ने 1.3 ओवर में 15 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। जी जनाब, वुमेन का वर्ल्ड कप भी आ रहा है इस महीने की 12 तारीख से, यानी अगले महीने की जून की, और साथ साथ जो है वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का आगाज भी हो रहा है 4 तारीख से। पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के तारीखी मकाम पे खेला जाएगा, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा। पाकिस्तान वो आयरलैंड और वेस्टर्न इसके दरमियान वुमेन सीरीज भी जारी है, एंड देन देयर विल बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स, टेप बॉल क्रिकेट भी जारी है दुनिया भर के मैदानों पर, उसके हवाले से भी आपसे बातचीत रहेगी। इस वक्त ले लेते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक से लौटते हैं तो फिर वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। लेट्स टेक ए ब्रेक इन प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप, जुड़े रहिए मेरे साथ यानी राणा अशफाक के साथ, और सुनते रहिए अपना फेवरेट चैनल GAFM रेडियो नेटवर्क।

मदनी तिबी दवाखानों रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड गोश्त बाजार खरीबाबाद सखर खमीस आई जुमो मिलना जो हद मदनी तिबी दवाखाना वसान रोड नर्स लाला शहजादा चौक रोहड़ी राप्तो 0300 36 26 174 खुश खबरी बेगम नुसरत भुट्टो मैं जुनी

ग्राउंड्स को भरे हुए देखते हैं और जबरदस्त अंदाज में जो है वो मौजूद रहते हैं देखने के लिए तमाशाई अपने इन खिलाड़ियों को जो परफॉर्म्स करते हैं। और आजकल सूर्यवंशी की बड़ी बातचीत है जनाब, उनका बड़ा जिक्र है और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेज ही ऐसी दी हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने रन्स किए हैं और जितनी भी तारीफ की जाए उनकी वो कम है। तो देखने आज वायरल कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बन जाएगी और क्या सूरत हाल जो है वो बनेगी और किस अंदाज से जो है वो खेल आगे बढ़ेगा। लेकिन वायरल इन दोनों टीमों का फाइनल में पहुंचने का, खासकर गुजरात टाइटंस का फाइनल में क्वालिफाई करना ही बड़ी बात है। वायरल अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छे खेल की उम्मीद हम कर सकते हैं इस फाइनल में आईपीएल के। देखिए क्या सूरत हाल बनती है, कौन सी टीम जीतती है। बाल इंडिया हमेशा से अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करने में बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि टॉप पर रहा है माजी में भी, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सूर्यवंशी बिल्कुल ही एक कम उम्र खिलाड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी कारकर्दगी से एक तरह से हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को, ज़बरदस्त कारकर्दगी

लिए तारीफ ही हो सकती है। और आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार हैं, बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो जैकब बैथल हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, हॉक्स हैं, टिम डेविट हैं, बहुत ही अच्छी खेल का मुजाहरा। विराट कोहली का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, हेजल वुड हैं, जैकब डफी हैं, भुवनेश्वर कुमार का मैं जिक्र कर चुका हूँ, विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं। देर आर और फिल सॉल्ट जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, ही कैन कम ऑल गन्स ब्लेजिंग। उसके अलावा शेफर्ड है वेस्ट इंडीज़ के, ये ख़तरनाक हैं। और अगर मैं जिक्र करूं गुजरात का तो उनमें शुभमन गिल कैप्टन है, 722 रन बनाकर वैसे ही टॉप पे हैं। उसके अलावा जॉस बटलर हैं इंग्लैंड के, साथ साथ जो है वो जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के, ये कुछ बड़े नाम हैं। उसके अलावा मोहम्मद सिराज हैं, गैलन फिलिप्स न्यूजीलैंड के, कृष्णा हैं, कगिस और अबाडा का मैं जिक्र कर चुका हूँ जो टॉप विकेट टेकर हैं, इज डन अ ग्रेट जॉब। शाहरुख खान जो पहले इंडिया की जो छोटी छोटी लीग्स होती हैं उनसे सुर्खियों में आए थे, इज अ गुड प्लेयर एज वेल। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर हैं, लूक वुड हैं और जयवंत यादव हैं। तो तमाम ही टीम्स के पास अच्छे प्लेयर्स दोनों ही टीमों के पास मौजूद हैं। अब लेट्स सी कि आज शाम जब मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान शुरू होगा, हु विल टेक दिस विक्ट्री अंडर देयर बेल्ट, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, ये सारा कुछ देखना होगा। बहरहाल ये बताते हुए कि सुनते रहिए जी FM रेडियो नेटवर्क। अब अपने मेज़बान राना शफाक को दीजिए इजाज़त, आप न्यूज़ ब्रेक भी देखेंगे यानी सुनेंगे, न्यूज़ भी साथ साथ जो है वो आप अगले घंटे में यकीनन कुछ म्यूज़िक हमारे इंजीनियर्स आपके लिए प्ले करेंगे। नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बहुत सारी खबरों के साथ, जिसमें कुछ लोकल खबरें भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने टेप बॉल क्रिकेट जो एक फलती फूल की इंडस्ट्री है उसके हवाले से भी आपसे बातचीत की थी, और इनफैक्ट पिछले हफ्ते और साथ साथ दो यंग कमेंटेटर्स से भी आपकी मैंने मुलाकात करवाई थी। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी पर्सनैलिटी से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए, आपको रोशनास कराया जाए कि इस फील्ड में लोग किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए क्या स्कोप है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह निगेबान।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मख्तर से आए थे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कराची में कब्जन जो नोटिस वे फारूक सत्तार चो तो कराची कब्जा माफिया हवाले कई पी वे जमायत इस्लामी छो खामोश है हेल्थ पार्क से कब्जो किया पो वे मुकामी चूडन का अग कामरान टेसूरी के बीहर गवर्नर थियण घुर्जे उन पेरे वे तैयारी से बल्दियाती चूडन में हिस्सो वासी एम क्यू मगवाड़न पुरानी रिवायत बरकरार रखने कराची के वफाक हवाले करो मुतालबो भी वर्जाय। प्रॉपर्टी हुई है हूंदी एक इंच भी कें के न डिबो मेयर कराची मुर्जावाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते है तो लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मौके से पहुंची कब्जो रोकराया माइम क्यम के करतूतन की सजा भोगिया पो सदन दबाव में नहीं दस।

ईरान के तब्दील थियल सत्ता जी सूमा ने छो अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई है तो ट्रंप ईरान से वायदे के जल्द फैसले बाद जहन तब्दील कर छो ट्रंप ईरान के तब्दील थियल सख्त तजवीज उमाणू आन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है जो अस चाहूं था यो ईरान का हासिल कर रहा हूं ईरान एटमी हथियार न ठाने समेत एटमी बम खरीद न करण की भी खातरी कराई है वायदे से सही थन्दे ही आबना अरबुज खोलो वो असा का जल्दी ना सुठो मुआदो चाहूं था मुआदे के वेझो भी आयू ईरान से सुठी डील न थी तो बीहर ऑपरेशन करणो पवो अमरीका अपना हुरमुस में नाकाबंदी खत्म करने बारे ऐलान तक फिरी वो अमरीकी जंग वारे वजीर पेट हेगसेथ सिंगापुर में मीडिया से गालाइंदे चयो है त अपना हुरमुस की नाकाबंदी बरकरार है ईरान में बीहर फौजी कार्रवाई करनी पई त कंदासी अड़ो मुआदो कबो जो अमरीकी अवाम के मफाद में हों ईरान से मुआदो थियण का अपना हुरमुस के खोलो वो अपना हुरमुस एक टोल फ्री रस्तो हों जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर सी वही अग अमरीकी सदर अपना हुरमुस नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर ईरानी फौज व्यापारी बहरी जहाजन ऑयल टैंकर्स लाइ नई वार्निंग जारी कर छी ईरानी फौज चवण है तो ईरान की इजाजत का सिवाय हुरमुस के सफर की कोशिश खतरनाक साबित थी आबना हुरमुस से ईरान जो कंट्रोल मजबूत है ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर कालिबाफ है तो अमरीका से ठोस नतीजन का सिवाय को भी मुआदो न थो ईरानी अवाम के हकन की जमानत न मिली तो को भी मुआदो कबूल न हों ईरान दुश्मन के अजीम ए तारीखी जंग में पुठते टिकी रो है शहीद रेबर एक मजबूत ईरान जो बुनियाद रखो

0: साल जी बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सोलर बांका थे जब कान जरियन मोदी भाई में पारा बजट में सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेल्स टैक्स 18% थे जो इम्कान है। इंदड़ 42 साल में गाड़ियों की इम्पोर्ट 40,000 ताई महदूद करने की तजवीज। हाइब्रिड गाड़ियों से भी सेल्स टैक्स 8% बताए 18% ताई आने सकते तो सोलर पैनल्स से भी सेल्स टैक्स 10% का बताए 18% करने की तजवीज। साल जी पीएसडीपी जी मद में 1,126 अरब रुपया रखने की तजवीज। जीडीपी वाद जो हदफ 4% रखने की तजवीज। ईंदड़ 42 साल जी बजट लाए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इजलास 1 जून से थी। एसएन इकबाल की सदारत में इजलास दौरान तरक्याती बजट की मंजूरी दिनी वेंदी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो इजलास 3 जून से वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ सॾण जो इम्कान। एफबीआर टैक्स उगाड़ में 868 अरब रुपये की घटताई के मुंह डेई रो है। 12,095 अरब रुपये के हदफ के मुकाबले में 11,027 अरब रुपया जमा थी सकिया। साकदार की दावत यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कैलिस 1 जून से पाकिस्तान जो दौरों कंदी। काया कैलिस यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायलॉग की 8 इजलास में शिरकत कंदी। कैलिस सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से भी मुलाकात कंदी। वज़ीर सुहेल आफरीदी नाराज एमपीएस के राजी करण लाइ कोशिशों तेज कर छो। सुहेल आफरीदी गुजर रात एमपी अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइश का पहुंतो। केतन ही नाराज मेंबरन से राबतो भी कियो। काबीना में शामिल न करण ते एमपीए नाराजगी जाहिर कई हुई। पुलिस एहलकार से फायरिंग एक एहलकार शहीद एक जख्मी। घंटे फाटक वाले इलाके में हथियार बंदन बिन पुलिस एहलकार से फायरिंग कई। फायरिंग में एक एहलकार मुजीबुर रहमान सोलंगी शहीद ए कई मेहमान जख्मी थी पाया। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो पारा डीआईजी लाड़कणों का रिपोर्ट तलब।
1: कम 12 फुटन का न लाए वे छकान तो मंचर जो जियापो पानी जियापो उनमें मछी वी थी असि मच्छी पे जरूर रोजगार मच्छी आज जियापो मच्छी आगे पानी की सहूलत खे पानी पीने लगे मिले को मंचर के मलान जो जियापो आए ना हिंसर पानी मंचर जो पानी आ 112-113 आर एल रखो वे ताकि मंचर जहाँ मला वो रोजगार कर सकन।
0: सिंध की खूबसूरत है सब का वरी मंचर डंड भी सुकी वही। पान सईदाबाद में मंचर बचाओ इतिहाद जो डंड की बहाली लाए मंचर बंद से एहतजाज। मुजाहरीन पानी घटने सबब मच्छी जो नस्ल खत्म थी वो है। मुहाना बदहाली जो शिकार आन पानी की सतह घटी 106 आरएल यानी 6 फुट रह वही है। 6,000 का इंसानी आबादी पीण थोड़े जरिए पानी का महरूम आन मच्छर डंड में पानी की सतह के बहाल कर वे। दादू में नंढी उम्र में शादी कराने ते पुलिस की कार्रवाई। घोट गिरफ्तार 12 साल की कुआर मरियम के तहवील में वरतो वो। पुलिस जो चवण है घोट ए संदस पी खिलाफ सिंध चाइल्ड मैरिज तहत FIR दाखिल कई वही है। पुलिस घोट राजा पवार ए घोट जे पी नियाज अहमद के गिरफ्तार करे वरतो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हाँ हैरत असांखे जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बे का सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-768।
1: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध में पानी की शदीद बोहरान बावजूद पंजाब सरकारी लिंक कैनालन जरिए पानी की खणत बंद न कई। सिंध हुकूमत जो एहतजाज, सिंध में पानी के बोहरान ए गैर मुनसिफ पानी वर्ष से सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमण वफाक का पंजाब की ज्यादती इरसा के फैसलों को नोटिस वठण जो मुतालबो कयो। शजीर इनाम मेमण इरसा के फैसलों से सिंध से अण बराबरी वाले बर्ताव जो तासुर मजबूत थी रो है। कें भी सूबे के बे सूबे के हिस्से से तरजीह नी दई सकते। सिंध गुजल केतन डीह का 22 सैकड़ों पानी खोट के मुंह डेई रही है। कराची जड़े माशी मरकज लाए संगीन खतरा पैदा थी रहा है। गुडू बैराज से 42 कोटड़ी बैराज से 29 सैकड़ों पानी की कोट रिकॉर्ड कई वही। वफाक सिंध के जायज मुकम्मल ए जायज हिस्सों फराहम करने लाए अमली कदम खणे।
2: कम से कम 12 फुट गार न लाए वे छाण तो मंछर जो जियापो पानी जियापो उनमें मच्छी वही थी अस मच्छी पे जरूर रोजगार मच्छी आो तो जियापो मच्छी आो अस पानी की सहूलत असें पानी पीण लगे मिले को घना गोठाने के सफा बिल्कुल
3: तकरीबन 1-2 किलोमीटर तुकी मंछर के मलान जो जियापो आए ना हिंसर पानी मंछर जो पानी आ 112-113 आर एल रख वे ताकि मंछर जहाँ मला वो रोजगार कर सकन।
1: सिंध की खूबसूरत सब का वही मच्छर डंड भी सुकी वही। पान सईदाबाद में मच्छर बचाओ इतिहास जो डंड की बहाली लाए मच्छर बंद एहतजाज। मुजाहिन पानी घटने सबब मच्छी जो नसल खत्म थी वो है। महाणा बथाली जो शिकार है। पानी की सतह घटी 106 आर एल यानी 6 फुट रह वही। 30,000 का इंसानी आबादी पीण तोड़े जरे पानी का महरूम है। मच्छर डंड में पानी की सतह के बहाल किया वे।

वाटर पंपिंग ताबेजी स्टेशन ते बिजली जी बंदिश सबब कराची के पानी जी फ्राहमी मुअत्तल। वाटर कारपोरेशन जी तर्जुमान जो चवण आए तो ताबेजी ग्रिड जे ट्रांसफार्मर्स में फनी खराबी सबब शट डाउन कयो वियो। जिगरी शट डाउन सां ताबेजी पंपिंग स्टेशन जा 21 मां 10 यूनिट्स बंद आहिनि। शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे पाणीअ जी फ्राहमी मुअत्तल आहे। बिजली मुकमल बहाल थियण जे वक़्त बाबति हतमी ॼाण फराहम नाहे कई वई। कराची में कब्जन वारे मामले ते एस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत जो मुतालबो। एम के एम अगवान अगोड़े मेयर वसीम अख्तर है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कराची में कब्जन जो नोटिस वटे। फारूक सत्तार कराची कब्जा माफिया हवाले कई पी वे। जमायत इस्लामी चो खामोश है। हिल पार्क से कब्जो किया पो वे। मकानी चूडन का अग कामरान टिसूरी के बीहर गवर्नर थियण घुर्ज। इन भेरे वही तैयारी से बलदियाती चूडन में हिस्सों वी। एम के एम अगवान पुरानी रिवायत बरकरार रखे कराची के अफाक हवाले करने जो मुतालबो भी बढ़ाया। हिल पार्क केएमसी जी प्रॉपर्टी हुई है हूंदी एक इंच भी कंखे न डिबो। मेयर कराची मुजा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आए त लैंड डिपार्टमेंट जे ऑफिसर ते मौके ते पहुंची कब्जो रोकरायो। माइम केम जे करतूतन जी सजा भोगिया पियो संदन दबाव में नहीं दिस। कराची के एक जमात की जागीर न पर पाकिस्तान जो माशी मरकज है। एम क्यू एम इल्जाम लगाए पैंजी सियासत जिंदा करण की नाकाम कोशिश करे पई। सीनियर वसीर शजील इनाम अहमद जो एम क्यू एम अगवाड़न की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रद्द अमल। शजील इनाम अहमद चो तो शहर जा मसला वधाईंदड़ पान के आजो बणाए पेश कर रहा है। कराची में जारी मनसूबा प्रोपेगेंडा से रद्द नथा कर सकजन। सिंध हुकूमत मकानी इदारन के इख्तियार दई माली वसीला ए कानून सपोर्ट फराहम कई। बसो यूनिट्स का घट बिजली इस्तेमाल कर सब्सिडी खत्म करने वाली खबर बेबुनियाद करार। तवानाई वरे वजीर अवेस लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे है हुकूमत प्रोटेक्टेड वायपेदार सब्सिडी खत्म न पी करे। हकदार वायपेदार सब्सिडी दियण वो सिलसिलो जारी रहो। इन वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार 36,000 मेगावाट है। बिजली की पैदावार लाए मकामी जरियन से दारोमदार वी रो है। नेट मीटरिंग मुकम्मल खत्म ना कई रुगो बिलिंग में सुधारा क्या व्या है।

अमरीकी सरकार ने डोनाल्ड ट्रम्प जो बीहर यू टर्न ईरान के तब्दील थियल सख्त तजवीजों उमड़े छद्यू। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कई है ट्रम्प ईरान से माहदे से जल्द फैसले बाद जहन तब्दील कर छो। ट्रम्प ईरान के तब्दील थियल सख्त तजवीजों उमड़ियो। अमरीकी सरकार डोनाल्ड ट्रम्प जो अस चाहूं यो ईरान का हासिल कर रहा हूं। ईरान एटमी हथियार न ठाण समेत एटमी बम खरीद न कर भी खातरी कराई है। माहदे से सही थन्दे ही आमना अरमुस खोलो वो असा के का जल्दी ना है। सुठो माहदो चाहूं था माहदे के वेझो भी आयो। ईरान से सुठी डील नी तो बीहर ऑपरेशन करणो पवंदो।

शाकाबंदी खत्म करने वाले ऐलान तां फिरी वियो। अमरीकी जंग वारे वजीर पेट हेगसेत सिंगापुर में मीडिया से गालाइंदे चयो आहे त अपना रुबोसी नाकाबंदी बरकरार आहे। ईरान में बीहर फौजी कार्रवाई करनी पई त कंदासीं, अहिड़ो वाइदो कबो जेको अमरीकी अवाम जे मफ़ाद में हूंदो। ईरान सां वाइदो थियण खां पोइ अपना रुबोस खे खोलियो वेंदो। अपना रुबोस हिकु टोल फ्री रस्तो हूंदो जेको सॼी दुनिया इस्तेमाल करे सघंदी। ॿ ॾींहं अॻु अमरीकी सदर अपना रुबोस तां नाकाबंदी ख़तम करण जो ऐलान कयो हो। वापारी बहरी जहाजनि ऐं आयल टैंकर्स लाइ नई वार्निंग जारी करे छॾी। ईरानी फ़ौज जो चवणु आहे त ईरान जी इजाज़त खां सवाइ हुर्मुस जे सफ़र जी कोशिश ख़तरनाक साबित थींदी। आमने हुर्मुस ते ईरान जो कंट्रोल मज़बूत आहे। ईरानी पार्लियामानी स्पीकर बाकर कालिबाफ चयो आहे त अमरीका सां ठोस नतीजनि खां सवाइ को बि माहिदो न थींदो। ईरानी अवाम जे हक़नि जी ज़मानत न मिली त को बि माहिदो क़बूल न हूंदो। ईरान दुश्मन खे अज़ीम ऐं तारीख़ी जंग में पुठिते धिके रहियो आहे। शहीद रहबर हिकु मज़बूत ईरान जो बुनियाद रखियो।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा। सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़े में ओगरा जी कार्रवाई, लखे लीटर गैर क़ानूनी पेट्रोल ऐं डीज़ल हथ। सिंध में पाणीअ जी खोट वधी 22% थी वई, सी जी ऐं टी पी के नाल वसीले धाड़ो बंदि न थियो, हणत जारी। सिंध में वायूं बताल कंदड़ गर्मी, पारो 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुतो, अवाम परेशान। सूफ़ीज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत याफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक, टंडो मामद ख़ान में मुनक़िद। सूफ़ीज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश। हैदराबाद में मुबैना तौर घरेलू तकरार तां झेड़ो, जवाबदार जो पंहिंजे मासीअ जे घर ते हमिलो, फायरिंग, गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान क़तल ऐं ॿियो भाउ ज़ख़्मी, जवाबदार फ़रार। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध में शदीद गर्मी ऐं अण ऐलानियल लोडशेडिंग, अवाम आज़ाब जे चकीअ में।

सिंध में पाणी खोट वधी 22% थी वई। सीजी ऐं टीपी केनालनि वसीले धाड़ो बंद न थियो, खणत जारी आहे। जॾहिं त मिलियल अंगाखर मूजिबि कोटड़ी बैराज वटि 29% खोट डिक्लेयर कई वई आहे। पाणी ठाह मूजिबि सिंध खे मजमूई तौर 80,640 क्यूसिक पाणी मिलणो आहे, पर फराह में मजमूई 22% पाणी खोट सां 62,953 क्यूसिक थी रही आहे। होॾां सीजी लिंक केनाल वसीले ठाह मूजिबि 5,500 क्यूसिक पाणी कढियो वियो आहे, पर उतां 11,500 क्यूसिक वहायो थो वञे। टीपी केनाल मां पाणी वहाइणो ई न आहे, पर उतां 11,285 क्यूसिक पाणी जी खणत आहे। मंगला डेम मां पाणी कढण बदिरां तरबेला डेम जो पाणी मंगला डेम मां खयो वञे पियो, ऐं सिंध खे पाणी खोट खे मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। सिंध जे आबादी खाते वारा उन हवाले सां ख़ामोशी अख़्तियार कयल आहे, जंहिं सबबि सिंध में कायल फसलुनि खे शदीद नुक़सान थी रहियो आहे। हितां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त सिंध जे इरीगेशन खाते खे अक पटे अवाम खे पाणीअ जी फराहमी खे यकीनी बनाइण ते कमु करणु घुरिजे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कंदे लखें लीटर गैरकानूनी तौर जखीरो कल पेट्रोल ए डीजल जब्त कर वरतो है। ऐलान मूजिब ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कई, जैं दौरान वे मकदार में गैरकानूनी पेट्रोल ए डीजल हथ किया वो। ओगरा जो चवण है पेट्रोल ए डीजल हब वे इलाके में गैरकानूनी तौर जखीरो वो हो, जो एक ऑयल डिपो में रखो वो हो। ओगरा मूजिब वो खानगी कंपनी जो ऑयल डिपो गैरकानूनी तौर से हलंद हो, जैं वट ओगरा जो लाइसेंस ए दिफा वारी वजारत की NOC मौजूद न हुई। ऐलान में बुधायो वियो आहे त ओगरा जी इन्फोर्समेंट टीम उन ऑयल डिपो के सील करे छॾियो आहे। सिंध के घणन मैदानी इलाकन में सख्त गर्मी रिकॉर्ड कायम करे छिया। मौसमियात खाते मूजिब पंजाब ए सिंध जा घणे कदर मैदानी इलाका सख्त गर्मी के लहर के वकड़ में आन, हिय गर्मी की लहर आचर तीन जारी रहने जो इम्कान है। मौसमियात खाते मुताबिक गुजरल ढी सब का गर्मी पद दादू ए जैकमाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वो। सागी रीत सिब्बी तुर्बत शहीद बिन हैदराबाद लाड़कानो ए मोहनजे दड़े में गर्मी पद 50 डिग्री, खैरपुर सकरण में 49 डिग्री, डेरा गाजी खान में 47 ऐं लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहियो, जॾहिं त इस्लामाबाद में गर्मी पद 40 डिग्री खां वधीक रिकॉर्ड कयो वियो। उन खां सवाइ मौसमियात खाते चयो आहे त कराचीअ में अॼु गर्मी पद 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। सूफ़ी अज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत आफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक टंडो मोहम्मद ख़ान में मुनक़िद करे संदसि सूफ़ी अज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। टंडो मोहम्मद ख़ान में इल्म व अदब अकेडमी तरफ़ां सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ खे भेटा ॾियण लाइ मुनक़िद कयल अदबी तक़रीब खे नाले वारे मुहक़िक़ अदीब लेखक सैयद मेहरबान अली शाह शम्सी ख़िताब दौरान चयो त सूफ़ी अज़म जे तसोफ़ वारे फ़िक्र खे पूरी दुनिया में इंसानियत जे भलाई जो दर्स करार ॾिनो वञे थो। सदारती ख़िताब दौरान हुन चयो त शाह शम्स तबरेज़ी पूरी दुनिया जे अंदरि पंहिंजे तसोफ़ वारे फ़िक्र ज़रिए पंहिंजी अलॻि आला सुञाणप ऐं मक़ाम रखियो आहे, जंहिंखे भेटा ॾियण जे लाइ मुनक़िद कयल ही अदबी तक़रीब संदसि अज़मत खे असां न सिर्फ़ु ख़िराज तहसीन पेश करियूं था, पर संदसि अज़ीम सूफ़ी अज़म तसोफ़ वारे फ़िक्र बाबति उहो बि तस्लीम करियूं था त शाह शम्स तबरेज़ीअ जो नज़रियो इंसानियत जे रोशन मुस्तक़बिल जो हिकु मिसाल आहे। अदबी तक़रीब खे सोरमी सत बदीन जी अॻुवाण मारवी आबदा समूह सदफ़ किरियो पीपी युथ अॻुवाण सैद सलाल शाह बुख़ारी तालीमी माहिर ग़ुलाम नबी किरियो समेत नाले वारनि लेखकनि अदीबनि शाइरनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयो। जॾहिं त अदबी तक़रीब खां पोइ राग रंग जी महफ़िल में सिंध जे मशहूरु सूफ़ी फ़नकार सूफ़ियाणा कलाम गाए दाद हासिल कयो। उन मौक़े ते सिंध ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ सूफ़ी अज़म जे तसवुर सां तालुक़ु रखंदड़ दरगाहुनि जे गादी नशीननि जी बि दस्तारबंदी पिणु कई वई। हैदराबाद के हाली रोड थाने के हद पुरानी सब्जी मंडी वेझो नज़रहत कॉलोनी में मुबैना तौर घरू तकरार त जवाबदार मासी के घर से हमलो कर घर अंदर फायरिंग कर दिनी, जैसे नतीजे में गोलू लगन सबब एक नौजवान असद पठान थदे ते फोत वो, जडे त संदस भा शाहजे पठान जख्मी थी पियो। वाकई बाद जवाबदार फरार थी वया। वाकई जो इतला मिलण ते हाली रोड पुलिस पहुंची वही, जैं लाश ए जख्मियों के खणाए सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुंचाया, जिते जरूरी कार्रवाई बाद लाश वारसन हवाले कयो वियो, जडे त जख्मी के तिबी इमदाद दिनी वही। पुलिस मूजिब वाकियो घरेलू तकरार तां पेश आयो आहे।
قاتل ۽ مقتول پاڻ ۾ ماسات ٿين، واقعي جي وڌيڪ جاچ جاري آهي، جوابدارن جي گرفتاري جي لاءِ چھاپا هيا پيا وڃن، وارثن جي اچڻ بعد ايف آئي آر داخل ڪئي ويندي۔ جڏهن سول اسپتال ۾ زخمي شاهد پٺان صاحبن سان ڳالهائيندي ٻڌايو ته سندس ماسي جي پٽن سندن گھر تي حملو ڪري سندس ڀاء اسد پٺان کي قتل ۽ کيس زخمي ڪري فرار ٿي ويا آهن۔ ان چيو ته جوابدارن ۾ لدو، ریاض، فیاض ۽ شہباز شامل آهن۔ ہوڏان واقعي جي اطلاع ملڻ تي تک جي ايم پي انجنئر صابر حسين قائم خاني پڻ سول اسپتال ۾ پهچي زخمين جي عيادت ڪندي وارثن کي انصاف ڏيارڻ جي خاطري ڪرائي۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو گمبٹ گمپ سٹی اسپتال پہنچی ایچ آئی وی میں مبتلا بارن جی عیادت کئی ہے، مختلف وارڈن جو دورو کیو۔ ایچ آئی وی میں مبتلا بارن کھان نفرت نہ کریو، ایچ آئی وی بابت سجاگی جی ضرورت ہے۔ ایچ آئی وی ایک خطرناک لیکن بیماری ہے، افسوس ہے تو یہ بیماری بارن میں تیزی سے ودی رہی ہے۔ ایچ آئی وی سرنجن میں تیزی سے ودے تھی، اتائی ڈاکٹر بار بار استعمال تھل سرنجوں استعمال کن تھا جن خلاف کا کاروائی نہ پی کئی وجے۔ ان جو چوڑ ہو تو پاکستان میں صحت کھاتے میں تباہی تھل ہے، اسپتال میں وسیل کی کھوٹ، جن کرے بار بار سرنجن جو استعمال کیا وجے تو ڈاکٹر بھی تکلیف میں آن، ان کے پوری پگاروں نتوں ملن، ڈاکٹر کے تحفظ بھی دین گرجے۔ ان ایک پچھل سوال کے جواب میں چھو تو 28 ترمیم کے نتھو منیا، ترمیم عوام کے بدھائن کا بغیر نتھی آنے سکجے، افواہیں تو کراچی کے وفاق کے حوالے کن تھا وراثت کن تھا، پنجاب میں صوبہ ٹھایا وجن پیا جے کی اجا افواہ، اگر لوکل باڈیز بیہر ٹھائن چھو تو صوبن کے ورائن کی ضرورت نہ آئے۔

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध हिन वक्त तारीख जे सख्त तरीन गर्मी जे लहर के मुंह ॾेई रही आहे। आसमान मां बाहि वसंदड़ सिज, तपंदड़ हवाऊं, साह उसाड़ंदड़ माहौल ऐं मथां वरी अण ऐलानियल लोड शेडिंग आवाम जी ज़िंदगी खे अज़ाब बणाए छॾियो आहे। शहर हुजनि या बहराड़ियूं, हर हंधि माण्हू गर्मीअ ऐं बिजली जे बुहरान विच में पीसजी रहिया आहिनि। सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि जहिड़ोक नवाबशाह, दादू, लाड़काणो, सखर ऐं जेकवाबाद में गर्मी पदु 50 डिग्री सेंटीग्रेड जे वेझो पहुची वियो आहे। ॾींहं जे घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ॾुखियो थी पियो आहे। मज़दूर, खारी ऐं पुरियो तबिको पंहिंजे रोज़गार खां महरूम थी रहियो आहे, छाकाणि त अहिड़ी सख़्तु गर्मीअ में कमु करणु ज़िंदगीअ खे ख़तरे में विझण जे बराबरि आहे। शहर जूं बाज़ारूं, रोड ऐं अवामी हंधि मंझंदि जो वीरान नज़र अचनि था। माण्हू घरनि अंदरि रहण ते मजबूर आहिनि, पर उते बि खेन आराम नसीब न आहे। गर्मीअ जी शिदत सां गॾु बिजली जी ढिघी ऐं अण ऐलानियल लोडशेडिंग अवाम जे तकलीफ़ुनि में वाधि आणे रही आहे। केतिरनि ई शहरनि ऐं ॻोठनि में 12 खां 18 कलाक ताईं बिजली बंदि रहणु मामूल बणिजी वियो आहे। राति जो जॾहिं गर्मी पंहिंजी इंतिहा ते हूंदी आहे त बिजली ग़ाइब थी वेंदी आहे। नंढड़ा ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हू सॼियूं रातियूं जाॻी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। माण्हू घरनि जे छितियुनि ऐं घटियुनि में वेही हवा जे इंतज़ार में वक़्तु गुज़ारनि था। पाणीअ जो बुहरान, बिजली न हुजण सबबि पाणीअ जी फराहमी मुतासिर थी रही आहे। वाटर सप्लाई स्कीमूं बंदि हुजण करे केतिरनि ई इलाइक़नि में पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। औरतूं ऐं ॿार हथनि सां पाणी भरण लाइ किलोमीटरनि जा सफ़र कनि था। ॻोठाणनि इलाइक़नि में जानवरनि लाइ पाणीअ जी खोट बि हिकु वॾो मसइलो बणिजी वई आहे, जॾहिं त मालवंत माण्हुनि खे माली नुक़सान पहुची रहियो आहे। सिहत जा संगीन ख़तरा, डॉक्टरनि मूजिब शदीद गर्मीअ सबबि हीट स्ट्रोक, पाणीअ जी खोट, ब्लड प्रेशर ऐं ॿियनि बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इस्पताल में मरीज़नि जो अंगु वधी वियो आहे। अफ़सोस जोॻी ॻाल्हि उहा आहे त केतिरनि ई सरकारी इस्पतालुनि में बि बिजली जी लोड शेडिंग सबबि मरीज़ ऐं संदन वारस सख़्तु तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध जी आवाम जो छा मुतालबो आहे? सिंध जी आवाम जो मुतालबो आहे त अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो फौरी ख़ात्मो कयो वञे। इस्पतालुनि, वाटर सप्लाई स्कीमुनि ऐं तालीमी इदारनि खे लोड शेडिंग खां आजो करार ॾिनो वञे। गर्मीअ जे लहर दौरान हंगामी रिलीफ सेंटर क़ाइमु कया वञनि। ग़रीब ऐं विचोले तबिके जे लाइ सोलर तवानाई ते सब्सिडी फराहम कई वञे। पीअण जे साफ़ पाणी जी फराहमी खे यकीनी बणायो वञे। सिंध जो आवाम हिन वक़्तु मिटे अज़ाब मां गुज़री रहियो आहे। हिकु तरफ़ कुदरती गर्मीअ जी शिदत ऐं ॿिए तरफ़ बिजलीअ जे बुहरान आवाम जी ज़िंदगी खे मुश्किल बणाए छॾियो आहे। जेकॾहिं लाॻापियल इदारनि ऐं हुकूमत फौरी क़दम न खयां त हीअ सूरत हाल वधीक संगीन थी सघे थी। सिंध जे माण्हुनि खे रुगो वादनि न पर अमली क़दमनि जी ज़रूरत आहे, जीअं हू हिन सख़्तु गर्मीअ ऐं बिजलीअ जे बुहरान मां निजात हासिलु करे सघनि।

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिंदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8 जियो सिंधी
3: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पहजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हां हाने अमाजे पहजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ए जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ए सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सबनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई परोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: जी सर
1: सवाल वरी रिपीट कंदा
0: जी सर सवाल रिपीट कंदासी त बारन में जो मोबाइल जो वदन इस्तेमाल
1: अच्छा अच्छा अच्छा मोबाइल
0: के हवाले सा उन जी सेहत ते कुछ असर पंदो है
1: जी हां सेहत ते असर पंदो आ वद में वद नजर नजर ते असर पंदो छो त दिसो मोबाइल में छुआओं जरूर होती वन जेका अखियन में लगे थी अच्छा छुआओं जो चवन बेवकूफी आ इन करे मां ये चवा तो रेज या रोशनी असल में मोबाइल बार चा कंदन सफा वेचो करे दिसना है रोशनी एकदम अखियन के लगंदी आ त जंहिंसां उन्हनि नंढड़ी उमिरि में ई चश्मो अचणु शुरू थी पवंदो आहे इहा वॾे में वॾो नुक़सानु जेको आहे न उहो मोबाइल जे इस्तेमाल सां इहो आहे असां डॉक्टर्स बि आहियूं न असांजे मूं वटि क्लिनिक ते बि तव्हां केॾी महिल ॾिठो हूंदो मोबाइल मुंहिंजो टेबल ते पियल आहे गिदे में बि न रखंदो टेबल ते पियल आहे कॉल आई रिसीव कयसीं न त पियो आहे न का इस्तेमालु न कुझु आहे पेशेंट हुजनि न हुजनि मोबाइल मां तक़रीबन न इस्तेमालु कंदो आहियां कॉल आई त रिसीव कयसीं न छा इहे वजह छा मोबाइल खे वेझो करे ॾिसण खां अखियुनि ते असरु पए थो अखियुनि जी नज़र ते असरु पए थो त इहा मेन नुक़सानु जेको आहे उहो आहे बाक़ी मोबाइल जेका शइ आहे न हिकिड़ी मोबाइल टच मोबाइल जेका आहे उन जा ॿ रस्ता आहिनि जीअं उनखे तव्हां पंहिंजी भलाई लाइ इस्तेमालु कंदा हो त तव्हां चढ़ी वेंदव इन त जो ॿियो रस्तो आहे त उनखे ग़लति इस्तेमालु अवां करे सघो था त इहा आहे अव्हां जी ॿारनि ते तरबियत अव्हां जे उनखे तरबियत सही ॾींदा हो त उहो मोबाइल जो सही इस्तेमालु कंदा अच्छा मुंहिंजो चवण जो मतिलबु त सही इस्तेमालु त माना उन पंहिंजी तालीम लाइ इस्तेमालु कयो पंहिंजी पढ़ाई लाइ इस्तेमालु कयो अॻियां फ्यूचर में छा करिणो उन जे बारे में सिखण जे बारे में इस्तेमालु कयो त जीअं असांखे को इंजीनियर या असांखे जीअं मूं वांगुरु डॉक्टर ठहिणो आहे त उन जे लाइ मां हाणे खां छा कयां इहे सभु शयूं इस्तेमालु करे सघे थो बाक़ी मूं वटि पेशेंट आहिनि कुझु नौजवान छोकिरा बाक़ी ॿिया जेका हूंदा आहिनि सम्झी विया त उहो मोबाइल जो ग़लति इस्तेमालु बि कंदा आहिनि ग़लति इस्तेमालु त जीअं नंढड़े अल्फाज़ में चई मां ख़राबु कयां छो त उहा आहे त इतलाउ उहा शइ मोबाइल जे ज़रिए थिए थी त उहा ग़लति रस्तो आहे ई रस्तो सही हाणे जेको खणी सघनि था उहा आहे तरबियत ते तरबियत सही हूंदी त उहो सही रस्ते ते वेंदा सम्झाइणी हूंदी त यार मोबाइल में जीअं तव्हां सवाल जवाबु मिसाल तौर ते जीअं का यूनिवर्सिटी वारा जी मां चवां यूनिवर्सिटी कॉलेज वारा जेका स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि उहा आहिनि चैट जीपीटी हिन में इस्तेमालु कंदा आहिनि हिकु एप आहे हुन में इहा इस्तेमालु कंदा आहिनि त जेका लेक्चर्स आहिनि या को असांखे का प्रोजेक्ट ठाहिणो आहे त उहो चैट जीपीटी जे थ्रू ईज़ी करे वेंदा आहिनि पंहिंजो आसानी जे करे उन

0: होम्योपैथिक इलाज छ आहे जीअं तव्हां होम्योपैथिक डॉक्टर आहियो होम्योपैथिक इलाज छा आहे ऐं उहो ॿियनि तरीक़नि सां कीअं मुख़्तलिफ़ आहे
1: जी बिल्कुल होम्योपैथिक इलाज अच्छा होम्योपैथिक जे इलाज खां अव्हांखे जे सम्झणो आहे त असां अव्हांखे चारि पंज साल खां छो चऊं पिया होम्योपैथिक इलाज करायो त इनखे सम्झाइण जे लाइ अव्हांखे पोइते वञिणो पवंदो रिवर्स त उन में छा आहे त होम्योपैथिक ही इलाज छो करायूं ऐं होम्योपैथिक इलाज छा आहे सवाल जो मतिलबु त होम्योपैथिक ईजाद किथां थी ईजाद कंहिं कई इन जे बारे में पहिरीं सम्झो जंहिंसां अव्हांखे सम्झ पियो अचे त होम्योपैथिक इलाज कीअं ईजादु थियो होम्योपैथिक इलाज थियण जे लाइ अव्हां जो जेको असांजो बानी हो डॉक्टर फ्रेडरिक क्रिस्टल सैमुअल हनीमैन इहो असांजो नालो हूंदा बानीअ जो उन हिकिड़े पहाड़ जी छल जेका छल चवंदा आहियूं खाल उहा पटे उन खे कुटे उहा इस्तेमालु कईसीं उन जिस्म में तकलीफ़ूं थियणु महसूसु थियणु शुरू थी वियूं हितां होम्योपैथिक जी ईजाद शुरू थी वई पोइ आहिस्ते आहिस्ते रिसर्च कंदे कंदे हर बीमारी जी दवाऊं ठहणु शुरू थी वियूं मतिलबु कुदरती दवा कुदरती तरीक़े सां तयारु थियल ऐं कुदरती ज़रिए सां दवा वठी उन जा जेका खाम थी हूंदा आहियूं असां खाम शइ चवंदा आहियूं त उहा सभु शयूं कुदरत जा सभु शयूं इन में वठी करे जीअं वण आहे ॿूटी आहे उहा ई कुदरत जी शयूं उन्हनि सां ई दवा तयारु थींदी आहे ऐं उन बीमारियुनि जो इलाजु थी पवंदो आहे कुदरती तरीक़े सां मतिलबु असां चवंदा आहियूं कुदरती इलाजु कुदरती तरीक़े सां हीअ सभु कुदरत जा तरीक़ेकार सां इलाज वग़ैरह इन में थींदा छो त दवाऊं ठहनि पियूं कुदरत तरीक़े सां हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा सम्झ में अची वई त होम्योपैथिक में दवाऊं ठहण जा तरीक़ेकार तक़रीबनि कुदरती दवाउनि सां कुदरती शयुनि सां कुदरती दवा ठहंदी ठही वई बाक़ी होम्योपैथिक ही छो इलाजु करायूं उनजी वजह छा आहे त असां वॾे अल्फाज़ में चवंदा आहियूं त होम्योपैथिक जी रिसर्च इंसाननि जे मथां थियल आहे जेका असां आम इंसान आहियूं असांजे मथां दवा खाधीसीं जेका तकलीफ़ थियासीं उहा ख़बर पई ऐं उन तकलीफ़ुनि खे असांखे बीमारी में कंहिं मुबतला हो त उनखे दवा ॾिनीसीं त उहो तयारु थी वियो त हीअ छा थियो त इंसाननि जे मथां रिसर्च थियल आहिनि ॿियो को तरीक़ेकार इलाज जेका आहिनि उन में कॾहिं बि इंसाननि जे मथां रिसर्च कान्हे का सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जानवरनि जे मथां रिसर्च आहे त इहा मेन शइ आहे त होम्योपैथिक इलाज कराइण जी असांजी हिकिड़े कुदरती तरीक़े सां दवाऊं ठहंदियूं आहिनि कुदरती सोर्सनि जंहिंसां दवाऊं मिलंदियूं आहिनि ऐं असां तयारु कंदा आहियूं ऐं जेका इन जी रिसर्च आहे उहा बि इंसाननि जे मथां ऐं कंहिं जानवरनि जे मथां रिसर्च कान्हे का त इंसान ई ॿुधाए सघनि था त मूं दवा खाधी मूंखे इहा तकलीफ़ूं थी वियूं हुयूं हाणे पेशंट जेको ईंदो इन तकलीफ़ुनि जे मुताबिक़ उनखे इहा ई दवा ॾे अच्छा इन में हिकिड़ो वर्ड जेको मां एड कराईंदा जंहिंसां अव्हांखे सम्झाणी अची पए त जेॾीमहिल असां दवा रिसर्च कंदा आहियूं त या इस्तेमालु कंदा आहियूं असां त उन में असां दवा जो वठंदा आहियूं तेज़ दवा माना फुल पावर तक़रीबन इहे सम्झो 10 लख पावर हूंदी आहे उन दवा जो ताक़त उहा इस्तेमालु कंदा आहियूं सॼो ॾींहुं नोट कंदा आहियूं त कहिड़ी छा तकलीफ़ दवा खाधी मूंखे मथे में सूरु थियो पेट में सूरु थियो पेट में हीउ थियो जोड़नि में थी सभु शयूं असां पाण नोट कंदा आहियूं असांजो जेको दवा इस्तेमालु कंदो आहे उहो बि हिकिड़ो माण्हू न हूंदो आहे हिकिड़ो इंसान न हूंदो आहे उन में उमिरि जे हिसाब खां अलॻि ऐं औरत मर्द अलॻि थींदा आहिनि माना औरत बि हूंदी मर्द बि हूंदो मतिलबु हर किस कैटेगरीअ में हिकिड़ो पर्सन उन में हूंदो हिन में सिर्फ़ु इहो न आहे त मर्द आहे औरत आहे नंढो आहे बुज़ुर्ग आहे न रंग बि आहे अछो रंग कारो रंग ऐं इन खां अलावा सन्हो थुलो माण्हू इहे सभु शयुनि जे मिलाए करे असांजी टीम ठहंदी आहे तक़रीबन हुन में 100-150 माण्हू हूंदा आहिनि ऐं 100-150 माण्हू हिकिड़ी ई मेडिसन इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी जेमहिल आख़िरी में रिज़ल्ट ईंदो आहे त पोइ रिज़ल्ट खे वरी रिपीट कंदा आहिनि वरी रिपीट कंदा आहिनि त सवाल जेका उन्हनि लिखिया आहिनि जेका दवा जी अलामतूं लिखियूं आहिनि उहा सभु सेम अचनि पियूं त हा हाणे हीअ दवा मथे WHO जेको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन आहे पाकिस्तान में न दुनिया लेवल ते उनखे डीबी आहिनि त हू इन जे मथां अञा रिसर्च कंदा आहिनि त बाक़ी जेका दवा इन्हनि इस्तेमालु कई आहे ठाही आहे ऐं उहो जेका निशानियूं चवनि पिया हिननि कैटेगरी में इन्हनि मरीज़नि खे इस्तेमालु थींदी छा इहा सही आहे उहा चवंदा आहिनि सही आहे त पोइ ई असांजी मेटेरिया मेडिका असांजी किताबनि में ईंदी आहे ऐं असां डॉक्टर्स उनखे पढ़ी करे अव्हांजी दवाउनि जो इस्तेमालु कराईंदा आहियूं ऐं अव्हांखे सचियाबी तरफ़ वठी ईंदा आहियूं मुख़्तसर जी ॻाल्हि हुई त जेका अव्हांखे सम्झाइण जे लाइ त होम्योपैथिक दवा इंसाननि जे मथां रिसर्च थियल आहिनि ठाहिण वारा बि इंसाननि को मशीनूं कोन्हनि खे ऐं उन खां अलावा जेका दवा ठहंदी आहे कुदरती तरीक़ेकार सां उन में जेका जड़ी बूटियूं आहिनि सभु कुदरत जी तरफ़ां हूंदियूं आहिनि छो त असांजी जेका डॉक्टर हुआ त जेको असांजो बानी हो हनीमैन उन नंढी उमिरि में या वण में जंगलातनि में पहाड़नि में जबलनि में घुमंदा हुआ छो त उन्हनि जो जेको बाबा हो उहा ग़रीब हुआ इहा पाण बि ग़रीब

0: इंसान हो ऐं इन छा कंदा हुआ त पहिरीं चीनी वारा बर्तन तव्हां ॾिठा हूंदा उहा ठहंदा हूंदा त उन जे मथां या जीअं असांजे घर में ठाहूं हूंदा आहिनि डिनर सेट हूंदा आहिनि उन जे मथां डिज़ाइनूं ठहियलु हूंदियूं हुयूं डिनर सेटनि में प्लेटनि में तव्हां ॾिठा हूंदा न डिज़ाइन ठहंदियूं आहिनि कंहिंमें गुल वग़ैरह ठहियलु हूंदा हुआ हर शइ तयार हूंदा त इन्हनि जा बाबा छा कंदा चीनी वारा बर्तन चीनी जा बर्तन चवंदा त उन जे मथां इहे गुल वठी उहे पहाड़नि में वेंदा हुननि खे ख़बर त अॼु 31 तारीख़ आहे मई जी त 31 तारीख़ ते फलाणे जब पासे वेंदुसि हुते नओं गुल निकिरंदो मौसम जी तब्दीली जे करे उहा गुल तव्हां पटे खणी ईंदा बाबे खे ॾींदा त हू उन गुल खे ॾिसी उनजो डिज़ाइन ठाहींदा हुआ जीअं की ख़ूबसूरती जे हवाले सां त ठहण जे मथां इहा ख़ूबसूरती थिए ऐं इहा खपनि त असांजी रोज़गार हले त नंढी उमिरि खां ई इन्हनि गुलनि जे बारे में वणनि जे बारे में ॼाण हुई त आहिस्ते आहिस्ते जेॾी महिल इहा प्रोफेसर थी विया एलोपैथिक जा होम्योपैथिक जा न एलोपैथिक जा प्रोफेसर थी विया पोइ हुननि इहो सोचियो त यार हीउ जेको असांजो इलाजु कयूं पिया इन में रतु कढूं पिया पहिरीं बार अची असां वटि रोइनि पिया असां हुननि जी सुयूं लॻाए रतु कढी अञा रोआयूं पिया त इहो तरीक़ेकार इलाजु बहितरु कोन्हे को अहिड़ो तरीक़ेकार इलाजु हुजे पेशंट रोईंदो अचे ऐं खिलंदो वञे त उन्हनि इन्हनि शयुनि खे ॾिसी करे इन होम्योपैथिक जी ईजाद शुरू कई ऐं जेको अलहमदिल्ला अॼु पूरे पाकिस्तान ते न पूरी दुनिया में कामयाबु इलाजु कनि पिया हर होम्योपैथिक डॉक्टर अव्हांखे बि चवंदुसि त होम्योपैथिक जी तरफ़ ज़रूरु अचो छो त इन में बहितरीन दवाऊं आहिनि ऐं हर मर्ज़ जी हर अलॻि अलॻि दवाऊं आहिनि छो त रिसर्च जे मुताबिक़ जे मिसाल तौर ते ॿ माण्हू आहिनि हिकिड़ो कारो आहे हिकिड़ो अछो न नंढो आहे वॾो न पोड़ो आहे जवान न नंढो ॿार आहे औरत न असांजी होम्योपैथी चवंदी आहे त पेशंट असां वटि ॿ वेठा आहिनि हिकिड़े खे ॿिन्हिनि खे माइदे में सूरु आहे हिकिड़े खे सूरु आहे त मानी खाए त पोइ सूरु थिए थो हिकिड़ो चए थो मानी न खायां त बि सूरु आहे त ॿिन्हिनि जी दवाऊं अलॻि आहिनि ॿियो जेका का बि दवा हुजनि हिकमत हुजनि या एलोपैथिक वारा हुजनि उन्हनि वटि ईअं कान्हे का उन्हनि वटि छा आहे त ॿिन्हिनि जे लाइ ओमीप्राज़ोल इसोमीप्राज़ोल या रूलिंग या नाइक्सेम या छा चवंदा आहिनि या राइज़िक वग़ैरह इहा शयूं आहिनि बसि असां में हुनजे लाइ अलॻि दवा आहे हुन जे लाइ अलॻि दवा आहे त हीअ दवा खाईंदो हीअ ठीकु थींदो हू दवा खाईंदो हू ठीकु थींदो त हीअ रिसर्च आहिनि महिनत आहे इन जे सां इहा सभु दवाऊं ईजाद थींदियूं आहिनि कोशिशि आहे उन्हनि जे करे इहे सभु शयूं पैदा थियूं ख़बर पियूं ऐं माण्हुनि खे सही बीमारी में जेका बीमारी आहे उनजी सही दवा मिली त पेशंट तयारु थींदा ऐं हर शइ पंहिंजो कमु किरदारु कनि पिया
1: सर तमामु बहितरीन सुवाल ऐं तमामु बहितरीन सुवाल मुंहिंजो हो तमामु बहितरीन जवाबु तव्हांजो सर कुझु ॿिया बि सुवाल आहिनि
0: जी जी जेतिरा मर्ज़ी सुवाल पुछो मां वेठो आहियां
1: सर सुबुह जो नाश्तो न करण जा कुझु साइड इफेक्ट हूंदा
0: आहिनि साइड इफेक्ट
1: न बाबा नुक़सान वग़ैरह थियनि था
0: नुक़सान नाश्तो न करणु साईं नाश्तो न कयो ऐं तव्हां सुता पिया हुजो पोइ नुक़सानु कोन्हे को नाश्तो न कंदा हो ऐं सुता पिया आहियो त नुक़सानु कोन्हे नाश्तो नथा कयो कमकार कयो पिया नुक़सानु आहे हाणे तव्हांजी मर्ज़ी कयो न कयो
1: अच्छा सर को अहिड़ो इंसानु आहे आम माण्हू आहे जेको चाहे थो त मां सॼी उमिरि सिहतमंद रहां त उहो कहिड़ा उपाउ वठे
0: अच्छा सॼी उमिरि का बीमारी न थिए त उहा सभिनी खां पहिरीं बहितरु रहे त पंहिंजे जिस्म जी जनरल टेस्टूं कराए जनरल टेस्ट मुराद त पंहिंजी माइदे जी जिगर जी गुर्दनि जी अल्ट्रासाउंड वग़ैरह रिपोर्ट वग़ैरह सभु शयूं कराए उन में ॾिसे त कंहिं शइ में कमी आहे उन जो ट्रीटमेंट कराए इलाजु कराए बाक़ी पंहिंजी रुटीन पंहिंजी सही करे खाधो पीतो पंहिंजो सही इस्तेमालु करे टाइम ते इस्तेमालु करे ऐं उन खां अलावा एक्सरसाइज़ ज़रूरु करे सोच गणतियूं परेशानियूं न करे निंड आराम पंहिंजी पूरी रखे उहा मिशन न मरीज़ ई न आहे उहा त बिल्कुलु तयारु आहे बिल्कुलु सिहतमंद आहे न हुनखे शुगर थींदी न ब्लड प्रेशर थींदो न हुनखे फॉलिश थींदो न हुनखे टीबी थींदी न दिलि जा मसला थींदा न माइदे जा थींदा न जिगर जा थींदा पंहिंजी लाइफ खे सही नमूने सां गुज़ारिया जीअं तव्हां पाण हिकिड़ी शइ नोट कई त अवां पाण ॾिठो अंग्रेज़ दवाऊं घटि खाईंदा आहिनि
1: बिल्कुलु
0: असांजा पाकिस्तान वारा घणी दवाऊं खाईंदा आहिनि उनजी वजह छा आहे त हू पंहिंजी रुटीन ठाहे वेंदा आहिनि एक्सरसाइज़ बि कंदा आहिनि कमकार बि कंदा आहिनि खाधो पीतो बिल्कुलु मतिलबु की पंहिंजी जान जे लाइ खाईंदा आहिनि त सुठो नमूने सां खाईंदा आहिनि सुठी शयूं खाईंदा आहिनि साफ़ु सफ़ाई तमामु बहितरीन हूंदी हर शइ में हुनजी साफ़ु सफ़ाई बहितरीन हूंदी आहे त हू पंहिंजी लाइफ खे सही कंदा आहिनि असां वारा छा आहिनि बाबा हल रोड ते पेटिस कयां बिस्मिल्लाह बाबा तूं खाराई पियो न हा हा ॿ टे ॿिया घुरा मां खायां त इहे इनजे करे त असांजा सिंध वारा पाकिस्तान वारा दवाऊं घणी खाईंदा आहिनि ॿाहिरि वारा घटि खाईंदा छो त दवाऊं घणी खाइण बि नुक़सानु आहे इहा शइ ॿुधाइण हुजे
1: अच्छा सर इन ॻाल्हि खे अव्हांजे हिन सवाल खे नोट करे मां हिकु वरी सुवाल तव्हां खां पुछां थो त हर बीमारी जे लाइ दवा ज़रूरी आहे
0: जी हर बीमारी के लिए दवा जरूरी। अच्छा इनमें जी कुछ कुछ बीमारियों हिंसर मुझे जहन में तो वो बुधा तो बाकी कुछ से हिंसर जहन में ना तो खास करे जुकाम
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ जुकाम जुकाम अवा के आए एको डी थी बदी थी जुकाम अवा उन दवा न वो हलन दिन के अलावा हाकचो उल्टी एक दफा थे पी न बंद कर मोशन आ दस्त है वह एक डी हल पाया बी हलन पाया बंद न कर वजह चाहे तो जिसम में जरस दस्तन जिसम में थियन की वजह छी मैदे में जिसम में गरमाइश जो थी वन उन दस्त थी वा तो वह बेहतर निकली वही सब ठीक है। उन के अलावा जुकाम आ मगज में गाढ़ो न जमा थी वे तक जुकाम थे पे बी थियन दियो सज निकली वो उन अलावा बया भी तकलीफू आन जो अस चवे तो इलाज अव न करा तो पर उनमें एहतियात ये करो तो एक डी ऐसो तो वो अवे इलाज कराण है यह शे जहन में हो लाजमी ना तो बी का इलाज न करा जरूरत पे इलाज जरूर करा।
1: अच्छा सर कुछ सवाल रह जन था अना जी अवधाइंदस भी सही थी पे कैरियर दौरान सर तवे तकरीबन तक 14-15 साल जो तजुर्बो है
0: जी बिल्कुल।
1: सर इनमें अवा के को अड़ो मरीज याद आयो हो जैसी तवा की कहानी अज भी याद हो जे।
0: हाँ
1: होल कैरियर तवे सजे कैरियर में अड़ो मरीज याद हों तवे
0: ही पेशेंट हाँ पेशेंट मुख्य याद आईड़ो पेशेंट मुझी पुरानी क्लिनिक तो एक पेशेंट मुझी एफ एम वाली क्लिनिक पेशेंट हुआ जो एफ पुराने क्लिनिक पेशेंट हो तो मुट पेशेंट आयो हो सहीदाबाद में आई पेशेंट मुट पोतो हो उनके बिल्कुल शिवरिंग हुई सुतो पो आयो मास दिठो मास शिवरिंग हुई मोहन के चेमास ये दिसो यो केस मुझो कोने को आई अवा देर पा कयो अवा मुझे इंतजार में छो वेठा हो सही असा हियर आया सी पर तकलीफ दिसो पिया असा जो न छा कयो मुझे बा सामू बारन वाला डॉक्टर होडा वने पर उनके इतरो वक्त न मिलियो तो बारन जे डॉक्टर वठा ले वने ओ 7 साल जी छोकरी हुई गुजारे हुई मुझे क्लिनिक पे बियो पेशेंट हो मुझे उन क्लिनिक ते एफएमआरए ते मज़ वो दादो छो तो मुझे आदत हुई खिल बोकर अमा हुई जरदारी कास्ट जा हुआ तो अमा आई मुखा ही दवा वठंदी हुई आई उनकी तकलीफ थी तो आई भी मुँह दवा वठने के लिए घर में भी उनको फंक्शन हो शादी हो अलग हो फंक्शन हो घर में दावत वगैरह हुई तो वो चंदा मैं सुबह वजा दवा वी शाम जो भात तो इन कर आई भी तो दम दादो मसा खिल भोग मुझे तमाम घनी खिल भोग थी दवा तो लिखी बाद में पर खिल भोग तमाम घनी हुई उनका बाद मुख्य दुख यो थो तो हिंसर मुझे खिल भोग थी अम्मा वही लेडीज में जी जगह होंगी है उत्ते वेठी ही दरवाजो मुझे खुलल हो मां पो अम्मा वणी न पी यार अँ तक खिले पी गलाए पी हिं छो माट कर वेठी आऊँ सिर्फ एतरी देर थी अम्मा उत बेंच से लेटी आऊँ कुर्सी छे आऊँ वो आया दिसण के लिए अम्मा खत्म एतरो दुख थो यार हिंसर मुन से गलाया हिंसर अस भुयोग मस्ती कईसी हिंसर बस बेंच से वही सुती है मां रुगो पोतो बनाया अम्मा खत्म
1: जी सर तमाम दुख जड़ किस्सा है ये
0: जी या लाइफ में जिंदगी में असा यह जरूर आन यो दुख मुख्य दादो थे
1: आखरी जिंदगी है सर अवां के लाजमी है अड़ा डी त हर डॉक्टर दिसे तो केडी मल खुशी दिसंदो है केडी मल को दुख दिसंदो है।
0: हाँ दुख बिया असा हॉस्पिटल में वासी ट्रामा सेंटर नवाबशाह में पीएमसी में होते एकरो पुलिस वारो हो आई सुबह से ड्यूटी के तो ट्रैक्टर ट्राली हुई सिरन जी वो बिनिन पेरन ते चढ़ी उनके सफा प्रेस करे वेही वो बुढ़ खुदा से सजी रात अस मेहनत करे उनकी बैंडेज कई सी सुबह जो अस शिफ्ट खत्म थी बिया आया पेशेंट एक्सपायर थी।
1: अच्छा सर जी अवां प्रोग्राम की शुरुआत में बुधायो
0: जी
1: ते अवां के शौक डॉक्टर थण जो न हो अवां के इंजीनियर थण
0: इंजीनियर जो
1: जी
0: असांजी मैथमेटिक्स हुई ना वो असांजी फास्ट हुई असां कैलकुलेटर भी इस्तेमाल न कंदासी ई सवाल जो जवाब दींदासी
1: तमाम। अच्छा सर हाँ होजन का पो
0: जी
1: अवां छा था सोचो तां अगर डॉक्टर न होजो आ तो इंजीनियर ही होजो आ या को बियो पेशो तां चुंडियो आ
0: जी
1: अगर जे तमा डॉक्टर न होजो आ तो तमा बियो केड़ो को कारोबार कयो आ का नौकरी कयो आ तमा छा कयो आ
0: जे मा डॉक्टर फील्ड में न चा तमा तां जे इंजीनियर जी तरफ मुजी कोशिश हुई पर वालदेन जो जको चवण आ ना वो उन ते अमल करन लाजमी आ उन टाइम से मुँह अमल किया अज मां दिसा पे केतरी केरी वडी पोस्ट मां पोची आ मुजा जे क्लाइंट्स न जे का मुजा दोस्त न या का मुखा पढ़ी विया या मुसा गड पढ़ी विया उहो सभु मूंखे ॾिसंदा यार तुंहिंजी उमिरि एतिरी कान्हे का, पर माशाल्लाह हर सवाल जो जवाबु एफएम ते ॾींदो आहीं, हर पेशंट जी ट्रीटमेंट करी पियो, एतिरी इल्मु तो में किथां आयो? मुंहिंजो सभु अलाह जो ॾियणु, छो त माउ पीउ जी इज़त रखी अलाह मुंहिंजी इज़त रखे पियो।
1: तमामु बहितरु सर। सर आख़िरी प्रोग्राम जे मरहलनि में गुज़री चुका आहियूं, त अवां सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ आख़िरी टे सलाहूं असांजे लिसनर्स खे अगरि ॾियो त उहे कहिड़ियूं हूंदियूं?
0: पाणी जो इस्तेमालु ज़रूरु कयो, खाधो ख़ुराक एतिरो इस्तेमालु कयो जेतिरो अव्हांखे ज़रूरत आहे, ऐं एतिरी शयूं इस्तेमालु कयो जेका अव्हांजी सिहत जे लाइ सुठी हुजे। लाज़मी आहे त असां पंहिंजी सिहत जे लाइ खाऊं पिया, पंहिंजे लाइ खाऊं पिया, थोरो ई खाऊं पर भलो खाऊं। इन चेर करे अव्हां इन शयुनि ते कोशिशि कयो, इन शइ ते कोशिशि कयो, अव्हां जो एहतियात कयो त पाणी जो इस्तेमालु लाज़मी थिए, छो त पाणी अंदरि जिस्म में ज़रूरत आहे, गुर्दनि जे लाइ बि तमामु घणो ज़रूरत आहे, मादे जे लाइ, जिगर जे लाइ, रत में लाज़मी खपे, त पाणी जो इस्तेमालु अव्हां कोशिशि कयो ॾींहं में घटि 12 गिलास अव्हांजो पाणी, हींअर गर्मियुनि में 14 गिलास कयो पाणी जो, ऐं रुगो पाणी न त पाणी पी पी माण्हू पेट फाटे छॾंदो। पाणी, जूस, लस्सी, कमनि जो रस, अहिड़ी शयूं मतिलबु की पीअण वारी जेका पाणी मुताबिक़ जेके शयूं आहिनि उहा इस्तेमालु कयो ॾींहं 12 खां 14 गिलास अव्हां इस्तेमालु करे सघोसि था। गर्मियुनि ख़ासि करे कोशिशि कयो सुबुह जे टाइम ते या शाम जे टाइम ते अव्हांखे सुठी गोश्त वग़ैरह या का सुठी शयूं इस्तेमालु कयो। मंझंदि दारे अव्हांखे गोश्त इस्तेमालु हरगिज़ न आहे करिणो, गर्मीअ में हल्की भाॼी, ऐं यकीन कंदव त अॼु बि असां वटि ओपीडी हुई त असां छा खाधो हो मंझंदि मानी में। मां एज़ ए डॉक्टर थी अव्हांखे चवां पियो त इन को हिजाब कोन्हे, को शर्म कोन्हे, या डॉक्टर थी इहो छेलो खाईंदो न साईं। हिन अॼु जेको असां मंझंदि मानी खाधी आहे 3 बजे मानी खाधी, ॾिसो टाइम असांखे 3 बजे मिलियो मानी जो, 3 बजे असां छा खाधो आहे? दोरे सां मानी, बसर हो, दोरो हो ऐं मानी, बसि न को असां छेलो खाधो, न को पाॾो खाधो, न को छा उज़ाई वारो गोश्त बि उहो बि न खाधो मंझंदि, छो त असां मंझंदि जो खाईंदा ई न आहियूं। असांखे ख़बर आहे हींअर गर्मी आहे, गोश्त खाईंदासीं, मिर्च मसाला हुन में हूंदा त इहो असांजो रहंदो मैदे जो कारो मोकंदी ऐं असांजी गर्मी ठुप बर्दाश्त न थींदी, गर्म आहे न गोश्त। इन करे हिन टाइम ते असां थधी शयूं, दही बड़ा जेका चवंदा आहियूं त उहा ई असां खाए पेट भरंदा आहियूं। शाम जो असां खाईंदा आहियूं पोइ अहिड़ी शइ, छो त माण्हू खाए भई हिकिड़ो अधु कलाकु माण्हू घुमी फिरी ईंदो आहे असांजो, असांजो इहो रूटीन आहे। हीअं मां एफएम तां वेंदुसि, मानी खाईंदुसि, अधु कलाकु शहर जा राउंड वग़ैरह हणी पोइ वञी घरु अची सुम्ही रहंदुसि। समीन प्रोग्राम में हलंदा रहंदा, नादिर साहब जा सवाल बि हलंदा रहंदा, इनशाला सवालनि जा जवाब बि ॾींदा रहंदासीं, अव्हांजो साथ बि रहंदो, ऐं अव्हांखे को होम्योपैथिक इलाजु कराइणो हुजे, बीमारी का बि हुजे, इलाज जी होम्योपैथिक करणु हुजे त हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजी पंहिंजी क्लिनिक आहे। मां पंहिंजो तव्हांजो पंहिंजो डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, ऐं असांजी क्लिनिक आहे स्टेशन रोड ते, हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक नालो आहे। इहो ई असांजो नंबर आहे जेको क्लिनिक ते बि आहे, एफएम ते बि इहो ई नंबर आहे। सुबुह 9 खां वठी शाम जो 6 वॻे ताईं क्लिनिक खुलियल हूंदी, सभु ॾींहुं खुलियल आहे, सिवाइ जुमे वारे ॾींहुं सुबुह 9 खां मंझंदि 12 वॻे ताईं, निमाज़ खां पहिरीं असांजी क्लिनिक बंदि थी पवंदी आहे। त इन शइ जो ख़्यालु रखंदा, इनशाला अलाह सां उमेदु रहंदी त जेका बि असां वटि अचनि पिया इलाज जे लाइ, अलाह उन्हनि सभिनी खे शिफ़ा ॾिए, ऐं असांजी कोशिशि बि इहा रहंदी आहे त जेका दवा जी ज़रूरत आहे उहा मिले, सही दवा मिले जंहिंसां पेशंट खे सहतियाब थिए। असांजी सोच पेशंट मूंखे चवंदा त असां तयारु थियासीं ॿिया पेशंट मोकिलनि, न, रोज़ी ॾियण वारो अलाह आहे, मूं वटि जेको आयो आहे मां पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदो इनखे दवा मिले त हीउ तयारु थिए, बाक़ी कमु अलाह जो आहे। त इनशाला उमेद कंदासीं अव्हां पंहिंजो इलाजु करायो होम्योपैथिक, त इनशाला जेसि ताईं हूंदासीं अव्हां सां गॾु रहंदासीं। फ़िलहालु ॾियो इजाज़त, अलाह निगरबान।
1: जी असां अॼु जे सुहिणी मालूमाती कचहरी में असां सां गॾु हुआ सकण जा मशहूरु मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, जिन सिहत, तंदुरुस्ती ऐं एहतियाती तदबीरुनि बाबति तमामु क़ीमती ॻाल्हियूं असां सां वंडियूं। डॉक्टर साहब, अव्हांजी मोहबत, वक़्त ऐं काराइते ॼाण जे लाइ दिलि जी गहराइयुनि सां महिरबानी। उमेदु आहे त अॼु जी हिन कचहरी मां असांजा ॿुधंदड़ ज़रूरु फ़ाइदो हासिलु कंदा। सिहत अलाह पाक जी वॾी नेमत आहे, तंहिं करे पंहिंजो पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, मुतवाज़न ग़िज़ा खाओ, ख़ुशि रहो ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशियूं विरिहायो। हाणे इजाज़त ॾियो, मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान नादिर अली मक्सी, ऐं अव्हां ॿुधी त रहिया आहियो जीअं सकड़ नवाब शाह एफएम 90.8। खिलंदा रहो, मुरकंदा रहो, अलाह पाक अव्हां सभिनी खे सिहत, खुशहाली ऐं सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। सिंध सलामत, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां गुलाब खान बेण।

टिन राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़े में ओगरा जी कार्रवाई लखे लीटर गैर कानूनी पेट्रोल ऐं डीजल हथ सिंध में पाणीअ जी खोट वधी 22% थी वई सी जी ऐं टी पी के नाल वसीले धाड़ो बंद न थियो हणत जारी सिंध में वायू बताल कंदड़ गर्मी पारो 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुतो अवाम परेशान सूफ़ीज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत याफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक टंडो मोहम्मद ख़ान में मुनक़िद सूफ़ीज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज ते सिन पेश हैदराबाद में मुबैना तौर घरेलू तकरार तां झेड़ो जवाबदार जो पंहिंजे मासीअ जे घर ते हमिलो फायरिंग गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान क़तलु ऐं ॿियो भाउ ज़ख़्मी जवाबदार फ़रार ऐं स्पेशल रिपोर्ट बि अवां ॿुधी सघंदा सिंध में शदीद गर्मी ऐं अण ऐलानियल लोडशेडिंग अवाम आज़ाब जे चकीअ में

सिंध में पाणी खोट वधी 22% थी वही। सीजी ऐं टीपी केनालनि वसीले धाड़ो बंद न थियो, खणत जारी आहे। जॾहिं त मिलियल अंगाखर मूजिबि कोटड़ी बैराज वटि 29% खोट डिक्लेयर कई वई आहे। पाणी ठाह मूजिब सिंध खे मजमूई तौर 80,640 क्यूसिक पाणी मिलणो आहे, पर फराहमी मजमूई 22% पाणी खोट सां 62,953 क्यूसिक थी रही आहे। होॾां सी जी लिंक केनाल वसीले ठाह मूजिब 5,500 क्यूसिक पाणी कढियो वियो आहे, पर उतां 11,500 क्यूसिक वहायो थो वञे। टीपी केनाल मां पाणी वहाइणो ई न आहे, पर उतां 11,285 क्यूसिक पाणी जी खणत आहे। मंगला डेम मां पाणी कढण बदिरां तरबेला डेम जो पाणी मंगला डेम मां खयो वञे पियो, ऐं सिंध खे पाणी खोट खे मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। सिंध जे आबाजी खाते वारा उन हवाले सां ख़ामोशी अख़्तियार कयल आहे, जंहिं सबबि सिंध में काहियल फसलुनि खे शदीद नुक़सान थी रहियो आहे। हितां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त सिंध जे इरीगेशन खाते खे अक पटे अवाम खे पाणीअ जी फराहमी खे यकीनी बनाइण ते कमु करणु घुरिजे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कंदे लखें लीटर गैरकानूनी तौर जखीरो कल पेट्रोल ए डीजल जब्त कर वरतो है। ऐलान मूजिब ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कई, जैं दौरान वे मकदार में गैरकानूनी पेट्रोल ए डीजल हथ किया वो। ओगरा जो चवण है पेट्रोल ए डीजल हब वे इलाके में गैरकानूनी तौर जखीरो वो हो, जो एक ऑयल डिपो में रखो वो हो। ओगरा मूजिब वो खानगी कंपनी जो ऑयल डिपो गैरकानूनी तौर से हलंदड़ हो, जैं वट ओगरा जो लाइसेंस ए दिफा वारी वजारत की NOC मौजूद न हुई। ऐलान में बुधायो वियो आहे त ओगरा जी इन्फोर्समेंट टीम उन ऑयल डिपो के सील करे छॾियो आहे। सिंध के घणनि मैदानी इलाकन में सख्त गर्मी रिकॉर्ड कायम करे छॾिया। मौसमियात खाते मूजिब पंजाब ए सिंध जा घणे कदर मैदानी इलाका सख्त गर्मी के लहर के वकड़ में आन, हीअ गर्मीअ जी लहर आचर ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते मुताबिक़ गुज़िरियल ॾींहुं सभ खां वधीक गर्मी पद दादू ऐं जेकमाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कयो वियो। साॻी रीति सिबी तुर्बत शहीद बिनिंद्राबाद लाड़काणो ऐं मोहन जे दड़े में गर्मी पद 50 डिग्री, खैरपुर सकरण में 49 डिग्री, डेरा गाज़ी खान में 47 ऐं लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहियो, जॾहिं त इस्लामाबाद में गर्मी पद 40 डिग्री खां वधीक रिकॉर्ड कयो वियो। उन खां सवाइ मौसमियात खाते चयो आहे त कराचीअ में अॼु गर्मी पद 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। सूफ़ी अज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत आफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक टंडो मोहम्मद ख़ान में मुनक़िद करे संदसि सूफ़ी अज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। टंडो मोहम्मद ख़ान में इल्म व अदब अकेडमी तरफ़ां सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ खे भेटा ॾियण लाइ मुनक़िद कयल अदबी तक़रीब खे नाले वारे मुहक़िक़ अदीब लेखक सैयद मेहरबान अली शाह शम्सी ख़िताब दौरान चयो त सूफ़ी अज़म जे तसोफ़ वारे फ़िक्र खे पूरी दुनिया में इंसानियत जे भलाई जो दर्स करार ॾिनो वञे थो। सदारती ख़िताब दौरान हुन चयो त शाह शम्स तबरेज़ी पूरी दुनिया जे अंदरि पंहिंजे तसोफ़ वारे फ़िक्र ज़रिए पंहिंजी अलॻि आला सुञाणप ऐं मक़ाम रखियो आहे, जंहिंखे भेटा ॾियण जे लाइ मुनक़िद कयल ही अदबी तक़रीब संदसि अज़मत खे असां न सिर्फ़ ख़िराज तहसीन पेश करियूं था, पर संदसि अज़ीम सूफ़ी अज़म तसोफ़ वारे फ़िक्र बाबति उहो बि तस्लीम करियूं था त शाह शम्स तबरेज़ीअ जो नज़रियो इंसानियत जे रोशन मुस्तक़बिल जो हिकु मिसाल आहे। अदबी तक़रीब खे सोरमी सतह बदीन जी अॻवाण मारवी आपदा समूह सदफ़ कीरियो पीपी यूथ अॻवाण सैद सलाल शाह बुख़ारी तालीमी माहिर ग़ुलाम नबी कीरियो समेत नाले वारनि लेखकनि अदीबनि शाइरनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयो। जॾहिं त अदबी तक़रीब खां पोइ राग रंग जी महफ़िल में सिंध जे मशहूरु सूफ़ी फ़नकार सूफ़ियाणा कलाम ॻाए दाद हासिलु कयो। उन मौक़े ते सिंध ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ सूफ़ी अज़म जे तसवुर सां तालुक़ु रखंदड़ दरगाहुनि जे गादी नशीननि जी बि दस्तारबंदी पिणु कई वई। हैदराबाद जे हाली रोड थाणे जे हद पुराणी सब्ज़ी मंडीअ वेझो नज़रहत कॉलोनीअ में मुबैना तौर घरू तकरार तां जवाबदारनि जी मासीअ जे घर ते हमिलो करे घर अंदरि फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान असद पठाण थॾे ते ई फोत थी वियो, जॾहिं त संदसि भाउ शाहज़ेब पठाण ज़ख़्मी थी पियो। वाक़िए बाद जवाबदार फ़रार थी विया। वाक़िए जो इतलाउ मिलण ते हाली रोड पुलिस पहुची वई, जंहिं लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे खणाए सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुचायो, जिते ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मीअ खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। पुलिस मूजिबि वाक़ियो घरेलू तकरार तां पेश आयो आहे त
قاتل ۽ مقتول پاڻ ۾ ماسات ٿين، واقعي جي وڌيڪ جاچ جاري آهي۔ جوابدارن جي گرفتاري جي لاءِ چھاپا هيا پيا وڃن، وارسن جي اچڻ بعد ايف آئي آر داخل ڪئي ويندي۔ جڏهن سول اسپتال ۾ زخمي شاهدي پٺاڻ صحافين سان ڳالهائيندي ٻڌايو ته سندس ماسي جي پٽن سندن گھر تي حملو ڪري سندس ڀاء اسد پٺاڻ کي قتل ۽ کيس زخمي ڪري فرار ٿي ويا آهن۔ ان چيو ته جوابدارن ۾ لدو، ریاض، فیاض ۽ شہباز شامل آهن۔ ہوڏان واقعي جي اطلاع ملڻ تي تك جي ايم پي انجنيئر صابر حسين قائم خاني پڻ سول اسپتال ۾ پهچي زخمين جي عيادت ڪندي وارسن کي انصاف ڏيارڻ جي خاطري ڪرائي۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو گمبٹ گمپ سٹی اسپتال پہنچی ایچ آئی وی میں مبتلا بارن جی عیادت کئی ہے۔ مختلف وارڈن جو دورو کیو۔ ایچ آئی وی میں مبتلا بارن کا نفرت نہ کریو، ایچ آئی وی بابت سجاگی جی ضرورت ہے۔ ایچ آئی وی ایک خطرناک لیکن بیماری ہے۔ افسوس ہے تو یہ بیماری بارن میں تیزی سے ودی رہی ہے۔ ایچ آئی وی سرنجن میں تیزی سے ودے تھی۔ اتائی ڈاکٹر بار بار استعمال تھل سرنجوں استعمال کن تھا جن خلاف کا بھی کاروائی نہ پی کئی وے۔ ان چوڑ ہو تو پاکستان میں صحت خاتے میں تباہی تھل ہے۔ اسپتال میں وسیلن کی کھوٹ جن کرے بار بار سرنجن جو استعمال کیا وجے تو ڈاکٹر بھی تکلیف میں آن، ان کے پوری پگاروں نتوں ملن، ڈاکٹر کے تحفظ بھی دین گرجے۔ ان ایک پچھل سوال کے جواب میں چھو تو 28 ترمیم کے نتوں منیا، ترمیم عوام کے بدھائن کا بغیر نتھی آنے سکجے۔ افواہ کراچی کے وفاق کے حوالے کن تھا وراثت کن تھا۔ پنجاب میں صوبہ ٹھایا وجن پیا جے کی اجا افواہ، اگر لوکل باڈیز بیہر ٹھان چھو تو صوبن کے ورائن کی ضرورت نہ آئے۔

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध हिन वक्त तारीख जे सख्त तरीन गर्मी जे लहर के मुंह ॾेई रही आहे। आसमान मां बाहि वसंदड़ सिज, तपंदड़ हवाऊं, साह उसाड़ंदड़ माहौल ऐं मथां वरी अण ऐलानियल लोड शेडिंग आवाम जी ज़िंदगीअ खे अज़ाब बणाए छॾियो आहे। शहर हुजनि या बहराड़ियूं, हर हंधि माण्हू गर्मीअ ऐं बिजली जे बुहरान विच में पीसजी रहिया आहिनि। सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि जहिड़ोक नवाबशाह, दादू, लाड़काणू, सखर ऐं जेकबाबाद में गर्मी पदु 50 डिग्री सेंटीग्रेड जे वेझो पहुची वियो आहे। ॾींहं जे घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ॾुखियो थी पियो आहे। मज़दूर, खारी ऐं पुरियो तबिको पंहिंजे रोज़गार खां महरूम थी रहियो आहे, छाकाणि त अहिड़ी सख़्त गर्मीअ में कमु करणु ज़िंदगीअ खे ख़तरे में विझण जे बराबरि आहे। शहर जूं बाज़ारूं, रोड ऐं अवामी हंधि मंझंदि जो वीरान नज़र अचनि था। माण्हू घरनि अंदरि रहण ते मजबूर आहिनि, पर उते बि खेन आराम नसीब न आहे। गर्मीअ जी शिदत सां गॾु बिजली जी ढिघी ऐं अण ऐलानियल लोड शेडिंग अवाम जे तकलीफ़ुनि में वाध आणे रही आहे। केतिरनि ई शहरनि ऐं ॻोठनि में 12 खां 18 कलाक ताईं बिजली बंदि रहणु मामूल बणिजी वियो आहे। राति जो जॾहिं गर्मी पंहिंजी इंतिहा ते हूंदी आहे त बिजली ग़ाइब थी वेंदी आहे। नंढड़ा ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हू सॼियूं रातियूं जागी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। माण्हू घरनि जे छितियुनि ऐं घटियुनि में वेही हवा जे इंतज़ार में वक़्तु गुज़ारनि था। पाणीअ जो बुहरान, बिजली न हुजण सबबि पाणीअ जी फराहमी मुतासिर थी रही आहे। वाटर सप्लाई स्कीमूं बंदि हुजण करे केतिरनि ई इलाइक़नि में पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। औरतूं ऐं ॿार हथनि सां पाणी भरण लाइ किलोमीटरनि जा सफ़र कनि था। ॻोठाणनि इलाइक़नि में जानवरनि लाइ पाणीअ जी खोट बि हिकु वॾो मसइलो बणिजी वई आहे, जॾहिं त मालवंत माण्हुनि खे माली नुक़सान पहुची रहियो आहे। सिहत जा संगीन ख़तरा, डॉक्टरनि मूजिब शदीद गर्मीअ सबबि हीट स्ट्रोक, पाणीअ जी खोट, ब्लड प्रेशर ऐं ॿियनि बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इस्पताल में मरीज़नि जो अंगु वधी वियो आहे। अफ़सोस जोॻी ॻाल्हि उहा आहे त केतिरनि ई सरकारी इस्पतालुनि में बि बिजली जी लोड शेडिंग सबबि मरीज़ ऐं संदन वारस सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध जी आवाम जो छा मुतालबो आहे? सिंध जी आवाम जो मुतालबो आहे त अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो फौरी ख़ात्मो कयो वञे। इस्पतालुनि, वाटर सप्लाई स्कीमुनि ऐं तालीमी इदारनि खे लोड शेडिंग खां आजो करार ॾिनो वञे। गर्मीअ जे लहर दौरान हंगामी रिलीफ सेंटर क़ाइमु कया वञनि। ग़रीब ऐं विचोले तबिके जे लाइ सोलर तवानाई ते सब्सिडी फ़राहम कई वञे। पीअण जे साफ़ पाणी जी फराहमी खे यकीनी बणायो वञे। सिंध जो आवाम हिन वक़्तु मिटे अज़ाब मां गुज़री रहियो आहे। हिकु तरफ़ कुदरती गर्मीअ जी शिदत ऐं ॿिए तरफ़ बिजलीअ जे बुहरान आवाम जी ज़िंदगी खे मुश्किल बणाए छॾियो आहे। जेकॾहिं लाॻापियल इदारनि ऐं हुकूमत फौरी क़दम न खयां त हीअ सूरत हाल वधीक संगीन थी सघे थी। सिंध जे माण्हुनि खे रुगो वादनि न पर अमली क़दमनि जी ज़रूरत आहे, जीअं हू हिन सख़्त गर्मीअ ऐं बिजलीअ जे बुहरान मां

0: इहो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: जो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8
3: हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं बरोज़ जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते 0327-9984-7063।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

टिन राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध ऐं बलोचिस्तान जे सरहदी इलाइक़े में ओगरा जी कार्रवाई लखे लीटर गैर कानूनी पेट्रोल ऐं डीजल हथ सिंध में पाणीअ जी खोट वधी 22% थी वई सी जी ऐं टी पी के नाल वसीले धाड़ो बंदि न थियो हणत जारी सिंध में वायूं बताल कंदड़ गर्मी पारो 51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुतो अवाम परेशान सूफ़ीज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत याफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक टंडो मामद ख़ान में मुनक़िद सूफ़ीज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश हैदराबाद में मुबैना तौर घरेलू तकरार तां झेड़ो जवाबदार जो पंहिंजे मासीअ जे घर ते हमिलो फायरिंग गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान क़तलु ऐं ॿियो भाउ ज़ख़्मी जवाबदार फ़रार ऐं स्पेशल रिपोर्ट बि अवां ॿुधी सघंदा सिंध में शदीद गर्मी ऐं अण ऐलानियल लोडशेडिंग अवाम आज़ाब जे चकीअ में

सिंध में पाणी खोट वधी 22% थी वई। सीजी ऐं टीपी केनालनि वज़ीरे धाड़ो बंदि न थियो, खणत जारी आहे। जॾहिं त मिलियल अंगाखर मूजिबि कोटड़ी बैराज वटि 29% खोट डिक्लेयर कई वई आहे। पाणी ठाह मूजिबि सिंध खे मजमूई तौरु 80,640 क्यूसिक पाणी मिलणो आहे, पर फराहम में मजमूई 22% पाणी खोट सां 62,953 क्यूसिक थी रही आहे। होॾां सी जी लिंक केनाल वसीले ठाह मूजिबि 5,500 क्यूसिक पाणी कढियो वियो आहे, पर उतां 11,500 क्यूसिक वहायो थो वञे। टीपी केनाल मां पाणी वहाइणो ई न आहे, पर उतां 11,285 क्यूसिक पाणी जी खणत आहे। मंगला डेम मां पाणी कढण बदिरां तरबेला डेम जो पाणी मंगला डेम मां खयो वञे पियो, ऐं सिंध खे पाणी खोट खे मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। सिंध जे आबाजी खाते वारा उन हवाले सां ख़ामोशी अख़्तियार कयल आहे, जंहिं सबबि सिंध में कायल फसलुनि खे शदीद नुक़सान थी रहियो आहे। हितां जे आबादगारनि जो चवणु आहे त सिंध जे इरीगेशन खाते खे अक पटे अवाम खे पाणीअ जी फराहमी खे यकीनी बनाइण ते कमु करणु घुरिजे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कंदे लखें लीटर गैरकानूनी तौर जखीरो कल पेट्रोल ए डीजल जब्त कर वरतो है। ऐलान मूजिब ओगरा सिंध में बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई कई, जैं दौरान वे मकदार में गैरकानूनी पेट्रोल ए डीजल हथ किया वो। ओगरा जो चवण है पेट्रोल ए डीजल हब वे इलाके में गैरकानूनी तौर जखीरो वो हो, जो एक ऑयल डिपो में रखो वो हो। ओगरा मूजिब वो खानगी कंपनी जो ऑयल डिपो गैरकानूनी तौर से हलंदड़ हो, जैं वट ओगरा जो लाइसेंस ए दिफा वारी वजारत की एनओसी मौजूद न हुई। ऐलान में बुधायो वियो आहे त ओगरा जी इन्फोर्समेंट टीम उन ऑयल डिपो के सील करे छॾियो आहे। सिंध के घणनि मैदानी इलाकन में सख्त गर्मी रिकॉर्ड कायम करे छॾिया। मौसमियात खाते मूजिब पंजाब ए सिंध जा घणे कदर मैदानी इलाका सख्त गर्मी के लहर के वकड़ में आन, हीअ गर्मी की लहर आचर ताईं जारी रहण जो इम्कान है। मौसमियात खाते मुताबिक गुजरियल ॾींहुं सभ खां वधीक गर्मी पद दादू ए जेकमाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया वो। साॻी रीति सिबी तुर्बत शहीद बिन हैदराबाद लाड़काणो ए मोहनजोदड़ो में गर्मी पद 50 डिग्री, खैरपुर सकरण में 49 डिग्री, डेरा गाजी खान में 47 ऐं लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहियो। जॾहिं त इस्लामाबाद में गर्मी पद 40 डिग्री खां वधीक रिकॉर्ड कयो वियो। उन खां सवाइ मौसमियात खाते चयो आहे त कराचीअ में अॼु गर्मी पद 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो। सूफ़ी अज़म तसोफ़ जे अज़ीम आलमी सतह ते शोहरत आफ़्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ जो 773 उर्स मुबारक टंडो मोहम्मद ख़ान में मुनक़िद करे संदसि सूफ़ी अज़म वारे फ़िक्र खे ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। टंडो मोहम्मद ख़ान में इल्म व अदब अकेडमी तरफ़ां सैयद शाह शम्स तबरेज़ी सब्ज़वारीअ खे भेटा ॾियण लाइ मुनक़िद कयल अदबी तक़रीब खे नाले वारे मुहक़िक़ अदीब लेखक सैयद मेहरबान अली शाह शम्सी किताब दौरान चयो त सूफ़ी अज़म जे तसोफ़ वारे फ़िक्र खे पूरी दुनिया में इंसानियत जे भलाई जो दर्स करार ॾिनो वञे थो। सदारती किताब दौरान हुन चयो त शाह शम्स तबरेज़ी पूरी दुनिया जे अंदरि पंहिंजे तसोफ़ वारे फ़िक्र ज़रिए पंहिंजी अलॻि आला सुञाणप ऐं मक़ाम रखियो आहे, जंहिंखे भेटा ॾियण जे लाइ मुनक़िद कयल ही अदबी तक़रीब संदसि अज़मत खे असां न सिर्फ़ु ख़िराज तहसीन पेश करियूं था, पर संदसि अज़ीम सूफ़ी अज़म तसोफ़ वारे फ़िक्र बाबति उहो बि तस्लीम करियूं था त शाह शम्स तबरेज़ीअ जो नज़रियो इंसानियत जे रोशन मुस्तक़बिल जो हिकु मिसाल आहे। अदबी तक़रीब खे सोरमी सथ बदीन जी अॻुवाण मारवी आबदा समूह सदफ़ किरियो पीपी यूथ अॻुवाण सैद सलाल शाह बुख़ारी तालीमी माहिर ग़ुलाम नबी किरियो समेत नाले वारनि लेखकनि अदीबनि शाइरनि खे ख़िराज तहसीन पेश कयो। जॾहिं त अदबी तक़रीब खां पोइ राग रंग जी महफ़िल में सिंध जे मशहूरु सूफ़ी फ़नकार सूफ़ियाणा कलाम गाए दाद हासिलु कयो। उन मौक़े ते सिंध ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ सूफ़ी अज़म जे तसवुर सां तालुक़ु रखंदड़ दरगाहुनि जे गादी नशीननि जी बि दस्तारबंदी पिणु कई वई। हैदराबाद जे हाली रोड थाणे जे हद पुराणी सब्ज़ी मंडीअ वेझो नज़रहत कॉलोनीअ में मुबैना तौरु घरू तकरार तां जवाबदारनि जी मासीअ जे घर ते हमिलो करे घर अंदरि फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में गोलियूं लॻण सबबि हिकु नौजवान असद पठाण थदे ते ई फोत थी वियो, जॾहिं त संदसि भाउ शाहज़ेब पठाण ज़ख़्मी थी पियो। वाक़िए बाद जवाबदार फ़रार थी विया। वाक़िए जो इतलाह मिलण ते हाली रोड पुलिस पहुची वई, जंहिं लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे खणाए सिविल अस्पताल हैदराबाद पहुचायो, जिते ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मीअ खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। पुलिस मूजिबि वाक़ियो घरेलू तकरार तां पेश आयो आहे।
قاتل ۽ مقتول پاڻ ۾ ماسات ٿين، واقعي جي وڌيڪ جاچ جاري آهي۔ جوابدارن جي گرفتاري جي لاءِ چھاپا هيا پيا وڃن۔ وارسن جي اچڻ بعد ايف آئي آر داخل ڪئي ويندي۔ جڏهن سول اسپتال ۾ زخمي شاهزي پٺاڻ صاحبن سان ڳالهائيندي ٻڌايو ته سندس ماسي جي پٽن سندن گھر تي حملو ڪري سندس ڀاء اسد پٺاڻ کي قتل ۽ کيس زخمي ڪري فرار ٿي ويا آهن۔ ان چيو ته جوابدارن ۾ لدو، ریاض، فیاض ۽ شہباز شامل آهن۔ ہوڏان واقعي جي اطلاع ملڻ تي تک جي ايم پي انجنيئر صابر حسين قائم خاني پڻ سول اسپتال ۾ پهچي زخمين جي عيادت ڪندي وارثن کي انصاف ڏيارڻ جي خاطري ڪرائي۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو گمبٹ گمپ سٹی اسپتال پہنچی ایچ آئی وی میں مبتلا بارن جی عیادت کئی ہے۔ مختلف وارڈن جو دورو کیو۔ ایچ آئی وی میں مبتلا بارن کھان نفرت نہ کریو، ایچ آئی وی بابت سجاگی جی ضرورت ہے۔ ایچ آئی وی ایک خطرناک لیکن بیماری ہے۔ افسوس ہے تو یہ بیماری بارن میں تیزی سے ودی رہی ہے۔ ایچ آئی وی سرنجن میں تیزی سے ودے تھی۔ اتائی ڈاکٹر بار بار استعمال تھل سرنجوں استعمال کن تھا جن خلاف کا کاروائی نہ پی کئی وے۔ انجو چوڑ ہو تو پاکستان میں صحت کھاتے میں تباہی تھل ہے۔ اسپتال میں وسیلن کی کھوٹ جن کرے بار بار سرنجن جو استعمال کیا وجے تو ڈاکٹر بھی تکلیف میں آن، ان کے پوری پگاروں نتوں ملن، ڈاکٹر کے تحفظ بھی دین گرجے۔ ان ایک پچھل سوال کے جواب میں چھو تو 28 ترمیم کے نتوں منیا، ترمیم عوام کے بدھائن کا بغیر نتھی آنے سکجے۔ افواہ کراچی کے وفاق کے حوالے کن تھا وراثت کن تھا۔ پنجاب میں صوبہ ٹھایا وجن پیا جے کی اجا افواہ، اگر لوکل باڈیز بیہر ٹھائن چھو تو صوبن کے ورائن کی ضرورت نہ آئے۔

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध हिन वक्त तारीख जे सख्त तरीन गर्मी जे लहर के मुंह ॾेई रही आहे। आसमान मां बाहि वसंदड़ सिज, तपंदड़ हवाऊं, साह उसाड़ंदड़ माहौल ऐं मथां वरी अण ऐलानियल लोड शेडिंग आवाम जी ज़िंदगीअ खे अज़ाब बणाए छॾियो आहे। शहर हुजनि या बहराड़ियूं, हर हंधि माण्हू गर्मीअ ऐं बिजली जे बुहरान विच में पीसजी रहिया आहिनि। सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि जहिड़ो नवाबशाह, दादू, लाड़काणू, सखर ऐं जेकबाबाद में गर्मी पदु 50 डिग्री सेंटीग्रेड जे वेझो पहुची वियो आहे। ॾींहं जे घरनि खां ॿाहिरि निकिरणु ॾुखियो थी पियो आहे। मज़दूर, खारी ऐं पुरियल तबिको पंहिंजे रोज़गार खां महरूम थी रहियो आहे, छाकाणि त अहिड़ी सख़्तु गर्मीअ में कमु करणु ज़िंदगीअ खे ख़तरे में विझण जे बराबरि आहे। शहर जूं बाज़ारूं, रोड ऐं अवामी हंधि मंझंदि जो वीरान नज़र अचनि था। माण्हू घरनि अंदरि रहण ते मजबूर आहिनि, पर उते बि खेन आराम नसीब न आहे। गर्मीअ जी शिदत सां गॾु बिजली जी ढिघी ऐं अणऐलानियल लोड शेडिंग अवाम जे तकलीफ़ुनि में वाध आणे रही आहे। केतिरनि ई शहरनि ऐं ॻोठनि में 12 खां 18 कलाक ताईं बिजली बंदि रहणु मामूल बणिजी वियो आहे। राति जो जॾहिं गर्मी पंहिंजी इंतिहा ते हूंदी आहे त बिजली ग़ाइब थी वेंदी आहे। नंढड़ा ॿार, बुज़ुर्ग ऐं बीमार माण्हू सॼियूं रातियूं जाॻी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। माण्हू घरनि जे छितियुनि ऐं घटियुनि में वेही हवा जे इंतज़ार में वक़्तु गुज़ारनि था। पाणीअ जो बुहरान, बिजली न हुजण सबबि पाणीअ जी फराहमी मुतासिर थी रही आहे। वाटर सप्लाई स्कीमूं बंदि हुजण करे केतिरनि ई इलाइक़नि में पीअण जो साफ़ पाणी नथो मिले। औरतूं ऐं ॿार हथनि सां पाणी भरण लाइ किलोमीटरनि जा सफ़र कनि था। ॻोठाणनि इलाइक़नि में जानवरनि लाइ पाणीअ जी खोट बि हिकु वॾो मसइलो बणिजी वई आहे, जॾहिं त मालवंत माण्हुनि खे माली नुक़सान पहुची रहियो आहे। सिहत जा संगीन ख़तरा, डॉक्टरनि मूजिब शदीद गर्मीअ सबबि हीट स्ट्रोक, पाणीअ जी खोट, ब्लड प्रेशर ऐं ॿियनि बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। इस्पताल में मरीज़नि जो अंगु वधी वियो आहे। अफ़सोस जोॻी ॻाल्हि उहा आहे त केतिरनि ई सरकारी इस्पतालुनि में बि बिजली जी लोड शेडिंग सबबि मरीज़ ऐं संदन वारस सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध जी आवाम जो छा मुतालबो आहे? सिंध जी आवाम जो मुतालबो आहे त अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो फौरी ख़ात्मो कयो वञे। इस्पतालुनि, वाटर सप्लाई स्कीमुनि ऐं तालीमी इदारनि खे लोड शेडिंग खां आजो करार ॾिनो वञे। गर्मीअ जे लहर दौरान हंगामी रिलीफ सेंटर क़ाइमु कया वञनि। ग़रीब ऐं विचोले तबिके जे लाइ सोलर तवानाई ते सब्सिडी फ़राहम कई वञे। पीअण जे साफ़ पाणी जी फराहमी खे यकीनी बणायो वञे। सिंध जो आवाम हिन वक़्तु मिटे अज़ाब मां गुज़री रहियो आहे। हिकु तरफ़ कुदरती गर्मीअ जी शिदत ऐं ॿिए तरफ़ बिजलीअ जे बुहरान आवाम जी ज़िंदगी खे मुश्किल बणाए छॾियो आहे। जेकॾहिं लाॻापियल इदारनि ऐं हुकूमत फौरी क़दम न खयां त हीअ सूरत हाल वधीक संगीन थी सघे थी। सिंध जे माण्हुनि खे रुगो वादनि न पर अमली क़दमनि जी ज़रूरत आहे, जीअं हू हिन सख़्तु गर्मीअ ऐं बिजलीअ जे बुहरान मां निजात हासिलु करे सघनि।

0: इहो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: जो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8
3: हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं परोस जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।